0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम पूजा के साथ है सुनते हैं। नमस्कार आपको पूजा।
1: नमस्कार रिया, सभी को मेरा नमस्कार। मॉरिशस और सऊदी अरब स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने सहयोग को और मजबूत कर रहा है। मंत्रिपरिषद ने दोनों देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। इसमें विशेषज्ञता का आदान प्रदान, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण पहल शामिल हैं। और मंत्रिपरिषद ने उच्च शिक्षा विज्ञान और अनुसंधान मंत्रालय के संयुक्त राष्ट्र के क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर नेटवर्क के लिए राष्ट्रीय समन्वय केंद्र यानी नेशनल फोकल पॉइंट बनाए जाने को मंजूरी दे दी है। एक सफाई अभियान के दौरान लगभग 30 किलो ईंधन तेल के गुच्छे और परतें एकत्र की गई जो रेत के साथ मिलाई गई थी। कल दोपहर को नेशनल कोस्ट गार्ड के जवानों ने भी लगभग 366 किलो ईंधन तेल के जमाव को एकत्र किया। इन मलबों को लाशोमिया स्थित खतरनाक कचरा उपचार केंद्र ले जाया गया। इस निर्वाचन क्षेत्र के सांसद और खेल मामलों के जूनियर मंत्री टोनिया पोलो को कुछ दिन पहले मछुआरों ने इस मामले की जानकारी दी थी। सितंबर 2024 में हुई जॉन माइक मार्टिनगेल की मौत की न्यायिक जांच कल रोजहिल की अदालत में फिर से शुरू हुई। असिस्टेंट प्रिजन सुपरिटेंडेंट मोहम्मद आसिफ रामतुल्ला से पूछताछ जारी रही। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन की प्रतिनिधि का मानना है कि वो सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने कुछ कैदियों को गवाही के लिए बुलाने की योजना बनाई है। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने कथित रूप से गोपनीय जानकारी लीक होने के मामले में अपनी जांच आगे बढ़ाने के लिए और समय मांगा है। अब तक 5 गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है। 3 अन्य लोगों की पहचान की गई है, उनसे पूछताछ की जानी है। एफसीसी के एक जांच अधिकारी ने कल मोका की अदालत में ये जानकारी दी है। और विदेश की खबरों में, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि कीव के केंद्र में हुए हमले के दौरान एक रूसी ड्रोन ने यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के मुख्यालय को निशाना बनाया और वहां टकरा गया। और अब मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, देश के पूर्व तथा सेंट्रल प्लाटू पर आज सुबह बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा होगी। दिन के दौरान मौसम अच्छा रहेगा, मौसम सुहाना रहेगा। रात को बादल कुछ घिर आएंगे और ऊंचाइयों पर वर्षा होने का अनुमान है। हवा हल्की रहेगी और पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। दक्षिणी पश्चिमी लगूनों में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। जनता को सुबह के समय समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान, सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 14 से 16, अधिकतम 22 से 24, शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय आज सुबह 6:15 बजे, सूर्यास्त शाम 6:02 पर होगा। तो मौसम के इस खबर के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर

0: समाप्त हो चला, हम मिलेंगे 6:30 बजे।
1: Your weather forecast on RM2
2: Radio Masti
3: 819 kilohertz ye hai Radio Mauritius. Radio Mauritius.
4: मीडियम वेव 8.7 किलोहर्ट्ज़ पर ये है एमबीसी रेडियो मॉरिशस 8.7 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:04 हो रहे समय मॉरिशस में आप सभी को अजय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार। एक नई सुबह नए दिन का आगाज कीजिए एमबीसी रेडियो मॉरिशस के साथ। आज है शनिवार, शनिवार 5 सितंबर साल 2026। सो विश यू वंडरफुल मॉर्निंग एंड अ लवली डे अहेड एंड बॉन वीकेंड। जी हाँ, शनिवार का ये दिन है तो आशा करते हैं कि इस दिन को आप अच्छी तरह से बिताएंगे नए विचारों के साथ, मन में ठानने कि आज आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। अगर ये बात है तो चलिए देर न करते हुए इस प्रातःकालीन सभा की शुरुआत करते हैं गहलोत राजपूत महासभा के प्रोग्राम के साथ। प्रोग्राम है वैदिक नाथ।
5: आइए सुनिए गहलोत राजपूत महासभा की ओर से वेदों और शास्त्रों पर आधारित कार्यक्रम वैदिक नाथ।

0: शांति ही। देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, सादर सप्रेम नमस्ते। वैदिक नाद कार्यक्रम में हम आप सभी जनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, अति प्रसन्नता की बात है कि आज भी हम आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं भारत से आए हुए, राजस्थान से आए हुए आचार्य दर्शन शास्त्र रविशंकर जी महाराज। हम आज भी उनकी वाणी से एक मंत्र श्रवण करेंगे। मंत्र इस प्रकार है, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रम साविव पुनर्दता घनता जानता संगमे मही। आचार्य जी, कृपया हमें इस मंत्र पर कुछ समझाने का प्रयास करें।
1: ओम नमस्ते जी। धन्यवाद बहन जी, और सभी मॉरिशस वासियों को ये वेद का मंत्र और वेद के मंत्रों पर हम विचार कर रहे हैं, वेद के अर्थों को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्र मसाविव पुनर्दताघ्नता जानता संगमे मही। प्रभु इस वेद मंत्र के माध्यम से कह रहे हैं, हे मनुष्यों, स्वस्ति पंथाम अनुचरेम, तुम्हारा जो रास्ता है, तुम्हारा जो पथ है, जिस पर तुमको चलना है, वो कैसा हो, वो पथ तुम्हारा कल्याण को देने वाला हो, कल्याणकारी पथ पर हम चलें। चलना तो हमें होगा, लेकिन हम गलत रास्ते पर भी चल सकते हैं। दिखने में तो हमको ऐसा लगेगा कि हम अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, नहीं नहीं मैं तो ठीक ही तो चल रहा हूँ, अरे इसी से तो मुझको ये पद प्राप्त होगा, यश प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, संपत्ति प्राप्त होगी, तो मैं तो बिल्कुल ठीक ही चल रहा हूँ। लेकिन हो सकता है मैं इन सब की प्राप्ति के लिए जिस मार्ग को मैं चुन रहा हूँ वो मुझे साधन संपन्नता तो दिला सकता है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वो मेरे लिए सुखदायी हो, वो मेरे लिए कल्याणकारक हो। अधर्म के मार्ग पर चल करके भी तो मैं ये प्राप्त कर सकता हूँ। तो वेद कह रहा है, नहीं, तुमको ये सब प्राप्त तो करना है, लेकिन कैसे, कल्याणकारी मार्ग पर चलते हुए। तुमको ये सब प्राप्त हो और इस प्राप्ति के साथ साथ

में तुमको सुख भी हो, तुम्हें शांति भी हो, तो क्या होगा, वो मार्ग हमारा कल्याणकारक होगा। तो स्वस्ति पंथाम अनुचरेमा। और फिर एक उदाहरण दिया, किसके समान, किसके समान मैं कल्याणकारी मार्ग पर चलूं, तो कहा सूर्य चंद्र के समान। जैसे सूर्य और चंद्रमा दोनों किस तरह से गति करते हैं, एक दूसरे की ओर इस तरह से व्यवस्थित रूप से चलते हुए, नियमित रूप से चलते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका रास्ता कैसा है, वो कल्याणकारी मार्ग पर चल रहे हैं, सुख शांति वाले देने वाले मार्ग की तरफ चल रहे हैं, रेगुलर चल रहे हैं, किसी दूसरे को वहाँ पर विघ्न करते हुए, दूसरे से रुकावट करते हुए नहीं चल रहे। तो ठीक इसी प्रकार से हम भी कैसे चलें, सूर्य और चंद्रमा की भांति। तो सूर्य की भांति तेजस्वी और चंद्रमा की भांति शीतलता रखते हुए हमारे जीवन में तेजस्विता भी हो, हमारे जीवन में प्रगल्भता भी हो और हमारे जीवन में शांति भी हो, एडजस्टमेंट वाली स्थिति भी हो। तो हम सूर्य और चंद्रमा की तरह अपने जीवन में हम नियमितता को लाते हुए, प्रगल्भता को लाते हुए, शांति को लाते हुए हम मार्ग का अनुसरण करें। तो सूर्य और चंद्रमा की तरह हम कल्याणकारी मार्ग को हम चुनें। फिर आगे कहा स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्दधताग्नता जानता संगमे मही। और हमें कोई रास्ता चुनना है, हमें किसी लक्ष्य पर पहुंचना है, हमें किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, तो हमें संगति तो करनी पड़ेगी, हमें लोगों का सहारा तो लेना पड़ेगा, हमें अन्यों के सहयोग से तो चलना पड़ेगा। हम सोचें कि नहीं नहीं हम तो अकेले चल लेंगे, नहीं नहीं हमें संगति तो करनी पड़ेगी। तो संगति हम जब करेंगे, दूसरों के साथ में जब हम चलेंगे, तो वो हमारे जो साथी होंगे वो कैसे होने चाहिए, कहीं वो ऐसे साथी तो हम नहीं चुन लें कि वो हमें डुबो डालें, हम तो डूबेंगे तुम्हें भी डुबो कर छोड़ेंगे, कहीं ऐसे लोगों का तो साथ नहीं ले लें। तो कहा तुम्हें साथ तो लेना है, तुम्हें संगति तो करनी है, लेकिन वो जो संगति होगी वो कैसे लोगों की होगी, तो कह रहे हैं दधता अग्नता जानता, जो कैसे हो, दधता जो देने वाली प्रवृत्ति के लोग हों, जो छोड़ना जानते हों, जो त्याग करना जानते हों, जिन व्यक्तियों के अंदर जिसको कहते हैं ना कंजूसपना, कंजूसी जो वृत्ति है, ऐसे लोग जो अदानशीलता वाले ना हो, जिनके अंदर कंजूसी ना हो, दद्दता जिनके अंदर देने की प्रवृत्ति हो, उदार मना हो, जो दिल खोल करके दूसरों को दे सकें, और जिसका हृदय विशाल है, ऐसे व्यक्ति की संगति करेंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे, हम भी विशाल हृदय वाले होंगे। हम अपने जीवन में अनुभव ही करते हैं, कई बार हम ऐसे लोगों के आसपास में रहते हैं जो कंजूस हैं, दबी प्रवृत्ति वाले हैं, ऐसे क्षुद्र प्रवृत्ति वाले हैं, तो हम भी कैसे हो जाते हैं, हम भी उस तरह से बन जाते हैं। हम बड़े महात्माओं के, संतों के, उदार व्यक्तियों के साथ में हम रहने लगते हैं तो हम भी कैसे हो जाते हैं, हम भी उदार हो जाते हैं, चलो भाई क्या हुआ, ठीक है कर देते हैं, दे देते हैं, संस्था ही तो है, वैदिक धर्म के लिए काम कर रही है, वेद के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रही है, तो क्या है, देना चाहिए, देना चाहिए। और वेद कहते हैं कि हमें अपनी जो आय है उस आय का दसवां भाग किसके लिए निकालना चाहिए, हमें परोपकार के, धर्म के, ज्ञान विज्ञान के कार्यों के लिए निकालना चाहिए। तो हमें कैसे लोगों की संगति करनी है, हमें जो देने वाले हैं, जो उदार मना है, उन लोगों की संगति करनी है। एक बात, दूसरी बात क्या कही, अघ्नता, ऐसे लोग जो हिंसक प्रवृत्तियों से रहित हैं, अहिंसक जो लोग हैं उनकी संगति करनी है। हम सब अनुभव कर सकते हैं, जब हम हिंसक लोगों के पास में रहते हैं तो हमारे अंदर भी हिंसक प्रवृत्तियां हमारे अंदर उभरने लगती हैं। जब हम ऐसे कोई दृश्य देख लेते हैं, ऐसा कोई सीरियल देख लेते हैं, ऐसी कोई मूवी देख लेते हैं जिसमें हिंसक दृश्य हों, तो हमारे अंदर भी हिंसक भावनाएँ उत्पन्न होने लग जाती हैं। तो हम किन लोगों की संगति करें, किन के आसपास में रहें, किनके साथ में उठे बैठें,
तो कहा अहिंसक लोगों के पास में, जिनके अंदर वैर

0: भाव नहीं है। जो कोई बात हो गई, ठीक है, दुर्बलताएं हैं, कोई बात हो गई तो उस बात को चिपका करके नहीं रखते हैं, है ना, बिल्कुल उसी को ही दिमाग में रखते हैं, उसी को ही घुमाते रहते हैं, करते रहते हैं। तो हम ऐसे हिंसक प्रवृत्ति वाले लोगों के साथ में, जो वैर की भावना रखते हैं, जो दूसरे के अपकार की भावना रखते हैं, दूसरों को गिराने की भावना रखते हैं, उनको अपमानित करने की भावना रखते हैं, उनको पद्दलित करने की भावना रखते हैं, ऐसे जो लोग हैं, ये सब क्या हैं? ये सब हिंसक लोग हैं, हिंसा कर रहे हैं दूसरों की। तो कह रहे हैं ऐसे लोगों की संगति से हम बचें। तो किन की संगति करें? जो अहिंसक हैं, जो प्रेम करते हैं, जो दूसरे का भला चाहते हैं, जो दूसरे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, खुद भी आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे को भी आगे बढ़ा रहे हैं, खुद भी यश प्राप्त कर रहे हैं, दूसरे को भी यश प्राप्त करा रहे हैं, खुद भी वस्तुएं प्राप्त कर रहे हैं, अन्यों को भी प्राप्त करा रहे हैं। तो ऐसे लोग जो अहिंसक हैं, जो हिंसा, वैर भाव, प्रतिकार की भावना, बदले की भावना, गिराने की भावना जिनके मन के अंदर नहीं है, ऐसे लोगों की हम संगति करें। और किन की संगति करें? हमने दानशील लोगों की संगति कर ली, हमने अहिंसक लोगों की संगति कर ली, लेकिन ये जो दानशीलता है और ये जो अहिंसकपना है, ये नियमित रूप से बना रहे, ये रेगुलर हमारे जीवन के अंदर रहे। कुछ समय के लिए दानशीलता रही, फिर कंजूस बन गए, कुछ समय के लिए अहिंसक वृत्ति रही, फिर हिंसक बन गए, ये स्थितियां हम सबके जीवन में हम देखते हैं। तो हमारे जीवन के अंदर अहिंसक वृत्ति और दानशीलता रेगुलर बनी रहे, इसके लिए क्या करना है? तो कहा जो ज्ञानी हैं, जानता, जो ज्ञानी ज्ञानी लोग हैं, जो ज्ञानवान हैं, जिन्होंने इन्फॉर्मेशन तो एकत्रित की है, उस इन्फॉर्मेशन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए जो यत्नशील हैं, ऐसे जो ज्ञानी लोग हैं, उन ज्ञानियों की हम संगति करें, ऐसे तत्ववेत्ताओं की हम संगति करें। उससे क्या होगा? जब ज्ञानी लोगों की संगति करेंगे तो हमारा भी ज्ञान की तरफ झुकाव होगा, हम भी ज्ञानवान होने लगेंगे, हमारे अंदर भी जो सूचनाएं हैं, हम उन सूचनाओं को, हमने जो पढ़ा है, हमने जो सुना है, ये सब क्या है? ये सब तो केवल सूचना मात्र है। तो जो सूचना हमको प्राप्त हो रही है पढ़ करके और दूसरों के उपदेश से, तो क्या हो सकेगी? ये सूचना हमारे ज्ञान में परिवर्तित होगी और हम आगे बढ़ सकेंगे, सूर्य और चंद्रमा की तरह हम अपने ज्ञान को, हम अपने जीवन को अच्छा कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शम।
1: हम दर्शन आचार्य जी को हृदय से धन्यवाद करते हैं उनके अनमोल विचारों के लिए। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वैदिक नाद।

ओम का जाप करते रहिए और प्रभु का आशीर्वाद उनके अनुकंपा प्राप्त करते रहिए। याद रहे ठीक 6:20 पर आप सुनेंगे नितिन बापू से विशेष कार्यक्रम गणेश चतुर्थी के संदर्भ में, और ये वार्ता में लिखा जाएगा सुबह के ठीक 6:30। ठीक 6:30 आप सुनेंगे पूरा समाचार बुलेटिन, शोक समाचार, सूचनाएं, मौसम का हाल और नुथावा नुलावीनीय सेगमेंट। उसके बाद हमारी आपकी मुलाकात होगी 7:05 पर इन योर मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजाना। सुनते रहिए प्यार से MBC रेडियो मॉरिशस। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुबह के 6:30 बजे हैं। सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज की सुर्खियां। मॉरिशस और सऊदी अरब स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने सहयोग को और मजबूत कर रहे हैं। मंत्रिपरिषद ने दोनों देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। मंत्रिपरिषद ने उच्च शिक्षा, विज्ञान और अनुसंधान मंत्रालय को संयुक्त राष्ट्र के क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर नेटवर्क के लिए राष्ट्रीय समन्वय केंद्र बनाए जाने को मंजूरी दे दी है। एक सफाई अभियान के दौरान लगभग 30 किलो ईंधन तेल के गुच्छे और परतें एकत्र की गई जो रेत के साथ मिलाई गई थी। कल नेशनल कोस्ट गार्ड के जवानों ने भी लगभग 366 किलो ईंधन तेल के जमाव को एकत्र किया। ये तेल समुद्री शैवाल और छोटे बड़े कंकड़ों के साथ मिला हुआ था। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने कथित रूप से गोपनीय जानकारी लीक होने के मामले में अपनी जांच आगे बढ़ाने के लिए और समय मांगा है। अब तक 5 गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है। 3 अन्य लोगों की पहचान की गई है। एफसीसी के एक जांच अधिकारी ने कल मुका की अदालत में ये जानकारी दी। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मॉरिशस UTM द्वारा कल और आज पुएर्टो साबल स्थित अपने कैंपस में एक ओपन डे का आयोजन किया जा रहा है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि कीव के केंद्र में हुए हमले के दौरान एक रूसी ड्रोन ने यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के मुख्यालय को निशाना बनाया और उससे टकरा गया। मॉरिशस और सऊदी अरब स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने सहयोग को और मजबूत कर रहा है। मंत्रिपरिषद ने दोनों देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। इसमें विशेषज्ञता का आदान प्रदान, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण पहल शामिल हैं। इस सहयोग के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, बीमारियों की रोकथाम, डिजिटल स्वास्थ्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चिकित्सा प्रौद्योगिकी और रोबोटिक सर्जरी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। और मंत्रिपरिषद ने उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं अनुसंधान मंत्रालय को संयुक्त राष्ट्र के क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क के लिए राष्ट्रीय समन्वय केंद्र यानी नेशनल फोकल पॉइंट बनाए जाने को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय की प्रमुख जिम्मेदारियों में विज्ञान, अनुसंधान और जलवायु प्रौद्योगिकियों से संबंधित पहलों का समन्वय करना शामिल होगा। इन पहलों को जलवायु परिवर्तन से निपटने और उनके प्रभावों के अनुकूलन के क्षेत्र में मॉरिशस की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप होना होगा। परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु विभिन्न मंत्रालयों, निजी क्षेत्र, शिक्षा विधियों और नागरिक समाज के साथ परामर्श भी आयोजित किए जाएंगे। एक सफाई अभियान के दौरान लगभग 30 किलो ईंधन तेल के गुच्छे और परतें एकत्र की गई है जो रेत के साथ मिलाई गई थी। कल दोपहर नेशनल कोस्ट गार्ड के जवानों ने भी लगभग 366 किलो ईंधन तेल के जमाव को एकत्र किया। ये तेल समुद्री शैवाल के साथ मिला हुआ था। ये जमाव लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तक बिखरे हुए थे और बुआदिजा मुगैत के पास पाए गए। इन मलबों को लाशमिया स्थित खतरनाक कचरा उपचार केंद्र ले जाया गया। पुएदिसनी के समुद्र तट पर भी ईंधन तेल के गुच्छे और परतें देखी गई थी। इस

0: क्षेत्र में इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है। इस निर्वाचन क्षेत्र के सांसद और खेल मामलों के जूनियर मंत्री टोनी अपोलो को कुछ दिन पहले मछुआरों ने इस मामले की जानकारी दी थी। लुविना सूफी, आस्था गोविंद, चितामन।
1: ये घटना हर साल होती है, जब जहाज यहाँ से गुजरते हैं तो जहाज के निचले हिस्से की सफाई की जाती है। कुछ अवशेष तेल और पेट्रोल के रह जाते हैं जो लहरों और पानी के बहाव से तटों तक पहुंच जाते हैं। SMF और पर्यावरण मंत्रालय ने स्थिति पर सवाल उठाए हैं। सफाई हो गई है, कुछ अध्ययन बाकी है, खतरे की कोई बात नहीं है।
0: सितंबर 2024 में हुई जॉन माइकल मार्टिंगेल की मौत की न्यायिक जांच कल रोजहिल की अदालत में फिर से शुरू हुई। असिस्टेंट प्रिजन सुपरिटेंडेंट मोहम्मद असीफ रामतुल्ला से पूछताछ जारी रही। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन के प्रतिनिधि का मानना है कि वो सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने कुछ कैदियों को गवाही के लिए बुलाने की योजना बनाई है। इसके अलावा जॉन माइक मार्टिंगेल के मोबाइल फोन को लेकर भी कई सवाल अभी अनसुलझे हैं। ये फोन जेल के सुरक्षा कर्मियों ने जब्त किया था। इस मामले पर अधिक जानकारी लुविना सूफी की इस रिपोर्ट में जानते हैं, आस्था चितामन के विवरण के साथ।
1: सुनवाई में मैजिस्ट्रेट ड्यूनी विलियन और DPP के प्रतिनिधियों की ओर से 14 जुलाई को बुबासा कैद खाने में किए गए निरीक्षण पर चर्चा हुई। जॉन मिक मार्टिंगेल की मौत से एक दिन पहले उनके सेल की तलाशी लेने का आदेश ASP असीफ रामतुल्ला ने दिया था। उन्हें गवाही के लिए बुलाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से वकील रिकी बुकन ने उनसे पूछा कि क्या वे अदालत में पहले दिए गए अपने बयान में कोई बदलाव करना चाहती हैं। ASP रामतुल्ला ने कहा कि उनके पास बदलने के लिए कुछ नहीं है। वकील रिकी बुकन ने इस तलाशी के दौरान नियमों का पालन नहीं किए जाने की ओर भी अदालत का ध्यान खींचा। मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी। याद दिला दें कि जॉन मिक मार्टिंगेल नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में हिरासत में थे। उन पर दो यूक्रेनियन महिलाओं के जरिए 44 मिलियन रुपए की कोकेन मॉरिशस लाने की कोशिश करने का संदेह था। दोनों महिलाओं को अक्टूबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था। उनके परिवार का मानना है कि हिरासत के दौरान उनके साथ मारपीट हुई थी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत का कारण आत्महत्या बताया गया।
0: फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने कथित रूप से गोपनीय जानकारी लीक होने के मामले में अपनी जांच आगे बढ़ाने के लिए और समय मांगा है। अब तक 5 गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है। 3 अन्य लोगों की पहचान की गई है और उनसे भी पूछताछ की जानी है। FCC के एक जांच अधिकारी ने कल मुका की अदालत में ये जानकारी दी। उस समय कारोबारी स्टीवन मुटुकापेन की जमानत पर रिहाई की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। FCC ने उनकी सशर्त रिहाई का विरोध किया है। इस रुख को देखते हुए उनके वकील नील पिले ने जमानत याचिका पर आगे जोर नहीं दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। याद रहे कि स्टीवन मुटुकापेन को उस समय गिरफ्तार किया गया था जब 2025 में जब्त किए गए उनके मोबाइल फोन में FCC के अत्यंत गोपनीय दस्तावेज पाए गए थे। संदिग्ध का वाहन FCC के महानिदेशक संजय दाऊदारी के घर के आसपास देखा गया था। उस समय संजय दाऊदारी को धमकी भरे पत्र भी मिले थे। पिचिवेजे सैंपिया का रहने वाला कारोबारी स्टीवन मुटुकापेन 2014 में अपने इलाके में हुई एक जानलेवा गोलीबारी की घटना में बार बार बच गए थे। उन्हें पहले भी कई अन्य मामलों में गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें मनी लॉन्डरिंग और मादक पदार्थों के आयात की साजिश के आरोप शामिल हैं। इस मामले में आत्सू में पहले तैनात रहे इंस्पेक्टर विकी लखमन को भी गिरफ्तार किया गया है। कानून लागू करने वाली विभिन्न संस्थाओं से जुड़े लगभग 40 प्रतिभागियों को कल साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आयोजित 5 दिवसीय प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। ये समारोह पोर्टलुइस स्थित लैंड बैराक्स में आयोजित हुआ, जिसमें पुलिस आयुक्त राम प्रसाद सुरजबाली भी उपस्थित थे। अपने संबोधन में पुलिस आयुक्त ने कहा कि साइबर अपराध

0: और नई प्रौद्योगिकी विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने लगातार अधिक जटिल चुनौतियां पेश कर रही है। उन्होंने लगातार कौशल बढ़ाने के साथ साथ विभिन्न संस्थाओं के बीच सहयोग, सूचना साझा करने और समन्वय को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उनके अनुसार इन नए खतरों का सामना कोई भी एजेंसी अकेले नहीं कर सकती है। रामप्रसाद सुरजबाली ने अंत में प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के दौरान हासिल किए गए ज्ञान का सही उपयोग करने और अपने अपने संगठनों के भीतर अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मॉरिशस UTM द्वारा कल और आज पोइंट-ओ-साबले स्थित अपने कैंपस में एक ओपन डे का आयोजन किया जा रहा है। उद्देश्य भावी छात्रों को UTM द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले विभिन्न कोर्सों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारियां देना है। इस बारे में अधिक जानकारी UTM की असिस्टेंट रजिस्ट्रार वंदना गंगा बिसुन दे रही है। उनसे बात की निर्मा नारायणा रेड्डी ने। विवरण आस्था गोबिंद चितामन।
1: Donc, tous les enfants qui n'ont pas un site ni à l'Université de Technologie en avril ou en attente de sens dans les autres universités en octobre ou en septembre ou en août qui n'ont pas un siège, c'est l'occasion donnée pour rentrer dans une public university pour faire cette application qui fait public university parce que je ne paye pas ce qu'on appelle une tuition fee, les subsidies par l'État. Ceci dit, vous ne payez que des administrative fees et une petite student union fee. Il y a un cours full-time, il y a un cours part-time, il y a un cours master's, il y a un cours PhD. Et par suite, vous êtes capable de faire cette application.
0: पेंशन सुधार का मुद्दा अब भी ट्रेड यूनियन वर्ग को सक्रिय किए हुए हैं। सरकार पर दबाव बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध प्लेटफॉर्म कुमेस एजिकाल ने अगले 7 अक्टूबर को पोर्ट लुइस की सड़कों पर एक शांतिपूर्ण मार्च आयोजित करने की घोषणा की है। ये मार्च मारीगन दुलापे से शुरू होगा। उनकी मुख्य मांग है कि 60 वर्ष की आयु से बिना किसी शर्त के सार्वभौमिक वृद्धावस्था पेंशन को फिर से लागू किया जाए। इस संबंध में ट्रेड यूनियन नेताओं जेन अहागू और हनीफ पिरन को सुनते हैं।
2: Nous combat ces pensions vieillesse à tout ban senior sans discrimination. Ça veut dire si nous payons actuellement 15 555, tout du monde vise à gagner 15 555.
3: La façon qui est opérée pour donner sa ban pension là, il donne 3 options. Reduce pension, c'est pas pension 65 ans, ou choisir qu'on peut prendre. Non, c'est pas ça qui nous peut. Ça qui nous peut dire, c'est que rétablir le droit des bonnes pensionnaires à l'âge des 60 ans.
0: मॉरिशस में 3 साल बाद आज SBICCPI में शान का शानदार कंसर्ट। इस नए कार्यक्रम के लिए गायक ने 2023 में हुए अपने पिछले शो से अलग एक शानदार प्रस्तुति का वादा किया है। इस बार मंच पर और भव्य प्रोडक्शन के साथ कई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। शान अपने हालिया संगीत प्रोजेक्ट के साथ भी मॉरिशस पहुँचे और आपको बता दें आज शाम के कंसर्ट में उनके बेटे माही भी पहली बार मंच पर प्रस्तुति देंगे और मशहूर गायक केके को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। विधिमा सिबुरन की ये खास रिपोर्ट।
4: शांतनु मुखर्जी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से शान के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय प्लेबैक गायक, संगीतकार, अभिनेता और टेलीविजन होस्ट हैं। उन्होंने विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों और एल्बम्स के लिए अनेक गीत रिकॉर्ड किए हैं। शान का संबंध संगीत परिवार से है। उन्होंने कम उम्र में ही संगीत की दुनिया में कदम रखा और 1990 के दशक में बहन सागरिका के साथ पॉप एल्बम नौजवान से पहचान बनाई। उनके लोकप्रिय गीतों में शामिल हैं मुसु मुसु हासी, चांद सिफारिश, बहती हवा सा था वो आदि।
5: हमको तो राह थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता।
4: शान का करियर तीन दशकों से अधिक

0: है तन्हा दिल। चांद सिफारिश और जब से तेरे नैना,
1: जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे।
0: उनके करियर के प्रमुख पड़ाव रहे हैं।
2: गाना लोग पसंद करते हैं और गाना पॉपुलर होता है, उस गाने के लिए लोग यू नो फरमाइशें करते हैं, तब लगता है कि हाँ यार ये मेरा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो फदारात से चांद सिफारिश ऐसा एक गाना है कि किसी भी कॉन्सर्ट में इस गाने की फरमाइश तो आती ही आती है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज के दौर में भी मेरे गाने आ रहे हैं, फिल्मी गाने भी, फिल्म के गाने। जैसे अभी बंटवारा में जो राम भजन था, वो उससे पहले इक्का एक फिल्म आई, उसमें एक बहुत ही प्यारा फादर डॉटर का एक गाना आया, पापा की जान। उसके पहले वेलकम टू द जंगल, वो गाना फिर से आया। और ऑफकोर्स अभी हैवान फिल्म आ रही है, उसमें दो गाने हैं। सो हर दौर में आपको उस दौर की जो ट्रेंड तो नहीं कहूँगा, लेकिन सेंसिबिलिटीज़ जो है ना, उसे मद्देनज़र रखते हुए। वरना आपको आपकी आवाज़ सुन के लोगों को लगेगा कि यार ये तो वही वैसे ही गा रहा है जो 30 साल पहले गाता था। सो हर दौर के साथ कदम रख के चलना है, और हर दौर में कुछ नयापन आता है, उसे आपको पॉजिटिवली एम्ब्रेस करना है।
0: अगर आप मॉरिशन जनता के लिए एक गाना डेडिकेट करना चाहेंगे तो वो कौन सा गाना होगा?
2: पूरा शो डेडिकेट करना चाहता हूँ जो कल होगा, और फॉर नाउ ऑफ कोर्स वो मेरा दिल तो ले ही चुके हैं। तो मेरा दिल ले ले, मेरा दिल ले ले, मेरा दिल ले ले मॉरिशस ले ले रे।
0: शान को चांद सिफारिश के लिए 2007 में और जब से तेरे नैना के लिए 2008 में दो फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं। उन्हें 3 IIFA यानी इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड्स भी प्राप्त हुए हैं। शान लाइव इन मॉरिशस प्यार और दोस्ती को एक विनम्र श्रद्धांजलि है। उनका कंसर्ट SBICC में शनिवार 5 सितंबर को रात 8 बजे से शुरू होगा, जो उनके प्रशंसकों के लिए उनके लंबे और शानदार संगीत सफर को करीब से महसूस करने का एक खास अवसर होगा।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि कीव के केंद्र में हुए हमले के दौरान एक रूसी ड्रोन ने यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के मुख्यालय को निशाना बनाया और उससे टकरा गया। ये हवाई वाहन शुक्रवार को एसबीयू के मुख्यालय से टकराया। इसका निशाना उस कमरे को बनाया गया था जिसका इस्तेमाल सुरक्षा प्रमुख ओलेक्सांद्र पोकलाद करते हैं। ये स्पष्ट नहीं है कि हमले के समय यह पोकलाद इमारत में मौजूद था या नहीं। हालांकि ज़ेलेंस्की ने बताया कि उन्होंने बाद में पोकलाद से बात की और उन्हें उचित और ठोस जवाब देने का आदेश दिया। और इसे संकेत होता है कि रूस के नए ड्रोन अधिक सटीक होते जा रहे हैं। साथ ही ये भी संकेत मिलता है कि सप्ताहांत संभावित अमरीकी मध्यस्थता वाली वार्ता से पहले मॉस्को अपने हमलों को और तेज कर सकता है। और अब मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान आज देश के पूर्व तथा सेंट्रल प्लाटू पर सुबह के समय बादल घेरे रहेंगे, हल्की वर्षा होगी। दिन के दौरान मौसम में सुधार आएगा, मौसम अच्छा रहेगा। रात को बादल कुछ घिर आएंगे, ऊंचाइयों पर बारिश होने का अनुमान है। हवा हल्की रहेगी, पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। समुद्र में दक्षिणी पश्चिमी समुद्र में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। जनता से सुबह के समय समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 14 से 16 अधिकतम 22 से 24 शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय आज सुबह 6:15 बजे हुआ, सूर्यास्त शाम 6:02 पर होगा।

0: था मौसम के हाल के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। आखिर में अहम सुर्खियाँ एक बार फिर। मॉरिशस और सऊदी अरब स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने सहयोग को और मजबूत कर रहा है। मंत्रिपरिषद ने दोनों देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। मंत्रिपरिषद ने उच्च शिक्षा विज्ञान और अनुसंधान मंत्रालय को संयुक्त राष्ट्र के क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर नेटवर्क के लिए नेशनल फोकल पॉइंट बनाए जाने को मंजूरी दे दी है। एक सफाई अभियान के दौरान लगभग 30 किलो ईंधन तेल के गुच्छे और परतें एकत्र की गई जो रेत के साथ मिलाई गई थी। कल नेशनल कोस्ट गार्ड के जवानों ने भी लगभग 366 किलो ईंधन तेल के जमाव को एकत्र किया। ये जमाव लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तक बिखरे हुए थे और वादी जामुगत के पास पाए गए। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने कथित रूप से गोपनीय जानकारी लीक होने के मामले में अपनी जांच आगे बढ़ाने के लिए और समय मांगा है। अब तक 5 गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है। एफसीसी के एक जांच अधिकारी ने कल मोका की अदालत में ये जानकारी दी है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मॉरिशस UTM द्वारा कल और आज पोर्टसाबल स्थित अपने कैंपस में एक ओपन डे का आयोजन किया जा रहा है। विदेश में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि कीव के केंद्र में हुए हमले के दौरान एक रूसी ड्रोन ने यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के मुख्यालय को निशाना बनाया और उससे टकरा गया। 6:51 हुए हैं। हम तकनीकी सहायक कादिर को धन्यवाद देते हैं। साथ में पूरा समाचार विभाग और फ्रेंच रेडियो विभाग को भी कुछ ही समय में हम बढ़ेंगे शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
0: शोक समाचार सुनिए। मागुन स्ट्रीट प्लेनवेट में 82 साल की 82 years old, Mrs. Zulaykhan Bibi Kuar, Mrs. Zulaykhan Bibi Kuar, जिन्हें लोग फाजिला नाम से भी जानते थे, इंतकाल कर गई है। वे नंबर 76 मद्रास स्ट्रीट प्लेनवेट की रहने वाली थी। इनका जनाजा आज सुबह साढ़े दस बजे अल ईशान फ्यूनरल सर्विसेज मागुन स्ट्रीट प्लेनवेट से उठाकर दफनाने के लिए रिश्तिया का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10:30 AM। नंबर 9 राहुल रिवे लेन ला लुइस कैटरबोन में 79 साल के 79 years old श्री देवदत्त गोकुल जिन्हें लोग कितो नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे इनके मकान नंबर 9 राहुल रिवे लेन लालवीज का ट्रबोन से उठाकर फिनिक्स कृष्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 1 PM। कालीमाई रोड प्लान दे रोश में 58 साल के 58 years old श्री किशोर कुमार रामचंद जिन्हें लोग अजय शोफिया कामियो नाम से अधिक जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे इनके मकान कालीमाई रोड प्लान दे रोश से उठाकर लावांचुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। बनवेन रोड का चिमिलिटिया में 62 साल के 62 years old श्री कर्मानंद सेवातियन जिन्हें लोग ताजा नाम से अधिक जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुबह नौ बजे इनके मकान बन वैन रोड का चिमिलिटिया से उठाकर सेकोंस्टांस सेंट पियर की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9 AM। महिरपुर न्यू दिल्ली इंडिया में भारत में 44 साल के 44 years old श्री शैलेश शर्मा चतु जिन्हें लोग वीरू नाम से अधिक जानते थे कि मृत्यु हो गई है।

जिन्हें लोग गविरो उस्ताद राजा जिन्यो नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। वे पहले बागामिया रोजबेल के रहने वाले थे। इनकी अर्थ ही आज दिन के 11:30 बजे इनके मकान महिलपुर न्यू दिल्ली इंडिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लोधी दिल्ली भारत की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11:30 AM। टैगोर द मोगुमे, टैगोर द मोगुमे 54 साल के 54 years old श्री जितेंद्र किसुंदुयाल, श्री जितेंद्र किसुंदुयाल जिन्हें लोग सुनंद नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थ आज सुबह 10:30 बजे इनके मकान टैगोर रोड मोगू से उठाकर मोगू की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टू डे 10:30 AM। जयला लेन लिबेटो कैटोबोन में 93 साल की 93 years old श्रीमती बुधिया लक्षण, श्रीमती बुधिया लक्षण पैदाशी नाम जंदू की मृत्यु हो गई है। इन्हें लोग डॉक्टर ज्ञान जंदू की बहन के नाम से भी जानते थे। इनकी अर्थ ही आज दिन के 1 बजे इनके मकान जयलाल लेन लिबेटो कैटोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रॉयल रोड बुआ रूज पॉम्प्लेमूस में 68 साल की 68 years old श्रीमती सरंधा सीतुहल, श्रीमती सरंधा सीतुहल पैदाशी नाम रसधारी और जिन्हें लोग सरंधा नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज सुबह 10 बजे इनके पति राजदेव सीतुहल के मकान रॉयल रोड बुआरूज पॉप्लेमूस से उठाकर त्यामिनिस्त्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8:10 AM। रॉयल रोड पालमा कैटोबोन में 70 साल की 70 years old श्रीमती मालाबाई लक्सिमो, श्रीमती मालाबाई लक्सिमो पैदाशी नाम हरी और जिन्हें लोग मालाबाई नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुबह 10:30 बजे इनके पति मारो लक्सिमो के मकान रॉयल रोड पालमा कैटोबोन से उठाकर गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 10:30 AM। रूथ बाशेरी मोकामे 52 साल की 52 years old श्रीमती बबीता बेकिया, श्रीमती बबीता बेकिया जिन्हें लोग मिंता नाम से भी जानते थे और जिनका पैदाशी नाम बाबाजी था की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुबह 11:30 बजे इनके मकान रूथ बाशेरी मोका से उठाकर मेजिन कल्दुमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 11 AM। सैक ऑफ फिनिक्स में 75 साल की 75 years old श्रीमती गुमावती राम गुलामी, श्रीमती गुमावती राम गुलामी पैदाशी नाम चुलन और जिन्हें लोग गुमावती नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे इनकी बेटी बृंदा दसोई के मकान सैक ऑफ फिनिक्स से उठाकर फूंजी साक की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 1 PM। भिखारी रोड सुरीनाम में 83 साल के 83 years old श्री भरद्वाज सिबुरन, श्री भरद्वाज सिबुरन जिन्हें लोग रंजीत नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है। वे पहले फार्मासीसी गोबिन में काम करते थे। इनकी अर्थ ही आज दिन के 2 बजे इनकी पत्नी कमला गुरदयाल सिबुरन के मकान भिखारी रोड सुरीनाम से उठाकर सुयाग की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। और मधुलेन बोकास्काद अंहिता वाक्वा में 31 साल के 41 years old श्री ओकराज धोंदू, श्री ओकराज धोंदू जिन्हें लोग लोंग नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुबह दस बजे इनके मकान मधुलेन बोकास्काद अंहिता वाक्वा से उठाकर सोलवेरिनो नंबर 5 की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। जी हाँ, क्रिमेशन टुडे एट 10 AM।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुबह के ठीक 7 बजे हैं। स्पोर्ट्स न्यूज़। सुनने वाले को विकास रामधनी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। खेल समाचारों में आपका स्वागत है। लिवरपूल फुटबॉल क्लब जाग उठा। सुपर स्ट्राइकर अलेक्जेंडर इसाक ने अपना तेवर दिखाया और खेल के प्रथम 9 मिनटों में 2 गोल दागकर क्लब को अपनी पहली जीत दिलाई। इप्सविच टाउन 0-2। ये दोनों ही गोल कोडी गैक्पो के डिसाइसिव पास पर बने। गैक्पो इसाक का कॉम्बिनेशन, ये जोड़ी नया रंग ला रही है और लिवरपूल के बेरंग शुरुआत पर लाया थोड़ा सा रंग, थोड़ी सी जिंदगी। खेल के दूसरे भाग में नए रिकॉर्ड साइनिंग ब्रैडली बाकुला भी खेल पाया, जो 123 मिलियन पाउंड में पेरिस सेंट जर्मेन से लिवरपूल में आया है। सो इप्सविच टाउन की कल हार हुई होम मैदान पे, जो काफ़ी कठिन था। इप्सविच 0-2। इंग्लिश प्रीमियर लीग का ये तीसरा सप्ताह आज और कल अब जारी रखे जाएंगे। आज का अर्ली किक ऑफ 3:30 PM, न्यूकासल यूनाइटेड का मुकाबला आज बोर्नमुथ से है। फिर 6 PM ब्रेंटफोर्ड वर्सेस सन्डरलैंड, ब्राइटन का मुकाबला लीड्स यूनाइटेड से, फुलहम खेलेगी क्रिस्टल पैलेस के विरुद्ध, मैनचेस्टर सिटी का मुकाबला आज होम मैदान पे कोवेंट्री सिटी से, नॉटिंगहम फॉरेस्ट टक्कर लेगी टोटेनहम हॉटस्पर से, और आज का लेट मुकाबला 8:30 PM हल सिटी वर्सेस एस्टन विला। फिर कल रविवार को 2 अन्य मैच खेले जाएंगे। सबसे पहले कल शाम 5 PM एवर्टन वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, महामुकाबला साबित हो सकता है द टॉफीज़ के मैदान पे। एवर्टन मैनचेस्टर यूनाइटेड कल शाम 5 PM, और कल रात 7:30 PM आर्सेनल वर्सेस चेल्सी, सीजन का पहला क्लासिक, पहला क्लैश, लंदन डर्बी, पहला झटका हो सकता है। किसको लगेगा, आर्सेनल या चेल्सी को? एमिरेट्स स्टेडियम में आर्सेनल वर्सेस चेल्सी कल रात 7:30 PM। और इस बीच फ्रांस में पेरिस सेंट जर्मेन की गाड़ी ठप पड़ी हुई है, तो स्पेन में योजे मोरिनो को मिला पहला पेन। नतीजे सुनिए, रियल बेटिस 1 रियल मैड्रिड 0, यानी योजे मोरिनो की रियल मैड्रिड की कल हार हुई। खेल के दूसरे भाग में, खेल के 81st मिनट पर टोनी पैरोट ने, ट्रॉय पैरोट ने ये मात्र गोल स्कोर करके रियल मैड्रिड को 1-0 से हराया। पर पते की बात यह है कि इंजरी टाइम में किलियन एम्बापे को एक पेनाल्टी मिली, फिर भी उसने पेनाल्टी मिस की। इस प्रकार कल रियल मैड्रिड अपना ये पहला मैच हार गया। रियल बेटिस 1 रियल मैड्रिड 0। बाकी सभी मैच आज और कल खेले जाएंगे। फ्रांस के लीग ए में कल 2 मैच खेले गए। ओलंपिक दे लियों ने कल 3-1 से जीत हासिल की। सो ओलंपिक दे लियों 3-1। लियों के लिए बाशे अतिकामे और नुआमा का 1-1 गोल, जबकि पेरिस सेंट जर्मेन की हार हुई कल होम मैदान पार्क दे प्रिंस में पारी 1-2 AS Monaco। पारी के लिए खेल के 31st मिनट पर मार्किन्योस ने पहला गोल स्कोर किया, लेकिन दूसरे भाग के 58th मिनट पर फ्लाविओ नाजिनियो और 72th पर इडुम्बो का एक दूसरा गोल। पारी अब तक अपने प्रथम 3 मैचों में एक भी मैच जीत नहीं पाया है, 2 ड्रॉ और 1 हार। फिलहाल पेरिस सेंट जर्मेन डिफेंडिंग चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन लीग टेबल के 12th स्थान पर हैं। इटली के सीरिया में जेनोवा की हार हुई, जेनोवा 1-4। जर्मनी के बुंडेसलीगा में भी स्टुटगार्ट ने एफसी कोलोनी को 4-1 से परास्त किया। सो बाकी मैच आज और कल खेले जाएंगे। प्रीमियर लीग में हमने बताया कि आज का पहला मैच अर्ली किक ऑफ

0: 3:30 न्यूकासल यूनाइटेड वर्सेस बोर्नमुथ, रात 8:30 हल सिटी का मुकाबला एस्टन विला से, कल शाम 5:00 एवर्टन वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड और कल रात 7:30 आर्सेनल वर्सेस चेल्सी क्लासिको का क्लासिक। बाकी सभी चैंपियनशिप में आज और कल कई महत्वपूर्ण मुकाबले रखे गए हैं। फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग चैंपियनशिप में कल रविवार को इटालियन ग्रैंड प्री से रेस जारी रखी जाएगी। कल मर्सिडीज की जीत हुई स्प्रिंट में, आज पोल पोजीशन के लिए रेस जारी रखी जाएगी। बता दें कि किमी एंटोनिनी फिलहाल अभी तक जनरल रैंकिंग में पहले स्थान पर है। फिर टेनिस की बात करें तो कार्लोस अल्काराज का खेल दिन ब दिन और अच्छा होता जा रहा है। 139 दिनों के बाद अल्काराज कोर्ट पे लौटा इंजरी के बाद और अपने टाइटल की खूब अच्छे तरीके से वो रक्षा कर रहा है। अल्काराज ने कल चीन के वु यीबिंग को 6-3, 6-4 और 6-1 से हराकर यूएस ओपन के अगले राउंड में कदम रखा, जहां पर उसका मुकाबला अमेरिकी खिलाड़ी टॉमी पोल से होगा। कल के मैचों में जेसिका पेगुला की जीत हुई, फिर कोको गाफ ने भी बादोसा को 6-4 और 7-6 से परास्त किया। अलेक्जेंडर जेरेव, अरीना सबालेन्का की भी जीत हुई, सबालेन्का ने राकिमोवा को 6-3 और 6-4 से परास्त किया। फिर गायल मॉफिस की हार हुई, डोमिनिक चेन ने उसे 6-3, 6-4 और 6-3 से परास्त कर कदम आगे रखा। एलेना रायबाकिना की जीत हुई, कोस्चुक, डैनिल मेडवेदेव, नावारो, स्टेफान सिटसिपास आदि सभी खिलाड़ियों की भी जीत हुई। फिर स्थानीय तौर पर कल रविवार शाम 3:25 पर शॉन्डिमास में घुड़दौड़ सीजन की सबसे प्रतिष्ठित रेस द फेनिक्स मेडन कप 2400 मीटर पर दौड़ी जाएगी। फ्यूचर स्विंग, गुड काउंसिल, रैपिडैश आदि घोड़े एकदम तैयार है ये मेडन जीतने के लिए। तो क्रिकेट में आयरलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावेगांजा के दोनों सेमीफाइनल मैच कल रविवार के लिए निर्धारित हैं। मापू स्थित एसएसओ क्रिकेट ग्राउंड में सबसे पहले कल सुबह 9:00 कंटिनेंटल चीटास का मुकाबला वन हेल्फ जागुआ से होगा। फिर दिन के 1:00 कल वहीं के मैदान पर कैंपस अबरोड लायंस का मुकाबला थॉमस कुक टाइगर्स से हैं। तो ये थी खेलकूद संबंधी चंद जानकारियां। सुबह के 7:07 आज्ञा दीजिए, नमस्कार और शुभ दिन।
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
2: श्रावणी उपाकर्मा के संदर्भ में रविवार 6 सितंबर को दिन के 9 से 12 बजे तक मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर बाहुकुंडिया सरस्वती यज्ञ और प्रवचन का आयोजन किया गया है कोस्टल रोड बेलमौ के सूर्योदोई भवन सनराइज हॉल में। प्लेन दे रोज के सरस्वती मंदिर द्वारा शुक्रवार 4 सितंबर को शाम 6:30 से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के संदर्भ में कृष्ण आहुति, कीर्तन, प्रवचन, आरती और महाप्रसाद का आयोजन किया गया है। रविवार 6 सितंबर को दोपहर बाद के 1:00 IGCIC फिनिक्स में सद्गुरु कबीर नवोदया यात्रा के संदर्भ में भजन प्रतियोगिता और श्री पंत श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहेब जी का दर्शन बंदगी का आयोजन किया है। रविवार 6 सितंबर को सुबह 9 से 12 बजे तक श्रावण मास के संदर्भ में मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा कोस्टल रोड बेलमा के सनराइज हॉल में श्रावणी पूर्णहुति महायज्ञ किया जा रहा है। शनिवार 5 सितंबर को शाम 6:00 मोताई ब्लॉश के श्री कृष्णायक गौरी शंकर मंदिर यंगस्टर एसोसिएशन के मिले जुले सहयोग से पूजा और म्यूजिकल कॉन्सर्ट का आयोजन कर रहा है। रविवार 6 सितंबर को ऑंग्रे मार्शियल क्यूपिप रोड के गंगाधर काली माता मंदिर द्वारा कावरी काटी पुसई और आग पर चलने की विधि की जाएगी।
3: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
4: नुथावाई नुलावेनिया तोहर खातिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर।

एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस साथ में एमबीसी के मिलल जुलल सहयोग से पेश करल जात बा। सेक्टर जॉब कंट्रैक्टर प्रस्पन कंपनी लिमिटेड जन अग्रिमाशाल के ओपिप में खोजत हवंजा मासों जेकर एक बरिस के एक्सपीरियंस बा। एप्लीकेशन खातिर फोन करिया 7775 N3D पर अर्जी भेजे के आखिरी तारीख 7 सितंबर 2026। सेक्टर लैंडस्केपिंग एंड क्लीनिंग ए प्लस सिक्योरिटी एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट लिमिटेड जोन किंग्स रोड गुडलैंड में खोजत हंस लैंडस्केपर जेकर एक बरिस के एक्सपीरियंस बा आज गार्डनर और क्लीनर चाहेला जेकर 3 महीना के एक्सपीरियंस बा। एप्लीकेशन खातिर फोन करिया 7 सित विद एंड दे विद दे सित पर अर्जी भेजे के आखिरी तारीख 11 सितंबर 2026। सेक्टर मैकेनिक एएसपी के मैकेनिक्स लिमिटेड जुनबो प्लाटो रोड गुडलैंड्स में खोजतवंजा मोटर व्हीकल मैकेनिक्स जिकर 5 बरिस के एक्सपीरियंस बा और ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिशियन जिकर 5 बरिस के एक्सपीरियंस बा। एप्लीकेशन खातिर फोन करिया 7911 3333 पर अर्जी भेजे के आखिरी तारीख 11 सितंबर 2026। सेक्टर कंस्ट्रक्शन केडी अमिगो लिमिटेड जिन टेम्पल रोड कोटेज में खोजत हवंजा बैकहो लोडर ऑपरेटर जिनकर 2 बरिस्किल एक्सपीरियंस बा, प्लांट ऑपरेटर जिनकर 2 बरिस्किल एक्सपीरियंस बा। एप्लीकेशन खातिर फोन करिया 7 सित 66 23 पर अर्जी भेजे के आखिरी तारीख 11 सितंबर 2026। सेक्टर कंस्ट्रक्शन रुदेश कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जोन विनोभा रोड लालमाटी में खोजत हवंजा मेसन ग्रेड 2 जिनका 2 बरिस्किल एक्सपीरियंस बा। एप्लीकेशन खातिर फोन करिया 7 सित 99 41 पर और अर्जी भेजे के आखिरी तारीख 12 सितंबर 2026। सेक्टर मैकेनिक न्यूट्रॉन ऑटो केयर लिमिटेड जोन रॉयल रोड रिविया जुगाँव पाव में बा खोजत हवंजा पैनल बीटर जिनकर 5 बरिस्किल एक्सपीरियंस बा, पेंटर ऑटोमोटिव जिनकर 5 बरिस्किल एक्सपीरियंस बा। एप्लीकेशन खातिर फोन करिया 412 60 53 पर या तो फिर 7 सित 73 47 06 पर अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2026। सेक्टर हॉस्पिटैलिटी लगून एटीट्यूड होटल मारीना विलेज होटल लिमिटेड जिन रॉयल रोड अंसलारी में खोजत हवंजा वेटर जिनकर 1 बरिस्किल एक्सपीरियंस बा, साथ में स्टीवर्ड एंड क्लीनर रूम अटेंडेंट और कुक और सबको के चाहना 1 बरिस के कम से कम एक्सपीरियंस रहे के। एप्लीकेशन खातिर अपन सीवी विदा करिया भेजल गल एड्रेस पर यानी रॉयल रोड अंसलारी या तो फिर बाई मेल hrm@lagoonattitude.com और इहा लगून एटीट्यूड होटल रॉयल रोड अंसलारी अर्ज भेजे की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2026। सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग संदेश फर्नीचर लिमिटेड जोन ब्रांच रोड पोम्बलॉन पोस्दे फ्लैक में खोजत हवंजा एल्युमिनियम फैब्रिकेटर ग्रेड 2 जिनकर 2 बरिस्किल एक्सपीरियंस बा। एप्लीकेशन खातिर फोन करिया 7 सित 71 41 64 या तो फिर कभी भी आप लोग सक बजा जाए संदेश फर्नीचर लिमिटेड ब्रांच रोड पोम्बलॉन पोस्दे फ्लैक अर्जी भेजी की आखिरी तारीख 17 सितंबर 2026। सेक्टर बेकरी गोदाम का दे एंड सन्स कंपनी लिमिटेड जिन रॉयल रोड कालबास में खोजता बेकरी ऑपरेटर जिनकर कम से कम 5 बरिस्किल एक्सपीरियंस बा। एप्लीकेशन खातिर अब कभी भी सक बजा जाए ए गोदाम का दे एंड सन्स कंपनी लिमिटेड रॉयल रोड कालबास और अर्जी भेजे के आखिरी तारीख 18 सितंबर 2026। सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग के नास गारमेंट लिमिटेड जिन लिंक रोड नोवेल फॉर्म्स में खोजत वंजा शोइंग मशीन ऑपरेटर जिनकर 1 बरिस्किल एक्सपीरियंस बा और एडमिन क्लर्क जिनकर 1 बरिस्किल एक्सपीरियंस बा। एप्लीकेशन खातिर फोन करिया 6 सित 09 87 पर अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 18 सितंबर 2026। सेक्टर रिटेल शांतिफ्रे पुजदे फ्लाक जोन रॉयल रोड पुजदे फ्लाक में खोजत हवंजा शॉप असिस्टेंट जे कम से कम फॉर्म थ्वाली पहर लेबा। एप्लीकेशन खातिन 7 सित 08 7 सित 93 पर कॉल करिया या तो फिर कभी भी आप लोग सक बजे जाए शांतिफ्रे रॉयल रोड पुजदे फ्लाक अर्जी भेजे के आखिरी तारीख 24 सितंबर 2026। सेक्टर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सदक सकताया जोन गबरोन नबुतलावा में खोजत हवंजा सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर इनर्जी फाइनेंस ऑफिसर ग्रांट्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोजेक्ट के लिए। एप्लीकेशन खातिन जितना भी कौजिदा लोग बा चाहला उनकरा दोनों यानी कि सॉफ्ट और हार्ड कॉपीज विदा करे के कम से कम शुक्रवार 11 सितंबर तक चाहला विदा कर दे के। पता है डायरेक्टर को ऑपरेशन रीजनल इंटीग्रेशन डिवीजन मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स रीजनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड 3rd floor Fuchs House Bourbon Street Port Louis और ईमेल है एम ओ
FARC@govmu.org. याद रखिए एप्लीकेशन करत हुआ तो तोहरा चाहेला जो तोहर करिकुलम विटाई है 5 पन्ना से ज़्यादा नहीं रहे के और साथ में तोहरा चाहेला अटैच करे के तोहर सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डिग्रीज डिप्लोमास एंड सर्टिफिकेट्स और एज लिमिट

बावन यानी कि सकम दुजा। और आप लोग सकबजा चिके करे वेबसाइट मिनिस्ट्री के http://foreign.gov.mu.org या सादेक के सेक्रेटरिया https://www.sadc.in। और अर्जी भेजे के आखिरी तारीख 11 सितंबर 2026। तो रहल तोहर खातिन नू थवाई नू लावीनिय जोइन तोहरा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस साथ में MBC के मिलल जुलल सहयोग से पेश करल गल।

सुबह के 7:21 से मैंने थोड़े आप जुड़े हुए हैं एमबीसी रेडियो मशहूर के साथ। एक बार फिर स्वीकार कीजिए अपने होस्ट और दोस्त अजय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमन। और अब प्रस्तुत है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ ज़रूरी विज्ञप्तियाँ। 16 000 Forestside, Royal Road 16 000, Résidence Anushka, Résidence Montbois, Mosselmont Doma, Mosselmont Rampel और आसपास में जो गलियां हैं वहां के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 6 सितंबर को सुबह के 8:30 से शाम के 4 के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और सेंट क्रॉ रेजिडेंस ब्रिकेटरी के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 5 सितंबर को सुबह के 8:30 से दोपहर बाद के 2 के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। फॉरेस्ट साइड, मौसेलमा हुसैनी और आसपास में जो गलियां हैं वहां के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 5 सितंबर को सुबह के 8:30 से दिन के 12 के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। मिडलैंड्स, कोरियोलिस रोड और आसपास में जो गलियां हैं वहां के लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 5 सितंबर को दिन के 10 से दोपहर बाद के 2 के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। फिर कैट्रबोन एवेन्यू, फोकवा, ओलिए, रेजिडेंस पेलावाल और अनिम एवेन्यू के निवासियों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 5 सितंबर को सुबह के 8:30 से शाम के 4:30 के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और रोजेल एवेन्यू, ब्लू लेन, अक्वारेल फैक्ट्री, एवेन्यू बेटो के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 6 सितंबर को सुबह के 8:30 से शाम के 3 के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। लाविनी सिमिट्री रोड, लाविनी आर ई, लाविनी स्कूल, मौसेलमा वी ओ एस, लाविनी प्रेसेंट, मौसेलमा फ्रांगीपान, मौसेलमा ब्लू प्रिंट और आसपास की गलियों में रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 5 सितंबर को सुबह के 8:30 से शाम के 3 के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। Verde, Mosselmont MDA, Mosselmont MSA, Chemin d'Agoutière, CHA Verde, और Royal Road Verde और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल 6 सितंबर को सुबह के 8:30 से शाम के 3 के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और Coastal Road, Hotel Lux Casino और Hotel Véranda Grand Bay के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 6 सितंबर को दिन के 9 से शाम के 3 के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। कॉन्डोस, मौसेलमा, गंगादीन के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 6 सितंबर को दिन के 9 से दिन के 11 के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सल्फेरिन नंबर 5, रूट रॉयल पायोट के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 6 सितंबर को दिन के 10:30 से दोपहर बाद के 2 के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और माफ़ कीजिए, मोंगू, मौसेलमा कोऑपरेटिव और NHDC के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 6 सितंबर को सुबह के 8:30 से दोपहर बाद के 2 के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। मोशवा

0: Choisi hôtel Grand Bleu, Ramjeten, Méditerranée, mon seul moment choisi qui n'y a sion qu'au sujet qui a jata है कि कल रविवार 6 सितंबर को सुबह के 8:30 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। प्लैंडी पापाई, राम गुलाम और जयपाल रोड, मुस्के रोड के निवासियों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 5 सितंबर को दिन के 9 बजे से दिन के 12 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और नोवेल फ्रांस, पोंकोलविल, रूट रॉयल, कैम्फर, एनएचडीसी नोवेल फ्रांस, मोसेमोन बाब सिंह, श्रमिक कोऑपरेटिव, और अली जाक, chemin Comlon, chemin Laforge, chemin Début Doyal, Pont Colville, कि रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि कल 6 सितंबर को सुबह के 8:30 बजे से शाम के 5 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। जैसे भी सभी मरम्मत कार्य पूरे हो जाएंगे, बिना पूर्व सूचना के बिजली की सप्लाई को जारी कर दी जाएगी। सीबी इन सभी असुविधाओं के लिए अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है।
1: NBC Radio 24 hours a day.

0: दिल की बहार सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस पर।
1: सुबह के 7:26 मिनट हो रहे। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं दोस्तों आप सभी का हम स्वागत करते हैं। बच्चों का, बड़ों का, सभी को हमारा ढेर सारा प्यार है। बच्चों को मीठा मीठा प्यार, परिजनों को सादर प्रणाम और हम उम्र के दोस्तों को प्यार और मोहब्बत भरा नमस्कार। जी हाँ, ये है आप ही लोगों का नंबर वन रेडियो स्टेशन, आप ही लोगों का लोकप्रिय राष्ट्रीय रेडियो चैनल AM2 MBC रेडियो मॉरिशस। आज 19 किलोहर्ट्ज पर हमारी आपकी मुलाकात हो रही है, एक ही फ्रिक्वेंसी है। वेदर यू बीन द नॉर्थ इन द साउथ इन द ईस्ट इन द वेस्ट, एक ही नंबर पर आप हमें सुनिए, 19 किलोहर्ट्ज रेडियो मॉरिशस, MBC रेडियो मॉरिशस। और मौसम तो बड़ा ही प्यारा है, बस ठंडी ठंडी हवाएं बह रही है और मौसम आज और कल मंडे तक सुहाना रहने वाला है। आज फ्रॉम ट्यूसडे और एक जबरदस्त सांची साइक्लोन आएगा जिससे काफ़ी ठंड होंगी आज फ्रॉम ट्यूसडे। सो अभी 3-4 दिन है, कपड़े सुखाना चाहते हैं तो ज़रूर सुखाइएगा क्योंकि ये जो आज सैटरडे संडे और मंडे को काफ़ी धूप होने वाली है, मौसम काफ़ी प्यारा होने वाला है। सो इस मौसम का फायदा उठाइए और हमें यहाँ पर रेडियो मॉरिशस की लहरों पे इन योर मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजराना। एक नए दिन की शुरुआत कीजिए हमारे साथ। आज है शनिवार का दिन, 5 सितंबर साल 2026। ये दोस्तों कैसे हैं आप? आहा, आप तो मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है। लगता है कुछ नया हुआ है आपके जीवन में, अच्छी बात है। कुछ नया अच्छा सा होता है तो हम खुश होते हैं कि नहीं, होना भी चाहिए। जिंदगी में रोज कुछ ना कुछ नया तो होता रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा, तो ये तो जिंदगी का दस्तूर है कि कभी कुछ पाते हैं कभी कुछ खो देते हैं, पर हर दिन अपने साथ कुछ न कुछ स्पेशल जरूर आता है कि नहीं। सो बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, आशावादी रहिए और जीवन का मजा लेते रहिए। यहाँ पर हमें आप लोगों का साथ देने के लिए, जी हाँ, यो मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजराना जो चलेगा दिन के 9 बजे तक। चलिए इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। द फर्स्ट

0: सेगमेंट आज का चिंतन डॉक्टर जमन जी द्वारा।
1: मूल्य, सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास

जनों का दूर से ही वर्जन करना, स्वाध्याय करना, एकांत वास करना, सूत्र और अर्थ का चिंतन करना तथा धैर्य रखना, यह मोक्ष का मार्ग है।

और मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कर्म ज्ञान और भक्ति को अपनाना चाहिए। भगवद गीता वेद पुराण शास्त्रों में यही कहा गया है कि अच्छा कर्म करे, प्रभु का ध्यान करे और ज्ञान प्राप्त करे, ये तीनों एक साथ चलते हैं। अगर प्रभु का ज्ञान आपको प्राप्त हो गया, आप अच्छे कर्म करें और भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, तो एक न एक दिन आपको मोक्ष जरूर मिलेगा। चलिए इसे में सुनते हैं एक भाव गीत। इंसान चाहे कितना भी थका मांदा क्यों ना हो, पर जब वो शाम को लौटता है अपने घर पे आता है, तो उसे सुकून पहुंचता है, क्योंकि ये उसका घर है। घर छोटा हो या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, घर तो घर होता है, घर तो स्वर्ग के समान होता है।

जी हाँ, ये बात तो सच है कि जहाँ पर हम रहते हैं वो हमारा घर है और उसे हम मंदिर कहते हैं, और जहाँ हम काम करते हैं वो भी हमारा दूसरा घर होता है, है कि नहीं? एक पहला घर होता है जहाँ पर हम हमारा जन्म होता है, हम बड़े होते हैं अपने माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ। फिर दूसरा घर होता है जहाँ नौकरी स्थल पे, ड्यूटी प्लेस जहाँ पर हम काम करते हैं, वो हमारा दूसरा घर होता है। क्या बात है, क्या बात है। और आए दिन हमारे देश में बड़ी बड़ी हस्तियाँ आती रहती है, और आजकल हमारे देश में बॉलीवुड के मशहूर सिंगर शान साहब आए हुए हैं। शान जी, वेलकम टू द पैराडाइज आइलैंड ऑफ मॉरिशस। और आज SBICCPI में उनका शो है, जी हाँ, 5 सितंबर को, एन इवनिंग वॉइस लाइफ टाइम ऑफ मेमोरीज। और स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में उनका शो है आज रात के 8 बजे, जी हाँ। सो बहुत से लोगों ने टिकट्स खरीद ली है, और आज आप रूबरू होंगे विद योर फेवरेट बॉलीवुड सिंगर शान। और शान साहब जो है बॉलीवुड के बहुत ही बड़े कलाकार है, और बहुत सारे फिल्मों में उन्होंने प्लेबैक का सहारा दिया है। और शान जो है वो बहुत अच्छी तरह से गाते हैं, उनके बहुत सारे फैंस हैं, और बेशक उनकी आवाज़ में एक जादू है, एक कशिश है, और बेशक उनकी जो स्टाइल है गाने का, यू नो, इट्स सो यूनिक, इट्स सो ब्यूटीफुल। और उनका पूरा नाम है शांतनु मुखर्जी। यस, उन्होंने बहुत सारे गीत गाए, जैसे तन्हा दिल, जब से तेरे नैना, बहती हवा, एंड यस, बहुत सारी फिल्मों के लिए आवाज़ का सहारा दिया, प्लेबैक का सहारा, और बहुत सारे एल्बम्स भी है। और शान साहब जो है उन्हें बहुत सारी भाषाएं आती है, जैसे बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नाडा, मलयालम, गुजराती, और वो प्लेबैक सिंगर है, टेलीविजन होस्ट और कंपोज़र भी है। और बेशक

का जो फैमिली है वो म्यूज़िक के साथ जुड़ा हुआ है. उनके पिताजी मानस मुखर्जी भी म्यूज़िक कंपोज़र रह चुके हैं. सो शान साहब एक वर्सेटाइल और सोलफुल सिंगर है और उनकी आवाज़ इतनी प्यारी है, इतनी स्वीट है कि क्या बताएं. सो बहुत से लोग आज जाएंगे. ऑल द बेस्ट एंड बेशक एंजॉय. अभी के लिए उन्हीं की आवाज़ में ये गीत हम सुनाते हैं. सो आजकल वो होटलों में ठहरे हुए. सो शान साहब अगर इस समय आप हमें सुन रहे हैं, सो वेलकम ऑन रेडियो मॉरिशस. ये गाना आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए जो आज रात को परफॉर्म करने वाले हैं. शान साहब, दिस इज़ फॉर यू, भूल जा. और ये गीत हम चल रहे हैं शान साहब के फैंस के नाम भी.

और शान साहब गए से गीत के साथ ही सुबह का नजाना यह मस्त मॉर्निंग शो का पहला हिस्सा यहीं पर समाप्त होता है। कुछ क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी स्पीकिंग यूनियन की ओर से ज्ञान सर्वर कार्यक्रम 8 बजे भोजपुरी में समाचार। समाचारों के बाद विल बी बैक विद अ मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजाना पार्ट 2 सुबह के 8:05 से दिन के 9 बजे तक। स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड। कुछ क्षणों में आप सुनेंगे ज्ञान सरोवर प्रोग्राम।

0: श्रोताओं नमस्कार। हिंदी संगठन के तत्वाधान में आयोजित ज्ञान सरोवर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज के ज्ञान सरोवर कार्यक्रम में हम लोग मॉरिशस और भारत के बाहर अन्य देशों में हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं, इस विषय पर परिचर्चा करेंगे। मैं मॉरिशस से डॉक्टर कृष्ण कुमार झा और आज मेरे साथ MBC स्टूडियो में विशिष्ट मेहमान उपस्थित हैं। आप डॉक्टर मौना कौशिक जी हैं, जो बुल्गारिया के सोफिया विश्वविद्यालय में दशकों से हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति के शिक्षण से जुड़ी हुई हैं। मैडम, हिंदी संगठन की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। श्रोताओं, हिंदी दिवस, जिसे महात्मा गांधी संस्थान का हिंदी विभाग हिंदी सप्ताह के रूप में कई प्रतियोगिताओं के साथ सप्ताह भर इसका आयोजन करता है, वहीं हिंदी संगठन भी इस पूरे पखवाड़े तक हिंदी भाषा पर चर्चा, परिचर्चा एवं कई गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। हिंदी का यह खास महीना और हिंदी के महत्व पर, उसके योगदान पर समर्पित मेरी इस कविता से हम हिंदी की चर्चा जारी रखेंगे। वेदों की ध्वनि, ऋषियों की वाणी, हिंदी है न्यारी, हिंदी है प्यारी, हिंदी हमारी, हिंदी तुम्हारी, हिंदी सुरीली, हिंदी रसीली, हिंदी नवेली, हिंदी अलवेली, हिंदी में नेति, हिंदी में श्रुति, हिंदी है भक्ति, हिंदी में शक्ति, हिंदी है क्रांति, हिंदी है शांति, हिंदी मोहिनी, हिंदी दामिनी, हिंदी धधकती, हिंदी धड़कती, हिंदी कल्याणकारी, हिंदी आह्लादकारी, हिंदी है थाती, हिंदी है हस्ती, सबसे न्यारी, सबसे सबकी मतवाली, हिंदी आज़ादी, हिंदी स्वरानी, हिंदी धरनी, हिंदी जननी, हिंदी पुचकारती, हिंदी ललकारती, हिंदी संवारती, हिंदी निखारती, भारत की रागनी, सबकी मनभावनी, पूर्वजों की पोथी, रामायण की ग्रंथी, बैठकों की बोली, संस्कृति की रंगोली, अपनी है हिंदी, सबकी है हिंदी। श्रोताओं, चलिए हम अपने इस परिचर्चा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर मौना कौशिक जी स्टूडियो में उपस्थित हैं। सबसे पहले अपने परिचय में कुछ विशेष बातें, जैसे यहाँ आपका आना कैसे संभव हुआ।
1: सबसे पहले तो हिंदी और भारतीय संस्कृति से जुड़े सभी मित्रों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, सादर नमस्कार। डॉक्टर KK झा और हिंदी संगठन मॉरिशस का भी मैं अभी आरंभ में हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिसके माध्यम से मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। मैं सोफिया विश्वविद्यालय क्लीमेंट ऑक्रिट्सकी में भारतीय विद्या विभाग या इंडोलॉजी डिपार्टमेंट से जुड़ी हूँ और एरास्मस प्रोग्राम जो सोफिया विश्वविद्यालय और MGI महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के बीच में है, वह माध्यम रहा मेरी इस यात्रा का, यहाँ मॉरिशस आने का कारण बना। और भाषा, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में मुझे यह सुंदर संवाद करने का अवसर मिला है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मौना कौशिक जी, आपका मॉरिशस में स्वागत है। चलिए श्रोताओं, हम अब डॉक्टर मौना कौशिक जी से जानना चाहेंगे कि बुल्गारिया में हिंदी और हिंदी शिक्षण की क्या स्थिति है।
1: इस पर बात करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि मॉरिशस मेरे लिए सिर्फ एक देश नहीं है, यह हिंदी की जीवंत भूमि है। यह एक ऐसी भूमि है जहाँ हिंदी ने प्रवासी भारतीय समाज की स्मृतियों, साहित्य, संस्कृति और भावनाओं के साथ अपना विशेष संबंध बनाया है। और मैं मॉरिशस में हूँ, बल्गेरिया से हूँ, और मैं हिंदी के कारण एक देश में हूँ और एक देश में आई हूँ। तो हिंदी का अपना बहुत बड़ा महत्व है हमारे विभाग में और हमारी जो विश्व

0: विद्यालय है उसमें हिंदी को लेकर बहुत ही गंभीरता से पढ़ाई होती है। इसके अलावा संस्कृत, उर्दू और पंजाबी भाषा भी पढ़ाई जाती है। पर विशेष रूप से ये जानकर आप लोगों को अच्छा लगेगा कि बीए, एमए और यहाँ तक कि पीएचडी का जो से जुड़े हुए लोग जो हैं वो हमारे विभाग में हैं। ये सब स्थानीय विद्यार्थी हैं, ये भारतीय डायस्पोरा के लोग नहीं हैं, ये बल्गारियन ही हैं। और 18-19 साल के बच्चे जब हमारे विभाग का चयन करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि वे न केवल हिंदी पढ़ते हैं वरन हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास अर्थात भारत की संस्कृति और इतिहास से भी जुड़ जाते हैं।
1: चलिए, ये सब जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने मॉरिशस का जिक्र किया, मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा डॉक्टर मोना जी कि हमारे देश में मॉरिशस में हिंदी की स्थिति बहुत ही सुदृढ़ है। हिंदी इस देश में आंदोलन की भाषा रही है। 1948 में भारतीय भाषाओं में हस्ताक्षर अभियान द्वारा राजनीतिक चेतना के संचार की भाषा रही है। प्राथमिक विद्यालय से विश्वविद्यालय स्तर तक हिंदी की यहाँ पढ़ाई होती है। 1910 से आर्य समाज की स्थापना से हिंदी भाषा संस्कृति का इस देश में प्रचार प्रसार होता आ रहा है। हिंदू महासभा, सनातन धर्म टेंपल फेडरेशन, आर्य आयुर्वेद, हिंदी प्रचारणी सभा, महात्मा गांधी संस्थान, गहलोत राजपूत महासभा, विश्व हिंदी सचिवालय आदि सभी महत्वपूर्ण संस्थाएं हिंदी भाषा संस्कृति का यहाँ प्रचार प्रसार कर रही हैं। क्या बुल्गारिया में भी कुछ ऐसी कुछ संस्थाएँ हैं जो हिंदी भाषा संस्कृति के प्रचार प्रसार में संलग्न है?
0: एक बहुत ही रुचिकर आपको ये लगेगा सूचना कि आप जान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भारतीय उस देश में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद देवम प्रतिष्ठान, इस्तुक जापत जिसका अर्थ होता है पूर्व पश्चिम प्रतिष्ठान, जिसकी अध्यक्षा हैं श्रीमती बुयानोवा जी, दानी बुयानोवा जी,
1: प्रोफेसर दानी जी,
0: जी आप उनसे परिचित भी हैं। और उसके अलावा भारतीय राजदूतावास, वह ये सब जुड़े हुए हैं हिंदी के आप ये कह सकते हैं कि निःशुल्क प्रचार प्रसार में। और हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ाई जाती है। और बहुत ही अच्छा लगता है जब हर आयु वर्ग का, चाहे वो छोटी उम्र के हों, छोटी उम्र के बच्चे हमारे यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं, अन्यथा वे लोग जो काम कर रहे हैं और जिनको भारतीय संस्कृति में रुचि है वे हिंदी पढ़ते हैं। तो उसके अलावा क्योंकि स्कूलों में भी, मॉरिशस में मैं जानती हूँ कि स्कूलों में भी हिंदी पढ़ाई जाती है,
1: प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालयों में।
0: और बल्गारिया में एक विद्यालय है जो इंदिरा गांधी विद्यालय के नाम से है और वहाँ पर भी बच्चों को हिंदी पढ़ाई जाती है। तो ये हमारे भविष्य के राजदूत हैं।
1: जी, ये जी सुनकर बहुत अच्छा लगा मोना जी। जैसे आपने निशुल्क शिक्षण की बात की, वहाँ भी ये व्यवस्था है। हमारे देश में भी 1834 में यहाँ गिड़मिटिया प्रथा के तहत हमारे पूर्वज आए थे 36, फिर धीरे धीरे 1920-24 तक अप्रवासन जब तक बंद नहीं हुआ था तो लाखों की संख्या में यहाँ पर अप्रवासी भारतीय आए हुए थे। और उसी समय से आप देखेंगे कि भारतीयों का जब आना हुआ वहीं से बैठकाओं का प्रचलन शुरू होता है और बैठकाएँ भी आज भी बैठकाएँ जीवित हैं। आज भी अनौपचारिक शिक्षण के अंतर्गत बैठकाओं की भूमिका है और यहाँ हिंदी पढ़ाई होती है। यहाँ परिचय, प्रथमा, मध्यमा, उत्तमा के रूप में निशुल्क नहीं, अब कुछ सरकार, पहले तो निशुल्क पढ़ाई होती थी, अब सरकार कुछ अनुदान देती है, ये इवनिंग स्कूल के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ भी ये स्थिति है। और आपको विधिवत शिक्षण, आपको हिंदी की बात कर रहे हैं तो 1949 में यहाँ प्रोफेसर राम प्रकाश जी आए हुए थे और उसी समय से यहाँ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज और हिंदी प्राध्यापकों का शिक्षण और कॉलेज में माध्यमिक विद्यालय में 1976-77 से जो है हिंदी की पढ़ाई शुरू हो जाती है। तो यहाँ हिंदी की स्थिति एकदम जो है कि भारत से बाहर आप कहें तो साहित्य सृजन सबसे ज़्यादा साहित्य सृजन, साहित्य आप अभिमन्यु अनंत रामदेव धुरंधर बड़े अब तो विश्व स्तर के साहित्यकार हैं, इनकी ख्याति से कौन नहीं परिचित है। तो चलिए, अभी आपने जो है युवाओं की बात की, भविष्य की हिंदी की बात की, तो बस मैं आपसे जानना चाहूँगा अंत में कि आपके लिए, युवाओं के लिए, हमारे युवाओं के लिए क्या संदेश है?
0: हमारे

0: हमारा जो हिंदी का स्वरूप है, बल्गारिया में हिंदी वो अभी बहुत युवा, हिंदी का स्वरूप ही युवा है। हमारे विभाग को 40 वर्ष हुए हैं, 1983 में हमारा विभाग बना। लेकिन भाषाएं केवल शब्द नहीं सिखाती
1: जी,
0: वे हमें दूसरे मनुष्य के संसार में प्रवेश करना सिखाती हैं।
1: बिल्कुल सही।
0: तो ये मेरा संदेश है उन सभी लोगों के लिए जो हिंदी से जुड़ना चाहते हैं। हिंदी आपको वैश्विक स्तर पर जोड़ती है, यह रोज़गार की भाषा भी है और यह प्यार की भाषा भी है। कुछ पंक्तियां मैं यहाँ पर सुनाना चाहूँगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत।
0: कौन है वो जो रही हरदम साथ, कौन है वो जो रहती हरदम साथ, कौन है वो जिसने कभी ना की कोई शिकायत, ना कोई गिला, ना कोई उल्हाना, माँ सा संभाला, पिता सा दुलारा, उंगली पकड़ बस चलना सिखाया, स्वदेश में परदेश में धड़कन सी बनी रही साथ, सरस्वती का वरदान, देश का अभिमान, वीणा के स्वर और शहनाई का गान, बरसती बूंदों सा स्पर्श, मचलती हवा का दर्द, उस गांव में उस शहर में हर बैठक में हर चौपाल में, गंगा सी गंग नहर सी, ब्रह्मपुत्र और सोनभद्र सी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, बल्गारिया में और मॉरिशस में, जल निधि की लहरों सी शाश्वत, सहज सुगम हिमाद्री सी, मेरी आपकी अपनी हिंदी।
1: तो सब क्या बात है। आपने तो जो है हिंदी को पूरे बल्गेरिया में आप हिंदी भाषा पढ़ाई रही है, और मॉरिशस में भी आप जो हैं कि उस बल्गेरिया की हिंदी और वहाँ क्या किस तरह से हिंदी का शिक्षण हो रहा है, आप लोग इतना कुछ कर रहे हैं, युवा सभी बच्चे लोग, जब आप 40 साल से बच्चे वहाँ हिंदी पढ़ रहे हैं और आप जो है कि वही प्रेम जो है कि मॉरिशस लेके आए, तो ये हमारी हिंदी है और ये बहुत बड़ी बात है। हम सबको अपनी भाषा पर गर्व है और हम सबको अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए। तो इसलिए हिंदी को केवल हिंदी दिवस तक हमें सीमित नहीं रखना चाहिए, इससे अपने घर में भी बोलें। हम बच्चों से भी यही आशा करते हैं कि आप इसे घर पर भी बोलें, पढ़ें लिखें सुनें और दूसरों तक पहुंचाएं। जैसा आपने सही कहा कि भाषा तभी जीवित रहती है जब उसका हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग से ही उसकी जीवंतता जो है वह कायम रहती है। जी,
0: एक बात यहाँ ये कहना चाहूँगी कि कैसे जीवंत रहती है। बहुत सारे लोग जो विश्वविद्यालय या इन कोर्सेज तक नहीं पहुँचते हैं, वे धारावाहिक, हिंदी के जो धारावाहिक हैं वो उनको टीवी पर देख देख कर बहुत सारे हिंदी के शब्दों को जान लेते हैं।
1: तो जी, इसमें मीडिया की प्रमुख भूमिका है और मीडिया, हम इस आपसे बिल्कुल सहमत हैं। समय का अभाव है और हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। यह कार्यक्रम हिंदी संगठन की ओर से ज्ञान सरोवर के अंतर्गत हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हमने आज अपने विशिष्ट मेहमान मोना जी के साथ हिंदी विषय पर परिचर्चा कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। नमस्कार
0: नमस्कार।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: फजीर की 8 बजल बा सबको के नमस्ते। भोजपुरी के समाचार सुने जा। सरकार नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन कार्यक्रम के फिनो से शुरू करता एक पायलट चरण में आवत 16 से 28 नवंबर ले ग्रेड 8 के

0: बारह से तेरह बरिस के आयु होला 260 शामिल हुई या जुन 14 दिन ली युवा अनुशासन नेतृत्व नागरिक जिम्मेदारी सुरक्षा और स्वयं सेवा पर केंद्रित कयंगो गतिविधि में भाग लियन जा। प्रधानमंत्री दफ्तर की सरपरस्ती में ये प्रोग्राम में शिक्षा मंत्रालय युवा एवं खेल मंत्रालय और पुलिस विभाग के सहयोग प्राप्त होलबा। पायलट चरण के समाप्त होला के बाद कार्यक्रम के मूल्यांकन करल जाए। एकर आधार पर 2027 में एके पूरा देश में लागू करे के विचार करल जाए। मॉरिशस और सऊदी अरब स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपन सहयोग के और मजबूत करता। मंत्री परिषद दोनों देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच एगो समझौता पर हस्ताक्षर करे के मंजूरी देले बा। मंत्री परिषद उच्च शिक्षा विज्ञान और अनुसंधान मंत्रालय के संयुक्त राष्ट्र के क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क खातिर नेशनल फोकल पॉइंट बनावे जाए के मंजूरी भी देले बा। एगो सफाई अभियान में करीब 30 किलो ईंधन तेल के गुच्छा एकत्र करल गल जुन रेत संगे मिलावल गल रहल। नेशनल कोस्ट गार्ड के जवान लोग करीब 366 किलो ईंधन तेल के जमाव के भी एकत्र कर ले हवन स आर मतलब जुन बुआजा मुहत के भी मिलल बा। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन कथित रूप से गोपनीय जानकारी लीक होई के मामला में अपन जांच आगे बढ़ाए खातिर और समय मंगले बा। अबले 5 गवाह के संगे पूछताछ करल गल बा। तीन जना के पहचान हो गल बा और उ लोग से भी पूछताछ करल जाए। FCC के एगो जांच अधिकारी काल मुका के अदालत में ई जानकारी दिलन। ऊ बखत कारोबारी स्टीवन मुतुका पेन के जमानत पर रिहाई की याचिका पर सुनवाई होत रहल। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मॉरिशस UTM काल आर आज पैतुसाबल के अपन कैंपस में एगो ओपन डे के आयोजन करता। दूसर देश के खबर में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की बोले बा कि केव के केंद्र में होल हमला के दौरान एगो रूसी ड्रोन यूक्रेन के सुरक्षा सेवा के मुख्यालय के निशाना बनैले बा और हुआ टक्कर मार देले बा। तैकरे संगे भोजपुरी के समाचार समाप्त होल। तुह लोग के ध्यान खातिर धन्यवाद। नमस्ते आर शुभ दिन।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: आठ बजकर तीन मिनट होलबा। मरनी के खबर सुन जा। बिकाऊ लेन फिनिक्स में 69 बरिस के सौसौतने वाके मिसिज बीबी तहरून अमीर जिनकरा सब कोई तहरून नाम से जस्ती जानत होलन चाहे इंतकाल कर गर हवन। उनकर जनाजा आज दिन के दो बजे उनकर घरे बिकाऊ लेन फिनिक्स से उठावल जाए और सबसे पहले नमाज जनाजा खातिर फिनिक्स के मस्जिद ले जावल जाए। फिर हुआ से दफनाए खातिर फिनिक्स का कब्रस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। नंबर 18 बुटेया सीते से आशा तेहूज में 56 बरिस के सकन सीजों के श्री देव कुमार गजाधर जिनकरा सब कोई देव नाम से जस्ती जान रलन जा गुजरगढ़ हवन। उनकर माती आज सांझ के चार बजे उनकर घरे उनकर बेटा के घरे श्री अश्ले गजाधर के घरे नंबर 18 बीतियासी ते से आशा त्याहूज से उठावल जाए और बोआमौसों के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन टुडे एट 4 PM। डिस्पेंसरी रोड त्रियोली में 70 बरिस के स्वसंजीजों के श्री विजय कुमार अलिया जिनकरा सब कोई विजय नाम से जस्ती जानत हलन जा गुजरगढ़ हवन। उनकर माती आज सपहर के 3 बजे उनकर घरे डिस्पेंसरी रोड त्रियोले से उठावल जाए और त्रियोले वे के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। मैगों स्ट्रीट प्लानवेयत में 82 बरिस के 82 के मिसिज मिसिज जुलेखान बीबी कुंवर जिनका

रसब कोई फजीला नाम से जस्टिस जनरल एंड जागुसरगर भवन वो पहले नंबर 76 मद्रास स्ट्रीट प्लानवेयत रहे। उनका जनाजा आज दिन के 10:00 आज फजर के 10:00 अल ईसान फ्यूनरल सर्विस मागों स्ट्रीट प्लानवेयत से उठावल जाए और दफनाए खातिर रिश्तिया का कब्रिस्तान ले जावल जाए। फ्यूनरल टुडे अ 10:30 AM नंबर 9 राहुल रिवे लेन ला लुइस कैट्रो बोन में 79 बरिस के 79 बंके श्री देवदत्त गोकुल जिनका रासब को यह कीटो नाम से जस्टिस जनरल एंड जागुजर ग्रहवन उनकर माती आज दिन के 1:00 उनकर घरे नंबर 9 राहुल रिवेस लेन ला लुइस कैट्रो बोन से उठावल जाए और फिनिक्स के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रोमेशन टूडे एट 1 PM कालीमाई रोड प्लान दे रोश में 58 बरिस के 58 अंके श्री किशोर कुमार रामचंद जिनके रसब कोई अजय शुफिया कामियो नाम से जस्ती जनरल अंजा गुजर गर्भवन उनकर माती आज फजीर के 10:00 उनकर घरे कालीमाई रोड प्लान दे रोश से उठावल जाए या लावा चुआ के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रोमेशन टूडे एट 10 AM बन वैन रोड का चिमली तेम में 62 साल के 62 years old शिकर्मानंद सेवातियान जिनका रसब कोई 1000 नाम से जस्ती जनरल अंजा गुजरगर हवन उनकर माती आज फजीर के 9:00 उनकर घरे बन वैन रोड का चिमली तेम से उठावल जाए और से कॉन्स्टांस सैंपियावे की शमशान भूमि ये जावल जाए। क्रोमेशन टूडे एट 9 AM माहिरपुर दिल्ली भारत में 44 बरिस के 44 के श्री शैलेश शर्मा चतु जिनका रसब कोई वीरू नाम से जस्ती जनरल एंड जागुजर गर हवन उबागामिया रोजबेल रहे। इनका रसब कोई यह वीरू उस्ताद राजा जिन्यो नाम से भी जानत रहल उनकर माती आज दिन के 11:00 आज दिन के 11:00 उनकर घरे माहिरपुर दिल्ली भारत से उठावल जाए और क्रियाक्रम खातिर लोधी दिल्ली भारत वे के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रोमेशन टुडे एट 11:30 AM टागोर रोड मोगू में 54 के 54 के श्री जितेंद्र किसुंदयाल जिनका रसब कोई सोनंद नाम से जस्ती जनरल एंड जागुसर गर्भवन उनकर माती आज फजर के 10:00 उनकर घरे टागोर रोड मोगू से उठावल जाए और मोगू के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रोमेशन टुडे एट 10:30 AM जयलाल लेन लिबेटो कैटोबोन में 93 के 93 के श्रीमती बुदिया लक्षण पैदाशी नाम जंधु अर्जुन करासब को यह डॉक्टर ज्ञान जंधु के बहन नाम से जानत रहन जागुजरगर हवन उनकर माती आज दिन के 1:00 उनकर घरे जयलाल लेन लिबेटो कैटोबोन से उठावल जाए और गांधी पालमा के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रोमेशन टूडिया 1 PM रॉय रोड बुआरूज पॉम्पलेमूस में 68 के 68 के श्रीमती सरंधा सीतोहल पैदाशी नाम रसधारी और जिनका रसब कोई सरंधा नाम से जस्ती जनरल अंजा गुजर कर हवन उनकर माती आज फजर के 10:00 उनकर पति राजदेव सीतोहल के घरे रॉयल रोड बुआरूज पॉम्पलेमूस से उठावल जाए और त्यमनिस्त्रियुले के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रोमेशन टुडे एट 10 AM रॉयल रोड पालमा कैटोबोन में 70 के 77 के श्रीमती मालाबाई लक्ष्मो पैदाशी नाम हरी और जिनका रसब कोई मालाबाई नाम से जस्ती जनरल जागुजर गर हवन उनकर माती आज फजर के 10:00 आज फजर के 10:00 उनकर पति मारो लक्ष्मो के घरे रॉयल रोड पालमा कैटोबोन से उठावल जाए या गांधी पालमावे के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रोमेशन टुडे एट 10:30 AM
Ruth Bachiri Mukame Bavan Baris Ke 52 ans Ke Shemati Babita Bakia Shemati Babita Bekia Jinkara Sapkoy Mintanam Se Janet Elenjar Jinkar Paidashi Nam Babaji Rahal Guzar Garhavan Unkar Mati Aj Din Ke 11

जिनकर घरे होते वर्षेगी मौका से उठावल जाए आर में जिनका दिमाग के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रोमेशन टुडे एट 11 AM सैकाओ पाओ फिनिक्स में 75 बरीस के 75 के श्रीमती गुमावती राम गुलामी श्रीमती गुमावती राम गुलामी पैदाशी नाम चुलन और जिनकर से कोई घुमावती नाम से जस्ती जाना टलन जा गुजर कर हवन उनकर माती आज दिन के 1 बजे उनकर बेटी ब्रिंडा दसोई के घरे सैकाओ पाओ फिनिक्स से उठावल जाए और फोन जी साक के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रोमेशन टू डे 1 PM भिकारी रोड सुरीनाम में 83 बरीस के 83 के श्री भरद्वाज सिबुरन श्री भरद्वाज सिबुरन जिनकर सब कोई रंजीत नाम से जस्ती जाना टलन जा गुजरगर हवन वो पहले फार्मासी सी गोबिन में काम करे उनकर माती आज दिन के 2 बजे उनकर पत्नी कमला गुरुदयाल सिबुरन के घरे भिकारी रोड सुरीनाम से उठावल जाए आर सुयाक के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रोमेशन टूडे एट 2 PM Madeleine Bocascade Henrietta me 61 baris ke 31 ans ke chez Okraj Dondou jin kara sab ke long nam se jasti general and cha guzar gar hawan in kar mati aaj fajr ke 10 baje un kar ghade Madeleine Bocascade Henrietta se uthaval jaye ar sulferino number 5 ke samsan bhumi le javal jaye cremation today at 10 AM shograste parivar ke prati hamni ke sahanubhuti baatein

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।
2: सुबह के 8:19, ये है AM2 MBC रेडियो मॉरिशस। हमारी भी आपकी प्यारी सी मुलाकात हो रही है 819 किलोहर्ट्ज पर AM मोड पर। जहाँ जहाँ से भी आप हमें सुन रहे हैं, सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। और बेशक आज शनिवार का दिन है और सैटरडे का दिन जो है मस्ती का दिन होता है। सैटरडे इज फन डे, है कि नहीं। 5th September 2026 है आज। अगर आज आपका जन्मदिन है, सो हैप्पी बर्थडे। सो कुछ गीत हैं हमारे प्लेलिस्ट में, अगर इन गीतों पर अपनों के नाम करना चाहते हैं तो फ़ोन कर सकते हैं 4028085 पर। फिल्म है लक्ष्य बलिका बधू, जीवल देव, चाइना टाउन, मशाल, कुदरत और सैनिक फिल्मों के गाने। और यू कैन कॉल एस 4028085 पर आप फ़ोन कर सकते हैं। लाइन खुली हुई है, ये मत कहिएगा कि हमने आपको मौका नहीं दिया, लाइन खोल रही है तो बात कीजिएगा ज़रूर।

और ट्राई टू बी शॉर्ट एंड स्वीट गीत मांगने का प्रोग्राम है, इधर उधर की बात ना करें, डायरेक्टली अपनों के नाम जोड़ें। और ये पहला गाना फिल्म लक्ष्य से लिया गया है, गीत माधव भैरव के जन्मदिन के शुभ अवसर पर बधाइयाँ और प्यार उनके पापा कवि, मामा टीना, दादी माला, पुपोरीना, चाचा साइलेन और चाची रानी और परी की ओर से ढेर सारा प्यार आशीर्वाद है। और ये गीत जाएगा रीता की ओर से उनकी बहन रेणुका, फिर शैलेश, स्वस्ति, अनुष्का के नाम, संजय, सुरेखा बिहारी हमारे साथ दे रहे हेलो जी, फेनिक्स से है रेहाना, रेहाना की ओर से गीत जाएगा जियाद, बैन, साइदा, कोहेसा और जरीला के लिए। तो चलिए एक साथ सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, फिल्म का नाम है लक्ष्य, अगर मैं कहूँ और क्या कहना चाहता हूँ या आप क्या कहना चाहते हैं तो फ़ोन कीजिए 4028085।

0: जब हम अच्छे लोगों की संगति में होते हैं, अच्छे लोगों का साथ होता है, तो हम अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं कि नहीं, और जैसी संगति वैसा प्रभाव भी पड़ता है हमारे ऊपर, हमारे चरित्र पर, हमारे स्वभाव पर, है कि नहीं। इसीलिए कहते हैं कि सत्संग में जाना चाहिए, अगर कहीं पर सत्संग है तो जाइएगा ज़रूर, थोड़ा सा मौका निकाल के जाइएगा, थोड़ा सा समय निकाल कर। सुबह 11:26 कहिए दोस्तों कैसा लग रहा है हमारा शो, और गीतों का सिलेक्शन नाम शो आपको पसंद कर रहे हैं। अगला गीत है बड़े अच्छे लगते हैं, बालिका बधु फिल्म का गाना अमित कुमार की आवाज़ में, और ये गीत खासम खास हम चलाएंगे प्रताप की ओर से, उनके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, यस हरीश नारायण मिडलैंड्स के रहने वाले हैं, हेलो, और फिर नटराज रामकुरन और नोवेल फ्रांस, और जी फैमिली के सभी दोस्तों के नाम टीना दीना प्रतिमा केत युश्री वीरापेन अपाया सरजू रोसाई रोशनी, और यही की जाएगा वीना कुपुसामी के नाम, आप रहती है मेबर्ग, आपके पति बेटी दामाद बेटा बहू और सब कुपुसामी परिवार के लिए। विश्वानी बाबूलाल है लाखोजा से, हेलो विश्वानी, गीत आपके नाम, आपके पति, आपके बच्चों के नाम और सब बाबूलाल परिवार के नाम। यह गीत जाएगा सुलमा दुखित के नाम, मेबर्ग से है, बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद है आपको, आपके शौहर को, आपकी बेटियां हैं और सब दुखी परिवार। तो अगला गीत आपके नाम, और अभी फ़ोन पे कुछ दोस्त हैं, उनसे मिलने की कोशिश करते हैं। ट्राई टू बी शॉर्ट एंड स्वीट, और रेडियो का वॉल्यूम कम कर दें प्लीज़। हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी, प्रेमिला जी नमस्ते,
1: नमस्कार,
0: कैसे हैं आप, ठीक हैं?
1: ठीक है।
0: हाँ, अगला गाना है बड़े अच्छे लगते हैं, फिल्म का नाम है बालिका बधु, बोलिए। हाँ, किसके नाम गीत कर रहे हैं, बोलिए जरा।
1: के नाम कर रही हूँ, 5 तारीख को उसके जन्मदिन की।
0: हाँ, किसके नाम कर रही हैं आप?
1: सिटी के नाम, उसके पति,
0: उसके
1: बच्चे और उसके फूफू जन्मदिन था।
0: ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने फोन किया, और एक दोस्त से लाइन पे उनसे मिलेंगे। हेलो
2: हेलो प्रताप भाई जी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, आपका शुभ नाम।
2: मैं रीता हूँ लालोगा से, आप कैसे हैं?
0: मैं ठीक हूँ, आप कैसी है?
2: हाँ मैं ठीक हूँ।
3: मेरे बहन का जन्मदिन था कल 4 तारीख का, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। और मेरी बड़ा बहन थी, और मेरे बेटे का था 3 तारीख का। और बस गीतिया परिवार, भिखारी परिवार, बंधु परिवार, अर्केदु परिवार की ओर से अच्छा सा गीत डाल देना।
0: ओके, प्यार सा गीत हम चलाएंगे उनके लिए, और जितने भी लोग काम कर रहे हैं इस समय या रोजी रोटी कमाने के घर से निकल चुके हैं, बों को आश कहते हैं हैव अ लवली डे। बहुत से बच्चे अभी ट्यूशन पर जा रहे हैं, कुछ बच्चे जा चुके हैं, पर कुछ बच्चे घर ही पर रहेंगे, मम्मी पापा को हेल्प करेंगे घर के कामकाज में। चलिए अच्छी बात है, पढ़ाई के साथ साथ अगर मम्मी पापा का हाथ बटाते तो ये भी अच्छी बात है। आजकल इस सर्दी के मौसम के कारण बहुत से लोग बीमार है, अस्पताल है, अस्पताल में है, क्लिनिक में, या घर पे आराम फरमा रहे हैं। सो दवा के साथ दुआ की भी ज़रूरत है। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप लोग जल्द ठीक हो जाए। और शास्त्री बनवाली जी, गीत आपके नाम, विशाल मंडप इटली से है, उनकी पत्नी, उनकी बेटी और मॉरिशस में उनके सभी मंडप परिवार के नाम, और यही प्यारा सा गीत हम चलाएंगे, लोंग चिबुक राजा, प्रवीण भैरव, श्याम मंगल, संजीव, सुदेश जसवा, उनकी मामा राजकुमारी और सब जसवा परिवार के नाम। यह गीत जाएगा रानी और परी के लिए भी, बहुत ही प्यारा सा गीत है अमित कुमार की आवाज़ में।

और हमें तो सब कुछ अच्छे लगते हैं, सूरज की किरणें, बारिश का पानी, ये हरियाली, ये खेत, ये बाग, भगवान का बनाया हुआ हर एक चीज़ अपने आप में खूबसूरत है और भगवान जानता है कि क्या बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। भगवान की रचना के आगे इंसान जो है, बस इंसान कहता है वाह वाह क्या रचना बनाई आपने प्रभु, इतना खूबसूरत संसार आपने बनाया। पर अफसोस आज इंसान इस संसार को बिगाड़ रहा है। काश इंसान समझ पाता कि उसे इंसानियत दिखानी है, उसे अच्छे कर्म

0: करने हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारा अच्छा कर्म ही हमारे साथ जाता है। घमंड किस बात की दोस्तों, जब ये अपना शरीर ही अपना नहीं है, पांच तत्वों से बना है ये शरीर और एक दिन पांच तत्वों में ही मिल जाता है। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, अगर कुछ लेकर जाएंगे तो वो है हमारा कर्म, जो पुण्य का काम हम करते हैं। और कहते हैं कि अगर आप किसी गाय को खाना देते हैं, या कुत्ते को रोटी देते हैं, या चिड़िया को चावल देते हैं, या मछलियों को दाना डालते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये जो है हमारे जो जीवन में जितने ग्रह होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो थोड़ा बहुत कम हो जाती है। क्या बात है। और किसी गरीब को खाना खिलाना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, ये भी बहुत अच्छी बात है। और हम काम करते हैं और हर महीने के अंत में हमें एक सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, तो उसमें से अगर थोड़ा सा निकाल कर गरीब लोगों को दें या ज़रूरतमंद लोगों को, तो भगवान भी हमें बहुत आशीर्वाद देते हैं, कि नहीं। चलिए अगले गीत कर बढ़ते हैं। सुबह 11:40, नेक्स्ट सॉन्ग फिल्म का नाम है जीवलती, फिर ये दिल न होता बेचारा। और ये प्यारा सा गाना हम चाहेंगे सोनम चितंकी जी के नाम, जो बहुत प्यार से मैं सुने इस काली से, उमा जगनायक लू यह गीत आपके नाम भी। और एक दोस्त है, हेलो
1: हेलो, नमस्ते प्रताप जी।
0: नमस्ते जी, आपका नाम?
1: मैं श्यामा विलमे से बोल रही हूँ।
0: आपका स्वागत है।
1: हाँ, मेरा ही जन्मदिन है आज ही।
0: हैप्पी बर्थडे आपको, ढेर सारा प्यार।
1: हाँ, तो विश करते हैं, मेरी तीन बेटी हैं, रेशमा, श्वेता, नीतू, मेरी दामाद है अनिल मानोज, नाती नातिन है वृष्णि, निधि, यश, परी, अनुष्का और अनुष्का, यस यही, और मिलाप और रामसगन मंगो परिवार की ओर से एक अच्छा सा गाना डाल देना।
0: जरूर, अगला गीत बहुत ही प्यार सा गीत है, फिल्म का नाम है ज्वलती। ठीक है, ओके। और एक दूसरे लाइन पर मिलेंगे। हेलो, नमस्ते जी, आपकी आवाज उतनी अच्छी तरह से नहीं आ रही है। हेलो,
2: नहीं अच्छा है।
0: हाँ बोल।
2: मोताबा में आज मेरी नातिन का, नाती का, बेटी का जन्म, एक परी आया है, एक साल हुआ है।
0: क्या नाम है?
2: नायको, उसका माँ का नाम है मालिनी नायको, दादी का नाम, माँ का नाम है निष्ठा, पिता का नाम है आशीष, सभी नायको परिवार उसको बधाई देते हैं। आज मैं आऊंगी वहाँ पर, मैं कहती हूँ रेणुका से, बड़ी दादी हूँ। सभी बंधु परिवार।
0: आप येष्णा की चाची हैं? येष्णा नायको की चाची हैं आप? नहीं,
2: नानी।
0: नानी हो, ओके ओके।
2: और सभी नायको परिवार, परिवार, बंधु परिवार, इमगित परिवार, पिता परिवार, भगवान परिवार, सब उसको बधाई देते हैं।
0: हमारी ओर से भी उन्हें ढेर सारी बधाइयां, प्यार आशीर्वाद है। ठीक है,
2: धन्यवाद।
0: ओके जी। और ऐसे ही जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो उन्हें आशीर्वाद ज़रूर मिलता है। और जब हम आशीर्वाद के बारे में बात करें, तो कल मॉरिशस में हमने मनाए कृष्ण जन्माष्टमी। हाँ, बहुत अच्छी तरह से बीती और भव्य रूप के साथ एमबीसी टीवी पर इसका प्रसारण हुआ था। एमबीसी टीवी फ्री और रेडियो मनोरंजन पर रात के 8 बजे से रात के 12 बजे तक। सो जितने लोगों ने इस प्रोग्राम को देखा टीवी पर, जितने लोगों ने सुना, तो भगवान कृष्ण का आशीर्वाद आप सब पर सदा बना रहे, आप लोग हमेशा खुश रहे। तो चलिए बढ़ते हैं गीत की ओर। ये दिल न होता बेचारा, आखिर ये दिल बेचारा क्यों हो गया। चलिए हम भी सुनते हैं, आप भी सुनिएगा।

दुनिया में हम रोज़ किसी न किसी से मिलते हैं, कुछ अनजान लोग होते हैं, कुछ अपने होते हैं और ये जो लोग होते हैं कभी कभी हम उन्हें पहचानते हैं, कभी पहचानते भी नहीं, फिर भी वो लोग हमें हाय हेलो कहते हैं तो हम भी हाय हेलो कह देते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में जब आते हैं तो हमेशा के लिए रह जाते हैं, क्या छाप छोड़ जाते हैं कि नहीं। हाँ, तो ऐसे ही लोगों से मिलते रहिए, प्यार से बात कीजिए, और जब हम प्यार से बात करते हैं तो लोगों का दिल जीतते हैं, है कि नहीं। शनिवार का दिन है, हम जानते हैं घर में बहुत सारा काम पड़ा है, अभी घर की साफ सफाई करनी है। सप्ताह के दिनों में आप लोग काम करते हैं, सो वीकेंड को कुछ लोगों को मौका मिलता है घर पर रहने के लिए। चलिए, अच्छी बात है, घर की साफ सफाई करनी भी ज़रूरी है, पर थोड़ा सा समय निकाल कर रेडियो मोशस का साथ दे रहे, थैंक यू जी। और बेशक कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई आज कौन सा दिन है, कमीज भी नीचे जागे। कुछ लोग सोच रहे भाई कि आज मंडे तो नहीं, नो आज मंडे नहीं, आज सैटरडे यानी कि शनिवार है। और देखते ही देखते सितंबर का महीना भी आ गया, और अभी अब आएगा गणपति जी का त्यौहार, उसके बाद वेंकटेश्वरा गोविंदन पूजा, यस, और साल भी बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। अभी हाल ही में तो जनवरी के महीने में थे और अब सितंबर का महीना आ गया, क्या बात है। अगला गाना, जी हाँ, फिल्म मशाल से लिया गया, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, और ये प्यारा सा गीत नीतू जी के नाम हम

करेंगे और डॉक्टर अंजू की ओर से उनके मंगेतर होने वाले ससुर जी, सासू माँ और उनके पूरे परिवार के लिए। चाची ललिता कुशल है थयोले से, उनके सभी बच्चों और कुशल परिवार के नाम, सब कलकत्या जिराखन और हरकू परिवार के नाम, आप लोग थयोले से हैं, थैंक यू जी। शालिनी हीरू लाफलोवा से, उनके पति विशाल, दो बेटियाँ, उनके भाई कृष्णा और सब हीरू परिवार के नाम अगला गीत जाएगा। और यही प्यारा सा गीत हम चलाएंगे विद्या की ओर से, उनके पति, उनके बच्चे और उनके पूरे परिवार के लिए। और यही प्यारा सा गीत सत्यम सुनु के नाम, मुकेश गंगा, सूरज गंगा, सब गंगा परिवार जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू जी हमारा साथ देने के लिए। देविका रामगतिया और फिर है राधा सिबालक जी, यह गीत आपके नाम ही। चलिए एक साथ सुनते हैं ये गाना।

जिंदगी का फलसफा कौन समझ पाया है, कौन समझ पाएगा। जिंदगी अपने आप में एक रहस्य है। यस, द बिगेस्ट मिस्ट्री ऑन दिस अर्थ इज लाइफ। और कहते हैं कि जब दुनिया में आते हैं तो लोग जश्न मनाते हैं, और जब दुनिया से जाते हैं तो लोग मातम मनाते हैं। पर ये आत्मा जो है एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाकर ही रहता है। सुबह के 8:53 कहिए दोस्तों, कैसा लग रहा है हमारा शो? होप यू एंजॉयिंग द शो। हमारे गाने आपको अच्छे लग रहे हैं। अगला गाना चाइना टाउन फिल्म का गाना है, बार बार देखो हजार बार देखो। विशाल भुजावन जी, यह गीत आपके नाम और सब पदार्थ परिवार की ओर से इस गीत का रिक्वेस्ट किया है संजय बिहारी ने, फॉर विशाल भुजावन एंड फैमिली एंड पदार्थ फैमिली एज वेल। और यही प्यार सा गीत हम चाहेंगे बिमी के नाम, बिमी फ्लाक से। हेलो बिमी जी, कैसे हैं आप? शोभा पॉम्प्लेमूस, हेलो शोभा जी। और फिर कमला जी ने यह गीत आरोही के नाम, ज्ञान और ज्ञान और चिता विश्राम है मोदलवे से। हेलो जी, गीत आपके नाम भी जाएगा। और प्रमीला है कैटोबोन से, यस गीत आपके नाम। इंदिरा लौतन जी, रवि बंगारू कैसे है भाई जी, ये गीत आपके नाम है। नदी वाला जो है वैनकूवर कनाडा में है और हमें सुन रहे हैं, यस नदी वाला भाई, ये गीत आपके नाम भी, बार बार देखो हजार बार देखो। इंदिरा चिंताराम जी, ये गीत आपके नाम। माता जी, आपके बेटे है अजय और बहु पूनम, बेटा चंदन, बहु प्रिया, बाल गोपाल, सलोनी और सब चिंताराम परिवार के नाम जो मॉरिशस और ऑस्ट्रेलिया में है। रंभा जी है स्विट्जरलैंड में, हेलो रंभा जी, ये गीत आपकी तीन बेटियों के नाम, आपके पति और आपके पूरे परिवार के लिए। और ये गाना हम चलाएंगे प्रेमिला के नाम जो फ्रांस में है और बहुत प्यार से मैं सुन रही है। सो जाए गीत आप लोगों के नाम। मोहम्मद रफी साहब की आवाज के साथ यह प्रोग्राम समाप्त होने को आया है। 9 बजे का फ्लैश न्यूज के बाद आज की चर्चा पीक टाइम मैगजीन। सुबह के 6 बजे से अभी तक आपने हमारा साथ दिया। आपके फोन कॉल्स और SMS के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आपकी मुलाकात होगी अब कल संडे की शाम को 3 से 4 बजे रेडियो मनोरंजन पर और एम फ्री पर। प्रोग्राम होगा ऐसा भी होता है। सो टिल देन हमारी ओर से और जी प्रताप सिंह की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। हैव अ लवली सैटरडे, बॉन वीकेंड, गॉड ब्लेस। मिलते हैं कल संडे की शाम 3 से 4 बजे ऑन आरएम फ्री रेडियो मनोरंजन। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड एंजॉय लाइफ।

0: नमस्कार, संक्षिप्त समाचारों के साथ स्टूडियो में उपस्थित हो चुकी हैं पूजा सुकालू। नमस्कार पूजा।
1: नमस्कार किरण, सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। सरकार नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन कार्यक्रम को फिर से शुरू कर रही है। इसके पायलट चरण में अगले 16 से 28 नवम्बर तक ग्रेड 8 के 12 से 13 वर्ष की आयु वाले 200 छात्र शामिल होंगे, जो 14 दिनों के दौरान युवा अनुशासन, नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, सुरक्षा और स्वयं सेवा पर केंद्रित विभिन्न गतिविधियों में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री दफ्तर की सरपरस्ती में इस प्रोग्राम में शिक्षा मंत्रालय, युवा एवं खेल मंत्रालय तथा पुलिस विभाग के सहयोग प्राप्त है। पायलट चरण के समाप्त होने के बाद कार्यक्रम का मूल्यांकन किया जाएगा। एक सफाई अभियान के दौरान

0: रेत के साथ लगभग 30 किलो ईंधन तेल के गुच्छे और स्लैब एकत्र की गई। कल नेशनल कोस्ट गार्ड के जवानों ने लगभग 366 किलो ईंधन तेल के भंडार भी बरामद किए, जिसमें समुद्री सीवीड मिले हुए थे। ये भंडार वादी जामुगत के आसपास 1 किलोमीटर की दूरी तक फैले हुए थे। सितंबर 2024 में हुई जॉन माइक मार्टिंगेल की मौत की न्यायिक जांच कल रजहिल की अदालत में फिर से शुरू हुई। असिस्टेंट प्रिजन सुपरिटेंडेंट मोहम्मद आसिफ रहमतुल्ला से पूछताछ जारी रखी गई। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन के प्रतिनिधि का मानना है कि वो सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने कुछ कैदियों को गवाही के रूप के लिए बुलाने की योजना भी बनाई है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मॉरिशस UTM द्वारा कल और आज पॉइंट साबल स्थित अपने कैंपस में एक ओपन डे का आयोजन किया जा रहा है। उद्देश्य भावी छात्रों को UTM द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले विभिन्न कोर्सों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देना है। 3 साल बाद बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक के सिंगर शान का शानदार कॉन्सर्ट आज SVICCPI में। इसमें शान अपनी लोकप्रिय आवाज़ से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे, जबकि उनके बेटे माही भी पहली बार मंच पर अपनी प्रस्तुति देंगे और मशहूर गायक KK को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और समाचार के बाद आज की चर्चा प्रोग्राम में आज रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट एक्ट 2026 पर चर्चा की जाएगी। किरण जानकी के मेहमान होंगे SI मिर्जा बुधन। और विदेश की खबरों में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि कीव के केंद्र में हुए हमले के दौरान एक रूसी ड्रोन ने यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के मुख्यालय को निशाना बनाया और उससे टकरा गया। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए। नमस्कार और शुभ दिन।
1: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: आप सबको के नमस्ते। आज की चर्चा में हम किरण आप सबको के स्वागत करत है। आज जोन विषय पर हमने चर्चा करब जा हमने के सड़क पर जोन कानून के एगो नयापन अनगल कानून में उ विषय पर बातचीत हुई। रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट एक्ट 2026 पर बातचीत करे खातिर आज हमने के स्टूडियो में मेहमान हवन सब इंस्पेक्टर मिर्जा बुधन जी। मिर्जा बुधन जी नमस्कार।
1: नमस्कार, आदाब किरण जी।
0: आदाब। आज के ई कार्यक्रम में हमने आज से जाने चाहब जा कि जो सबसे बड़ा चर्चा के विषय बनल बा अभी आजकल, मंगर के दिन हमने के पौलमा में एगो कानून के सख्त करे पर नवा कदम उठावा गल बा और रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट एक्ट 2026 पर जितना भी फैसला लेवल गल बा जेकर से जनता के सीधा रूप से संबंध बा उ लोग के चाहे जाने के एकर बारे में थोड़ा ई विषय पर हमने आज बतियाब जा। सबसे आगे तो हमने के बतावा कि अगर ब्रेफ मोटा मोटा तौर पर जे जाप जा दिखे चाह जा कि ई जो कानून बा ओकर में कौन अमौन मौ आने गल बा तो कौन मुख्य जो बात बा उ सकबा बोली।
1: हाँ देखा है तो एगो बड़ा बात है और हमने खातिर हमने के पुलिस खास कर ट्रैफिक ब्रांच के और सेफ्टी के जो हमने के लिए नीति है हमने खातिर एगो बहुत बड़ा परिवर्तन आनल गलबा और जो आय और अभी समय में कि जो सबले जो लैपाक करेला से जब एगो आदमी के जान चल जाला एक्सीडेंट से जब एगो फताल गोद एक्सीडेंट होवेला तब बहुत कोई अफसोस भी महसूस करन से अपन सैंपाची भी देवन से तो एकर में एक मजा है कोचिने किसे भी देते जब भी देने तो हमने के सड़क पर एक्सीडेंट कोचिने हो लिया अलबा तो एकर खातिर एगो एगो किसी बोल से एगो मौतु से एक मजा आगते करे खातिर है जो सौसमा लालवा में खतन से आने के जो भूति हो गलबा अभी आए ओसन मम तो एक में जो सब बड़ा से जब एक आदमी के जान चल जाला था जब एक आदमी अपन लावी पे चु जला तो जो हो आदमी कुपाब रही जब आदमी जो ना एक्सीडेंट कर ले जो कुपाब रही तो ओकर खातिर बहुत बड़ा एगो सौतौस अभी पहले तो हाँ लामान रहल अभी देखा पोमियती जब कोजिंग डेथ बाय डेंजरस ड्राइविंग यानी कि जब तू गाड़ी चलावत हो ऐसे फासो में और जो

0: डेंजरस ड्राइविंग से एक मजे हो के आदमी के ओकर जान चल गल त एकर जुर्माना जो पहले 50,000 रुपी रहल 50,000 रुपी से 100,000 रुपी तक रहल त एकर जुर्माना 100,000 रुपी से 150,000 रुपी तक हो जाता। देखा जुर्माना के तौर पर यानी कि लामौन जो रही पे एकर के त एक एक मजा बढ़ा दे रहा और बढ़ाइले उन सही फासो में जो आदमी सौची हुई और है जे अब आदमी के जब एगो है जब ओकर सौतों से लामौन सही थे तो ओकर डिस्क्वालिफिकेशन भी आवेला तो ओकर डिस्क्वालिफिकेशन जो अपन लाइसेंस के मजे तो जो सेवी करते ला ओके 2 से 3 बना दे लूँ सा 3 बरिस तक नहीं सकब गाड़ी चलाई है से पहला हला। अब जो आदमी एगो रिपीटे कर ला दूसरा लाइसेंस एगो का करता तो ओकर लामौन कुमौसू हुई 400,000 से 800,000 तक और ओकर डिस्क्वालिफिकेशन ओके सेटों तक ओके वो डिस्क्वालिफे रही अपन गाड़ी चलाई के तो देखा हाई बोल जला मजा एगो फासो में कि तू गाड़ी चलेला डेंजरसमेंट निमन से रिस्पॉन्सिबल से नहीं और एकर खातिर कोई के जान चल गल तो देखा तब तोहर जुर्माना में पिछ तोहर लाइसेंस पर भी एगो सौक्षों होता है एगो भारी सौक्षों जिनसे आदमिया सौची हुई कि हाँ एगो बहुत मूवे काम कलक एगो बहुत मूवे काम कलक और ओकर ओकर सौतों सो के मिलल। अब देखा है ये बात अब जो एगो आदमी गाड़ी चलेलक और एगो एक्सीडेंट करलक और हौ वक़्त वो शराब या फिर ड्रग के ओकर लेफ्लियंस में रहल पॉजिटिव रहल और हौ हादसा हो गल तो एकर भी एकर लामान देखा अभी तो 50,000 से 100,000 रहल तो एकर लामान 200,000 से 500,000 हो जाता और एकर डिस्क्वालिफिकेशन 3 से 5 तक हौ आदमी के ओकर लाइसेंस डिस्क्वालिफाई हो जाए और एकर जिस चीज़ा में रिपीटे कर लक डिजेम्फा जैसे हुई तो एकर लामान 500,000 से कुमौसू हुई 1,000,000 तक सकी एगो ओकर ओकर सौक्षों रहे और ओकर डिस्क्वालिफिकेशन 10 बरिस तक उस सकी मजा वो आदमी अथी नहीं गाड़ी चलाई क्योंकि दुआ नहीं रही तो हाई सब सौक्षों बहुत है बोला था ये सब लालवा में प्रिकॉशन बात अब सुनो अब जब माजिस्रा जब ऊ देवेला तो ऊपर पर है कितना ओके सौक्षों देवेला हई अंगो रहल हई 2 गो जो एक्सीडेंट होला ग्राफ जो में आदमी के जान जला तो कैसे होला। अब एगो और है एगो नावा हई अमोदमन है एगो नावा आजूते गल के लालवा में ये बोलेला कि गाड़ी चलावत हो एगो आदमी के ओकर जान चल गल और हाउ समय तोहर लाइसेंस नहीं बा देखा हमेशा हमने बताया ना आदमी के लाइसेंस नहीं बा तो आदमी के तू हई ओफेंस और इतना लामान पे करब तो अब जे हाउ हाउ हाउ वक्त तोहर लाइसेंस नहीं बा और जब ब्लॉकेट होल देखल तोहर लाइसेंस नहीं बा और हाउ वे लेता हूँ देखा जा कि एगो आदमी के जान चल गल बा तो एकर में भी एगो एगो एगो एगो एकर एकर हई नवा शिक्षुआ आसूते कर और एकर लामान 200,000 से 500,000 तक सकेला रहे और एगो इम्प्रिजनमेंट भी रही और एकर जिस एकर इम्प्रिजनमेंट 5 बरिस तक सकब जाए प्रिजन में और जे है रिपीटे कर ला तो डिजेम कुछ या फिर रिपीटे कर ला तो एकर लामान 500,000 से कुमौसे हुई 1,000,000 तक लामान सकी एगो माइस्ट्रा तोरा इम्पोजे करे और एकर प्रिजन सकब 8 बरिस तक प्रिजन करे एकर खातिर तो है देखा कि आदमी हमेशा हम बोना सा चाहे लाइसेंस निकाले के या फिर फुस लाइसेंस से कोचे करेलन सा या फिर तरीके करेलन सा या फिर कोई के लाइसेंस ही नहीं है मैं सुबह बोलन सा हई जे जाता है एगो एगो एगो हाली से चला हाँ। बोलन सा कि ला पुलिस नहीं रहेला हाँ बोला ला पुलिस नहीं रही सीमा में या फिर मैं हई में मैम ला पुलिस नहीं बा मैम भीड़े बा मैम तोहर भीतरे के सीमा है मैं सुबह एगो एक्सीडेंट होल एगो हादसा होल और कोई के जान चल गल तो एकर कॉन्सिक्वेंस देखा कि हाई प्रिकोनिजे के लोन सा कि देखा 8 बरिस तक सकब प्रिजन करे एक लामान सकी 1,000,000 तक जे रिपीटिशन रही नहीं तो 500,000 तक भी सकी एक लामान रही तो हाई अं ग्रोक बोलते सर कि जो लामान को सौक्षों लामान अनलेवन सा कि आदमी के खाली बताए खातिर नहीं कि मजा हई दाई सब लालवा हा मैं सुम जब हई सब मूवे काम करब है सब जिम्मेदार गैर जिम्मेदार काम करब तो एक कॉन्सिक्वेंस की बहुत भारी रहे काल रहे
1: हाँ। और जैसे अभी सुनत हवा जा हमने संगे सब इंस्पेक्टर मिर्जा बुदन हवन और हमने के बतावत हवन कि कैसे हमने के सड़क पर जो दुर्घटना हो ले जाता ओके कमती करे पर ओके घटावे पर कितना सख्त नियम अपनावल गल बा जेके बहुत जल्द अब लागू करल जाए। और बुदन जी आप मन बा कि हमने के सड़क पर भले ही हमने के जो नियम बा ओके सख्त कर ले आवत है जा फिर भी जोन

0: जान गवावे होला लोग की संख्या बा 100 की संख्या के पार कर दे रहे सा 100 कात लगभग
1: 104 हो गल बा। हां है तो बहुत बहुत बुरी बात है और हमनी के भी हमनी के ने अच्छा लगेला कि हमनी के दिल दुखाला कि इतना आदमी अपन जान गवात होन सा बिगे साम में भी देख रहे को सीरी एक्सीडेंट होइले हाल जहां पर आदमी लोग अपन जान गवा देन
0: जी हां त ई बहुत एगो गंभीर विषय बा जहां पर सबके हाथ में आजकल देखत है जा कि सब कोई सकता एगो गाड़ी के मालिक बने लेकिन सड़क के जोन यूटिलाइजेशन बा सड़क के जोन इस्तेमाल बा ओके सावधानी से चाहिए करे के बहुत जिम्मेदारी के साथ चाहिए करे के और इ बात के ख्याल रखे खातिर कानून के समय के साथ जस्ती सख्त बनावल जाता और इ विषय पर आज हमने के जानकारी देवत हवन सब इंस्पेक्टर मिर्जा बुदन जी और इ विषय के अभी थोड़ा घड़ी में हमने और आगे बढ़ावा जा हमने संगे जुड़ल रहिया।

0: आज की चर्चा में आप सबको के एक बार फिर स्वागत बा। आज हमने जो विषय पर बातचीत करत है जा वो है सड़क पर जो नियम बा वो कर में जो अमानमो अनगल बा वो में कौन कौन बात शामिल बा, मतलब कि रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट एक्ट 2026 पर आज बातचीत करे खातिर हमने संगे हवन SI मिर्जाबुदन। मिर्जाबुदन जी हमने के बतावा आजकल देखत है जा जब से पालमो में ई अमानमो पर चर्चा होल तो फेसबुक सोशल मीडिया पर देखत है जा कि ढेर कोई लाइसेंस के लेके जो नवा कदम उठावल गल बा, चाहे आपके ओरिजिनल लाइसेंस प्रस्तुत करे के और एकर से आगे एगो बड़ा सोशल मीडिया पर एक ज़बरदस्त जो बातचीत चलत रहल उ जो टेलीफोन सेवी करत हुआ ड्राइव करते बखत तो ई दुगो विषय पर काफ़ी लोग जानने को जखता बन जा कि ई कानून कैसे अप्लीके होई, कौन कौन बात के प्रावधान बा ई नवा कानून में, थोड़ा हमने के समझावा।
1: हाँ ई तो अच्छा बात बोला कि हम जो कि है दिखा दी कि बहुत कोई जस्ती है जिन हो सब शौकशो नहीं में बल्कि जिन प्राचिक में लोग की अफेक्टे करी लाइसेंस के बारे में या फिर टेलीफोन के बारे में। तो हाँ देखा लाइसेंस के बारे में हमने के सब रहल दिखा दिन से हमने जब से है फोटोकॉपी के जब आ रहा कानून तो बहुत हला देखल जैसे कि आदमी लोग अभिजे करते हल बहुत हला आदमी लोग फोटोकॉपी करे बची दू गो लाइसेंस मिला के ओकर संगे फोट करते हल स्टैम्प करे कि देखा है के फोटो लेके उमें डाल के फोटोकॉपी करके तो है सब पर मजा अति ऐसा पर मजा हमने के जब देखा था निशा तो लापुलिस भी हमने देखने से एगो इनोवेशन करनी सर कि तब बड़ा लाइसेंस हमने के वो अपन सिस्टम करे कि सड़क पर लाइसेंस चेक ही करे लगनी सर हमने के अति हमने के गाँचू पड़े तो एक भी देखा थी सर कि सरकार भी एगो कदम उठेलक कि बता कि अब फोटोकॉपी नई पॉसिब रही यानी कि एगो आदमी के सकी चाहला अपन ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस लेवे तो एक में किसी आदमी लोग के एगो मशीन रहेला कोई के दू गो मशीन कोई के तीन गो मशीन या फिर अलग अलग मशीन में वो लोग पहुँचे कैलन सर तो एक में देखा दे कि वो लोग के सोल्यूशन जो बोलन सक मजा अन्न वन सर कि सकबा अपन एगो डिजिटल वर्शन अपन लाइसेंस के डिजिटल वर्शन एगो एप्लीकेशन है जो सबको अब जाने ला कि कोविक ओकर परे तब न कब भी कहाँ पर भी सकब हाउ एप्लीकेशन परे अपन डिजिटल लाइसेंस पूजा करे तब पोता पर और तब भाई एक्सेप्टेबल रही अच्छा। देखा सकेला कु मौसम में आदमी लोग के तनिक उन्नति हुई मैं सुनब जब आबिचे हो जाए जब जान गेला कैसे रही तो देखब कि हैला ऐसे अच्छा से तो लोग भी अच्छा रही कि अपन लाइसेंस हमेशा तोहर संगे रही या फिर तोहर पोता के जरिए सकब बता दे और हमने के बेला पुलिस भी जब देखब से तब जानब सकी हाँ है ये आदमी है जेनविनली एक टैम्परिंग नहीं होबा कि वही लाइसेंस है और ओकर लाइसेंस बा और खास कर कि देखा कानून में जो नवा सेक्शन आल बा कि ड्राइविंग और लाइसेंस और कोजिंग डेफ तो है सब पर बहुत ऐप होता है हमने के लॉकेट भी करे के और आदमी लोग भी जनियन सकी अब कंट्रोल जस्ती सख्त रही जस्ती सेवेयर रही तो ऐसे उन लोग के देखो वहाँ से करे खातिर देखा कोनो में सोचते नहीं बा मैं खाली की मजा कैसे हाउ लेपो कहे खातिर ए फोटो कॉपी आ रहा कहे हाउ लेपो कौंसलामिया बा रहा कौंसलामिया भौपी करे खातिर चाहे अपन लाइसेंस संगे रखेगी तक हाउ खातिर एगो सोल्यूशन खोजल से देखा अभी भी ढेर अथी नहीं बा कि आदमी लोग के सकेला चाहे अभी चो के और हमने ये भी याद दिला दी सर कि जितना ही सब कानून पर बतियात है सर तो ये अभी अभी तुरंत प्लस कैसे काल से नहीं लागू होगल बा

0: बाइबल के एक लेटो ले जाए कि कानून भी जब बनल बता बोले बाकी सिलो सेटन सेक्शन जैसे जैसे एक मजे ओकर तैयारी हो जाए ओकर प्रिपरेशन हो जाए तब मजे कुछ एक मजा अति ओकर बैकग्राउंड जो एक आध गो कानून के ओके ओके लागू करे खातिर चाहलक मजा प्रिपरेशन करे के जैसे जैसे प्रिपरेशन हो जाए तो उसे उसे लागू कर मिसल में है कानून बाह जा और एक पर आदमी अच्छा बाकी है इन्फॉर्मेशन दे दो आगे से तो आदमी अपन प्रिकॉशन लेवे लगी तो देखा बड़ा बात नहीं है नहीं बोलब कि सकेला कोनो आदमी के तनिक प्रॉब्लम हुई मिसल में चाहला कर से एक मजा अति
1: अभिचे
0: हुई के और अपन प्रिकॉशन लेवे के और उतना मजा झिफकिलते हुए रही और दोनों तरफ वो लोग के भी अच्छा रही कि नहीं परी फोटोकॉपी हर कुछ कराए के या फिर वो के लाइसेंस फाट उठ जाए तो सेकेंड सक में जाए और डिजिटल वर्जन जाए अपन पोता के जरिए हमने के बता दी हाई रहल टेलीफोन में सुनो एक वो बात है लिसेंस हाँ सॉरी हाई रहल लिसेंस मैसी और एक पर एक और एक एडिशनल बता कि देखा पहले जब तुहर लाइसेंस नहीं रही तुर संगे अब तुरा ला पुलिस एगो पापिए दे कि जाके अपन लाइसेंस पूजा करेगी तब एगो दिले देवलन सा सैंगजू हो लालवा बोला और जहाँ पूरी खोजब तो सासों में चाहे जाके पूजा करेंगे तो देखा है जे अपन भाई दिले में जे नई पूजा कर ला तो एक भी लामौन में एगो सौक्षों एगो अथी का लवन सा प्रेसिजन लवन सा कि एक लामौन मिनिमम देमिलुपी हो जाए एक लामौन मिनिमम देमिलुपी हो जाए हमको याद बा पहले सैंक सौंपी फिक्स पेनाल्टी में सैंक सौंपी रहे लामौन तो फिक्स पेनाल्टी से निकलन सा तो अब मजा देखा जैसा कि एगो प्रोसीजन बा कि लामौन चाहला देमिलुपी मिनिमम हो जाए जे अपन लाइसेंस नहीं पूजा कर लाशो में हो सैंक जू के दिले में बस देखा ला पुलिस के भी चाहला जाने के लाइसेंस बा कि नहीं बा तब हमने के चाहला ओकर अथी लॉकेट करे के तब के केस हम माइसा लगे बिता के एना से तो ये ऐप होता है कि जब एगो पापियो जब ले लाइसेंस पूजा करे के तो चाहला ओके पूजा करे के सैंक जू दिले में रहल बात टेलीफोन के तो हाँ टेलीफोन पे भी देखा होत हल चर्चा देखा चेहरा जाने के कि क्या है खातिर आदमी मना करेला देखा लाइसेंस के बारे में तो बोलनी है ना काकुज कोसालामियाब खातिर पर लाइसेंस रहे के संगे ला पुलिस के बताए कि अपन लाइसेंस अब टेलीफोन के बारे में सब कोई जाने ला टेलीफोन एगो मेजर कारण है एक्सीडेंट प्रोवोके करे खातिर बस कि डिस्ट्रैक्शन करेला बस कि एगो आदमी काम भी नहीं सकी अपन गाड़ी भी चलाए और टेलीफोन भी टेलीफोने करे कौन सौतराशों अपन पेजी हुई तो एक बारे में एगो प्रोसीजन आलबा देखा कि टेलीफोन जो ब्लूटूथ के हो जो अथी रहल उ निकल गलबा से जा जब अपन हाथ में लेके एगो टेलीफोन इस्तेमाल करत हुआ तब एगो फोन सोला है ला हैंड हेल्ड प्रोसीजे कर लेबा और जून महीना से पीछे ही से देखा कि हाई लाइस अति टेलीफोन आपो से ऐप होता है कि एक पुए भी बढ़ा दे ललन सा अभी देखा एक पुए सैंक से जिस तक है एक लैपोटॉन्स देवलन सा एगो टेलीफोन सेवी करत हुआ और ला पुलिस तो आगते करलक फिक्स पेनाल्टी देलक या जाके पे कर देखा कि तोरा सैंक पुए में तुहर लाइसेंस में आजूते हो जाए तब बहुत ऐप होता है मिसल में एक में एगो दूसर एगो एगो एगो प्रेसिजन लवन सा और एगो आजूते का लवन सा जब है ब्लूटूथ के अति निकलल मजे ओकर पोलेमिक निकलल तो एक में अभी देखा थे कि नवा कानून बोला कि जब तू पहुँचे करत हुआ तो टेलीफोन के अलावा नहीं सब दूसर भी एगो लालवा बोला इंटर एक्टिव कम्युनिकेशन डिवाइस यानी कि कोनो एगो दूसर एगो लापारेई यानी कि तुर एगो टैबलेट रही तुर संगे या फिर तुर लैपटॉप रही पेजर रही है सब मजा जो नेटनेट पर कनेक्टे करके तू अथी करत हुआ तो है सब भी नहीं सकबा इस्तेमाल करे या फिर यानी कि कोजिया भी करत हुआ और है सब भी इस्तेमाल करत हुआ तो एक एगो ओफेंस बनैला से ओफेंस बनैला से एक भी एक लामान बात वामी रूपी और एक पुए भी सैंक आजी सा तो हाई ला चला बात याद करे के कि देखा गाड़ी चलाओ तो काहे बजे से टेलीफोन नहीं सेवी करे के ओकर कारण है कि डिस्ट्रैक्शन है और डिस्ट्रैक्शन रही तो एक्सीडेंट के होए की संख्या जैसी प्रोबेबिलिटी जैसी बढ़ जाला और नहीं सकबा कि दू गो काम करे और जो नौ पोलेमिक रहल कि मजा हैंड फ्री या फिर ब्लूटूथ एने उन्हें तो देखा निकल गल प्रोसीजन दिले वाला लुआ मैं सुनम टेलीफोन अपन लेके सेवी करत हुआ हैंड हेल्ड टेलीफोन या फिर कोनो भी डिवाइस किसे बोला का लालवा बोला का टैबलेट या फिर लैपटॉप हेने ने कुछ भी इस्तेमाल करो तो पेजर या फिर तो वो भी एगो फोंस होगल बा जब गाड़ी चलाओ तो
1: जरूर और जैसे सुनत है जा आज के हमने के प्रोग्राम आधारित बा हमने के सड़क पर कानून के और सख्त बनावे पर जो कदम उठावल गल बा ओकर लागू करे से आगे हमने जानकारी पावत है जा सब इंस्पेक्टर मिर्जा बुदन जी से वो हमने के बतावत हवन कौन कौन कदम उठावल गल बा और ये सब कदम जनला बहुत ज़रूरी बा ताकि सकब

हमनी के सड़क के बहुत सावधानी से इस्तेमाल करे और हमनी के सड़क पर जो जानलेवा दुर्घटना उत्पन्न हुई लिया होता ओके घटावे के और एगो नवा कदम उठावल जाता। कहे कि जैसे आप मनबा बुदन जी हमनी के सड़क पर ये सब जानलेवा दुर्घटना के घटावे पर कदम तो उठैले आवता सरकार और

0: नाम ले हुआ था, तो हमने देखब जा कि ये सब जो कदम उठावल जाता कैसे एकर एक लागू करल जाए और कैसे एकर पालन चाहिए करे के, और फिर देखब जा और ये आशा भी करब जा कि हमने के सड़क पर जो जानलेवा दुर्घटना के साथ साथ कोई भी दुर्घटना घटी तो वो कमती हो जाए और सकब जा एगो स्वस्थ मॉरिशस में बहुत अच्छा से अपन गाड़ी चला के अपन अपन मंजिल तक जाए। कार्यक्रम के थोड़ा समय में हमने और आगे बढ़ावब जा।
1: ऊंचे

0: आज की चर्चा प्रोग्राम में आप सबको के एक बार फिर स्वागत बा। आज हमनी जो विषय पर बात करत है जा वह हमनी के सड़क पर गाड़ी चलावे के जो नियम बा, साथ में हमनी के सड़क के इस्तेमाल करे पर जो नवा नवा कानून अनगल बा ओकर पर हमनी के खुलासा देवे खातिर SI मिर्जा बुदन उपस्थित हवन। बुदन जी, हमनी के ई बतावा कि हमनी के सड़क पर आए दिन हमें दिखला जा कि गाली चलेला और ढेर कोई बोलेला कि ये सब गाली इलीगल है, बहुत असुविधा होवेला जनता के ये सब गाली से। सबसे बड़ा असुविधा तो ये गाली करे होला लोग ही के होवेला, कहे कि कितने दुर्घटना भी दिक्कत है जा एकर वजह से हुआ था। तो ये जोन गाली बा ज़्यादातर ये इलीगल रहेला, एकर पर कोनो कानून के प्रावधान बा?
1: बहुत अच्छा बात बोला। देखा बहुत जब सड़क सुरक्षा बतियाना सर तो देखा दिन जरा ड्राइविंग बतैनी सर एक्सीडेंट ड्राइविंग जो लाइसेंस बतैनी सर तो एगो पाची एगो कौपूत में जो सकेला हो आदमी खातिर भी जो पॉसिबिला जैसे बोला उलो खातिर भी डांसे है बस कि में वितेस उतेस लोग तनको नहीं देखे लन सर। और जो दूसर सड़क इस्तेमाल कर रहा कितना आम आदमी लोग सड़क इस्तेमाल कर रहा था उलो खातिर भी एगो डांसे हो रहा कि है गाली जो गाली है गाली इलीगल। देखो गाली जो नॉर्मल है जो ऑटोरिजेशन के साथ हो रहा तो ओकर खातिर हमें बंदोबस्त करना सर, ये सड़क बंद कर देना सर, प्लस स्पेशल में देवी ना सर जब मैं कोई के दूसर की दुर्घटना नहीं हुई मैं है जो गाली इलीगल कर लन सर। या फिर देखो कि बहुत जवान लोग मोटरसाइकिलेट पर लेके संगे अपने में कॉम्पिटिशन कैलन सर। या फिर कबो देखबा कि लूटो भी अभी एगो दूसरे को अच्छी बा पाँच छः गो लूटो मजा वो लोग भी एगो सिस्टम प्रयास अपने में सबके संग सबके साथ मजा संगे कैलन सर। तो देखा एकर में एगो एगो एगो जरूरी एगो जरूरी समझमा अलबा यानी कि ओकर जो सौताओं सब तू हमके हमार सकेला में बात नहीं कोई बा पहले जब गाली जब जब हमने पूछीब करते आदमी लोग के ओकर लामान मिल रूपी रहल 1000 रुपया। तो हबी हाई लामान मिल रूपी से निकल के मिनिमम 50

0: 000 roupies au Galois. 50 000 roupies, c'est 100 000 roupies. Tac, ce qui est là. Et go rallye illégal, mais j'ai pas de suivi, car la manerie. T'as haï là, important. Khas kar ki bahut naujawan log sab mein participate ulan sa ta sakela hai sum jab sunyan sa ki jiska 100 mil rupi par la man paye kare ke ta chana lo ke du hala soche ke me sumo ekar le agem ni race bathi sa ke ai gali jab kela sa ta chala apno apan security bahut koi me accident jo ne ka pote galan sa apne se accident me o log ho jalan sa durghatna ke o log shikar ho jalan sa ya phir koi jaan bhi de jaga mai le ba ta chana gali nahi kare ke jo illegal ha अच्छा कंडीशन में जो पेमेंट है जो ऑथोराइज है तो उसमें पासपोर्ट के तहत सबले जरूरी इंफॉर्मेशन है कि जब गाली इलीगल कर बल ला पुलिस जब लॉकेट करी जान पकड़ के तोहरा तो ओकर लामान सकेला 100,000 तक तोरा चाना ओकर जुर्माना ओकर में पे करे के है जब गाली जब बतियाती से तो अच्छा बाकी देखा एगो और एगो एगो एगो एगो एगो बात है दिखा दी कि आदमी लोग जब एगो एगो एगो एगो एगो ओफेंस रहला ओकर मशीन में कैसे कि ओकर लिसापमो नहीं अच्छा रही या फिर कोई फ्लोरिसो नहीं पहन लेला या फिर कोनो भी कोनो एगो ओफेंस रही इस पर लाइसेंस अथी लाइसेंस नहीं रही तो लोग आगेते नहीं होलन सर जब ला पुलिस लोग के आगेते करेला
1: वो लोग चल ले
0: जालन सर अपन या भागेलन सर या फिर कंटिन्यू होके एगो एगो फासो करन सर कि नहीं खोजन सर आगेते के तो देखा ये दो तरफ का प्रॉब्लम होला जब वो आदमी भागे लगेला नहीं खोजे लागते हुए के तो देखा उसकेला अपने एगो एक्सीडेंट कर दे बस कि जैसे कर लन सा कबो रॉन्ग पॉइंट के कंटूने कर लन सा काउंटर फ्लो करके जालन सा या फिर अपन विटेस लोग ऑगमेंटे करके जालन सा जमे ला पुलिस और ने आगे थे करी तो हाई देखा बहुत अपन अपन अपने लाभी से खेले लन सा या फिर अब एगो दूसर एगो इनोसेंट के सकेलन सा ब्लेसे कर दे या फिर एगो दूसर इनोसेंट के एक्सीडेंट प्रोवोक कर दे लन सा तो हाई ला एगो बहुत बुरी बात है अगर प्रैक्टिकल नहीं अच्छा और प्लीज लोटोरिटी के चाहना रिस्पेक्ट करेंगे देखा ला पुलिस तो आगे थे अलग नहीं कि जैसे जब ला पुलिस जितना पुलिस जब आगे गला तो रूटीन चेक रहला या फिर कुछ रही तो तोरा जब सब चीज़ अच्छा रही तो तोरा जाए देना सा कुछ नहीं गए ना सर मुसलमान आदमी लोग जब नए आगे होलन सर तो है भी नहीं अच्छा कि लुटोईते के नए एक्सेप्ट ओकर डायरेक्टिव नहीं माने लन सर चलने चल जालन सर तो एक में एगो समझमा अलवा देखा एक लामान अब मिनिमम लामान 25,000 रुपी हो गल बा 25,000 रुपी से 100,000 रुपी तक सक बा एगो लामान पे करे जब गाड़ी नहीं आगे थे कला ला पुलिस तो आगे थे करा था तो देखा दोनों तरफ रेस में बोला था एक मकसद भी कुछ है कि जब नहीं आगे थे बोला था एक्सीडेंट प्रोवोक कर बा अपनो या फिर दूसर के और लुटोईते के डेफिए गलत हुआ तो ई में देखा जैसा कि एगो है हमें पॉजिटिव हम नहीं ला पुलिस लोग सड़क पर जो रही ना सर तो देखा जैसा कि एगो पॉजिटिव हम नहीं हमने अच्छा अच्छा बात बा कि एगो आदमी और नहीं सोचा कि जब पुलिस तो रहा जब आगे के लग नहीं आगे तो इला तो फिन हो जाला बहुत कोई के ओकर सरप्राइज मिले लगेला आपरे काहे के ओकर निमोगो जब हमने के मिल जाला तो या फिर जो कैमरा वहाँ रहेला सीसीटीवी से जब मशीन के इडेंटिफिकेशन मिल जाला तो ला पुलिस के जो दुने है किसी वजह से हमने के ओकर ओनरशिप डिटेल के ओकर प्रोपर्टी है ओकर प्रोपर्टी से जाके पूछ के लॉकेट के ना सर लॉकेट जब खोला तो हाउ आदमी के परेला लाकू में आके रिपून करके काहे नहीं आगे तो होल तो हाई प्रोसीजर होला देखबा कि तुरंत ही या फिर देखबा वैन का रहता हूँ मैं देखबा ला पुलिस तो ला पोत तापे करता कि हाई दिन हाई ले ला पुलिस तो आगे कर काहे नहीं आगे तो होला अपन स्टेटमेंट देबा तब डिफेंस देबा या फिर तब ला पुलिस तो माइस्ट्रा के आगे जाता हाउ जो लामान छोटा रहल अब ओकर लामान बताए जिसका 100,000 हो गल बा तो देखा हाई सब काम करबा तो ओकर नतीजा ओकर ओकर ओकर ओकर सॉन्क्शन ओकर सब आवत है तोहर संगे ई बहुत अच्छा है कि तू है सब जान ले ला
1: अब जब ई सड़क के जे लोग पालन नहीं करत हवन जा कानून के भागे को जत हवन जा अब एगो और बात बा जो सोशल मीडिया पर बहुत तहलका मचेले बा वो है रोड रेज रोज काहे काचे देखत है जा असली में देखत है जा नहीं बुझाता कि काहे इतना गुस्सा इंसान कर रहा था सड़क पर तो ये रोड रेज से देखते है जाके गाड़ी के नुकसान पहुँचावे लन जा फिर सड़क में लुप्सताक भी आना था वन जा तो एक पर थोड़ा हमने के आज बतियावा एगो पुलिस के हैसियत से कानून के पालन करे होला के हैसियत से
0: देखा रोड रेज सजा तोहर कोपूत में एगो आदमी के नहीं सकवा उसे दिखाते सोशल मीडिया में मालट्रेटे कर या फिर असोल्ट कर ओके ओकर गाड़ी पर इसे जतो ओके डैमेज करे या फिर ओके आगेते करके एंसिलते कर
1: निकाल
0: के मारे खोजत हुआ तो हाई सब तो देखा नहीं अच्छा रहल नहीं अच्छा रहल तो ई में एक कानून हबरी जब आमोद माहौल बा तो एगो नवा

0: section la loi en Néwanza, section 123 à N, d'une boule la road rage par, spécifiquement road rage par, haï qualité ou haï comportement par, bat kare la, or, ekar par, d'une, ekar sanction bi d'une alba, ta, dekati sa ki, काफी ए एपोटो बा और सख्त बा रोड रेज देखा एक आदमी के तरह से बताए एगे सबसे हो जाला मैं तुम्हारा तो और फासो मज कॉम्पोटमो नहीं चला और आगावे करेगी जब एगो एगो एगे हो गए आदमी से तो सख्त बा एगो अच्छा से बात करके या फिर जब ले, सब ले एपोटो जाके रापोते करोगे जाके स्टाशो में हिल के बोला कि देखा एगो ऐसे हो जाए एगो आदमी ऐसे हुल हुल हम सकती एगो एक्सीडेंट कर दे या फिर एक पोसे जाए ऐसे कि ओके रापोते कर दे रहा तो ला पुलिस लॉकेट करके लाकू ओके विदा करी तोरो बिर अब तेमो पर आई के तो ओके सॉक्शन मैजिस्ट्रा दे यानी कि तोरा द्वार नहीं है एक आदमी पर अपन चुन खिस बा या फिर चुन चुन चुन मजा ओकर खतवा ओके मजा अग्रेसिव जाके करे के या फिर ओके एसिलते करत हुआ या फिर ओके ओके ओकर ओकर मशीन के औदुमासी करत हुआ या फिर कोई तो ऐसे स्वीव कर ले जाले से ओकर घर तक तो देखा है कानून जब ऐसे बनल बा तो स्पेसिफिक बोले बा कि एगो रोड रेज एगो ओफेंस के लवन सा और एकर लामान देखा लामान 50,000 से शुरू होला 50,000 से 100,000 तक सकी एक लामान हो जाए हाई माजिस्ट्रा अपन अपन अपन अपन साजिश लेके देखी कैसे कौन सिचुएशन बा तो वो देखी कि कैसे कितना चाहना सॉन्क्शन रखे मैं सुमो लालुआ बोले बा मिनिमम चाहला 50,000 ओके लामान पे करे के और एक प्रिजों के प्रोविजन भी कर लवन सा एक बरिस तक 12 मुआ सकबा एक खातिर प्रिजों भी जाए तो एक बहुत एपोता है हम खुशी रहनी पर अभी लोग हमने के क्लिप लेके डाले रहन सा जब बचाए ना सा हाई बुधवार जे दलतन सा तो अच्छा रहल कि जनतन सा कि है रोड रेज जो अभी लोग अपन जो खिस अपन कोपोतमो जो दूसर पर निकाले रहन सा तो एकर जब दिखबा कि एक दो महीना में जब लाकू गए ला तो सकबा 50,000 से 100,000 एक लामान पे करे और नहीं तो प्रिजों भी सकबा 12 महीना तक एक खातिर प्रिजों करे तो हाई हब जब नी लापिल करते कि सब कोई के बोलनी है एक तरीका सही तरह से जाके रापोते करा वो आदमी के और ला पुलिस ओके जे एरिया कर ले हो तो ला पुलिस ओके पुसीव करी ओके माइस्ट्रा भेजी माइस्ट्रा के ओके सॉन्क्शन ले तुहरा दुआ नहीं बा ओके पर सॉन्क्शन ले के
1: तुहरा कानून के ने चाहे अपन हाथ
0: अपन हाथ में लेवे के हाँ देखा मैं ला पुलिस भी अभी आ गए थे कहने से वो आदमी कितना ऑफेंस कहला तो हमने कबोई से नहीं बताया ऐसा कबो नहीं ओके ले जाके काल्म से सासो ले जाने से और पोसेजिया कहने से फिर और एक सॉन्क्शन खातिर वो हमने माजरा पर छोड़ देना सर तो आदमी आम आदमी के भी चाहला ऐसे करे के कि कब्बो कब्बो नहीं चाहला अपन अपन अपन खीस अपन लगाज मजा हो आदमी पर निकाले के कहे कि वो भी एगो सुफे है वो भी एक एगे हो जाला आदमी से मैं सुलम चाहला निमन से कौपोते करे के
1: इंस्पेक्टर साहब हमने के ई बोला कि ई रोड रेज काहे आज परल एकर पर कदम उठावे के ई आगे नहीं रहल हमी के सड़क पर ऐसन घटना नहीं उत्पन्न होवे
0: कोपोतमो देख हाई कोपोतमो कोनो आदमी हा खिस करला कबो तो ला पुलिस पर खिस कैलन सा ला पुलिस जब कबो लो के आगे ते करके निमन से बतियाला या फिर बोला कोन दोसो तब देखबा ए सिलते के लगेलन सा दूसर फासो बतियाए लगेलन सा बोलन सा ट्रांसफर कर दो अब सा हमनी के ऐसे ऐसे तो हा हमनी के पब्लिक ऑफिसर प्रोटेक्शन पर हा हमनी के एक मजे पोते से कहला सब फंक्शनल ओके हाई पर प्रोटेक्शन हा अब हाई ऑफेंस देखा ऑफेंस वे हेडिंग नहीं रहा रोड रेज अब कहे कलों सा मैं नहीं था कैसनो दूसरों तौर पर सकबा पूछिव करे एक आदमी जब सख्ती से पूछिव करे आगे के कि एक आदमी देखा ओके सिलते कर ले बा ओके ऐसे कर ले बा या फिर ओके असोल्ट कर ले बा तो हाउस ऑफ सेक्शन पर मैं अब स्पेसिफिकमा एगो सेक्शन कहे कलों सा वो ट्रैफिक एक्ट में जो उनके रोड रेज बोले लन सा और ओकर एलिमो भी दे लेवन सा ओकर ओकर कैसे हमने के काम चला करे के एक में तो ई में बहुत ऐप होता हूँ कि अच्छा बा हमने भी खुशी है कि एगो एगो सेक्शन स्पेसिफिक आलबा और आदमी भी जान गल कि देखा हब जब करी तो ओके सकेला 100,000 तक एगो लामान रहे और ओके प्रिजों भी सकी 12 महीना तक हो जाए
1: बहुत ठीक और थोड़ा घड़ी में अभी हमने कार्यक्रम के अंत तक पहुंचब जा ओकर आखिरी कड़ी तक की ओर बढ़ब जा और देखब जा कि हमने के एगो नवा कानून अब आवता कि जब एगो दुर्घटना होए या फिर ऐसन ऐसन कोनो कोनो स्थिति रही जहां पर परी गाड़ी के जब्त करेंगे इस विषय पर अभी थोड़ा घड़ी में बतियाब जा फिलहाल ले जा एगो छोटा सा ब्रेक

0: आज की चर्चा।
1: आज की चर्चा में आपके एक बार फिर स्वागत बा। ई प्रोग्राम के अंतिम कड़ी तक पहुँचल है जा। और एसआई बुदन जी, हमने के ई बतावा कि सबसे बड़ा जो बात बा जेके लेके सब कोई में सवाल खड़ा हुआ था, वो है गाड़ी के जब्त करे पर। ई जोन प्रोसीजिया बा, जोन प्रक्रिया बा, वो कैसे चली और कब एगो गाड़ी के जब्त करे के नौबत आई?
2: हाँ, देखा गाड़ी के जो सबको बोला सीजी तो वो आवेला लालकुल और लादरुक के कंसोमेशन पर। देखा आदमी अभी एक्चुअल में जब एगो एगो एगो आदमी के पॉजिटिव लालकुल लादरुक में मिला था या फिर जब रिफ्यूज भी

0: फीस मिनिमम चाहला 17,000 रुपी ओके दिपांसे करके जे खुजी हो मशीनवा उ लेके घर जाएगे
1: है मिनिमम हा
0: मिनिमम हा अब जे आदमीया अपन मशीन नई लीगल हमनी ओके अति ला पुलिस ओकर पपीते लगे पापी भी जाके देनी सा उ नई आल मज 3 महीना हो गल तब ला पुलिस अब का करी हमनी के लालवाज से बोलवा कि चाहला हमनी के एगो नोटिस दे के अति में दुगो जूनाल में एक महीना के बाद है नोटिस के बाद बोलब सर जब नई आल त हाउ मशीन सकब सर ला पुलिस से बोलेबा कि सकी ला पुलिस ओके ला वेंट में डाल दे ओके बेच के अपन जिन डिपेंस बाद जो नोकर फीस एप्लीकेबल वा कुवेयर करके तब अब जो वो आदमी आए अपन क्लेम करे जो पैसा लगल बातों के दो अब सर हाँ वो जो एक बार इसके अंदर नया आल अपने से क्लेम करे तो हाउ पैसा हमने एगो फोन हो जिन ओके चाहे वैसे कर देगी तो देखा हाई सब बात इस सब खाली होल भाई सब पोसे जब प्रोविजन ला लुआ प्रोविजन कर लेबा अभी हमने काम कर रहे जगह पर कमिशिया काम कर रहा था हमने अति ब्यूरो कमिशिया से जो डिरेक्टिव मिली कि कैसे प्रोसीडे करेंगे तो जैसे ही प्रो मिल गए हो जब हमने तैयार हो जब सब प्रिपेयर कर रहे हो सर तो देखा कि हाई सब प्रोसीजन एग्जिस्ट रही और हाई सब कॉन्सिक्वेंस हाई सब कॉन्सिक्वेंस तो लाख के जे तू मजे अति अपन अपन अपन जो कॉम्पूट में हो जो नहीं कंट्रोल करब तो एक कॉन्सिक्वेंस ग्राव रही मैं है जब पर एक बात है हम जब से बतिया थे सर हमने सर लालवा ऐसे कर लेबा ऐसे ऐसे जितना ले सॉक्शन सब मैं कहना बोले कि जो बोंको थे अभी के फैसिलिटी वो खतिर एगो क्लोज बा एगो सेक्शन बा लालवा काम कर लेबा मैं बोले बा हाई ऊपर मैं काम करती सर कि आदमी जब लामान मिलेला तो नेसेसरी नहीं है ओके डेरांजे होके जाके लाकू पे करे के इस पला किस में है लालवा प्रोविजन कर लेबा एगो प्रोसीजर रही जो सब अपन जो लामान फिक्स पेनाल्टी ऑनलाइन पेमेंट करे एक्सेप्टे कि जो पेनाल्टी पॉइंट में आवेला तो ओके पड़ी जाए के ओकर एगो दूसर प्रोसीजर है मैं जो पेनाल्टी पॉइंट मिले हैं तो जो नामान फिक्स पेनाल्टी के सब अपन ऑनलाइन पेमेंट कर मिले हाई सब जब से हमने बतिया थे हाई सब इन्फॉर्मेटिव रहल इन्फॉर्मेशन रहल हाई सब प्रोविजन होल वाला लुआ मैं सुबह एक पर काम कर रही सर कि कौन अभी देखबा कि जब मिल गए हुई तो कौन सेक्शन लालवा आगे कौन सेक्शन के तनिक लेते ले हमने जब समय सकब सर के अप्लीके करे
1: जरूर सब इंस्पेक्टर साहब आज आप अपन कीमती समय निकाल के अला ये सब जानकारी दिला बहुत बहुत धन्यवाद आखिरी मिनट तक आप बात कर ला बहुत बहुत शुक्रिया आशा करते हैं जाके आपके ये सब जानकारी से लाभ होल और अगला आज की चर्चा तक आज्ञा दा धन्यवाद नमस्ते।

0: के 10 बजे हैं। सुनते हैं संक्षिप्त समाचार पूजा के साथ। आपको नमस्कार पूजा।
1: नमस्कार हंसिनी, सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। सरकार नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन कार्यक्रम को फिर से शुरू कर रही है। इसके पायलट चरण में अगले 16 से 28 नवंबर तक ग्रेड 8 के 12 से 13 वर्ष के आयु वाले 200 छात्र शामिल होंगे। 2027 में इसे पूरे टापू में लागू करने का विचार किया जाएगा। मॉरिशस और सऊदी अरब स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने सहयोग को और मजबूत कर रहे हैं। मंत्रिपरिषद ने दोनों देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। मंत्रिपरिषद ने उच्च शिक्षा विज्ञान और अनुसंधान मंत्रालय को संयुक्त राष्ट्र के क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क के लिए राष्ट्रीय समन्वय केंद्र बनाए जाने को मंजूरी दी है। बोआ दे जामोरेट और पर्देसनी में सफाई अभियान के दौरान ईंधन तेल के अवशेष

0: शेष बरामद इन मलबों को लाशोमिया के खतरनाक वेस्ट ट्रीटमेंट सेंटर ले जाया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मॉरिशस द्वारा कल और आज पोर्टोसाबल स्थित अपने कैंपस में एक ओपन डे का आयोजन। 3 साल बाद बॉलीवुड के मशहूर सिंगर शान का शानदार कंसर्ट आज SVICCPI में। जी हाँ, इसमें शान अपनी लोकप्रिय आवाज से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे, जबकि उनके बेटे माही भी पहली बार मंच पर अपनी प्रस्तुति देंगे और मशहूर गायक के को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। विदेश में बोलीविया में एक सैन्य बैराक में हुए विस्फोट में कम से कम 2 लोगों की मौत। अधिकारियों को आशंका है कि मृतकों की संख्या इससे अधिक हो सकती है। पुलिस के अनुसार विस्फोट में दर्जनों घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें ज्यादातर घरों की खिड़कियां टूट गई। आपातकालीन कर्मी मलबे में लोगों की तलाश कर रही है। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: बिकाऊ लेन फिनिक्स में 69 साल की 69 years old बीबी तहरून आमिया, जिन्हें लोग तहरून नाम से ज़्यादा जानते थे, इंतकाल कर गई है। इनका जनाजा आज दिन के दो बजे इनके मकान बिकाऊ लेन फिनिक्स से उठाकर नमाज जनाजा के लिए फिनिक्स की मस्जिद ले जाया जाएगा। फिर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान फ्यूनरल टूडे एट 2 PM। Qu'on a docteur Pierrot la rue Filao quand les vieux mais 63 साल के 63 years old श्री गुरुनाथन नारायणन जिन्हें लोग रिवेन नाम से भी जानते थे की मृत्यु हो गई है। वे पहले एयर मार्शल्स में काम करते थे। इनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे ला शापेल ऑडोंट एली एनसन रॉय रोड बुबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैम ऑटे मोरोश की सिमिट्री ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 1 PM। नंबर 117 प्लेट डेजियमिताज फिनिक्स में 75 साल की 75 years old श्रीमती तारामती गोपाल, पैदाशी नाम जयप्रकाश और जिन्हें लोग श्यामा नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 12:30 इनके बेटे विनेश्वर शर्मा गोपाल के मकान नंबर 117 पेंडिस अमिताज फिनिक्स से उठाकर बिगाहा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 12:30 PM। नंबर 18 बुटेया सीते से आशा तेरूज में 56 साल के 56 years old श्री देव कुमार गजाधर, जिन्हें लोग देव नाम से अधिक जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज शाम 4 बजे इनके बेटे अश्ले गजाधर के मकान नंबर 18 बीतेया सीते से आशा तेहूज से उठाकर बुआमाशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 4 PM। डिस्पेंसरी रोथ्रियोले में 70 साल के 70 years old श्री विजय कुमार आलिया, जिन्हें लोग विजय नाम से अधिक जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दोपहर के 3 बजे इनके मकान डिस्पेंसरी रोड त्रियोले से उठाकर त्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8:30 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
2: रेडियो मॉरिशस
1: 800 kHz पर ये है
2: रेडियो मॉरिशस।

में इजाफा हो गया। ये इंसान का तरीका यही है कि जब किसी से वो जलता है और उसके मकाम मर्तबे में इजाफा हो जाए, नेमतों में इजाफा हो जाए, तो उसकी जलन में और इजाफा हो जाता है। काला बोला, लअक्तुलन्नक, कसम है मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। जब हजरत आदम अलैहि सलाम हज के लिए मक्के मुकर्रमा तशरीफ ले गए तो काबिल ने हबील से कहा कि मैं तुझको कत्ल करूंगा। हबील ने कहा क्यों? कहने लगा इसलिए कि तेरी कुर्बानी कबूल हुई, मेरी ना हुई, और तू इकलीमा का मुस्तहक ठहरा, इसमें मेरी जिल्लत है। قال انما يتقبل الله من المتقين, हबील ने कहा अल्लाह उसी से कबूल करता है जिसे डर है, यानी अल्लाह ताला तो मुत्तकियों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। हबील के इस कॉल का मतलब यह है कुर्बानी का कबूल करना अल्लाह का काम है, वो मुत्तकियों की कुर्बानी कबूल फरमाता है, तू मुत्तकी होता तो तेरी कुर्बानी कबूल होती, ये खुद तेरे अफाल का नतीजा है, ये तेरे करतूतों का नतीजा है, इसमें मेरा क्या दखल है। लइन बसत इलैया यदका लितक्तुलनी मा अना बिबासितिन यदी इलैक लिअक्तुलक, बेशक अगर तू अपना हाथ मुझ पर बढ़ाएगा कि मुझे कत्ल करे तो मैं अपना हाथ तुझ पर न बढ़ाऊंगा कि तुझे कत्ल करूं, यानी मेरी तरफ से इब्तदा नहीं होगी, बावजूद इसके कि मैं तुझसे ज्यादा कवि हूं, तवाना हूं, ताकतवर हूं। यानी उसने जब कत्ल की धमकी दी और हजरत हाबील समझ गए कि काबिल अब मुझे पीछे से वार करके, या मैं सो रहा हूंगा मुझ पर वार करके मुझे कत्ल कर देगा, तो आप ये कर सकते थे कि इससे पहले खुद ही हमला करके काबिल को कत्ल कर दें, तो आपने फरमाया मैं इस तरह नहीं करूंगा, मैं अपना हाथ तेरी तरफ कत्ल के लिए नहीं बढ़ाऊंगा। इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, मैं अल्लाह से डरता हूं जो सारे जहां का मालिक है। ये वजह है जिसकी वजह से मैं तुझे कत्ल नहीं करूंगा। हाँ, अगर तूने मुझ पर हमला किया तो मैं अपना दिफा करूंगा। इन्नी उरीदु अन तबू अब इस्मी व इस्मी का फतकून मिन अस्हाबिन नार, मैं तो ये चाहता हूं कि मेरा और तेरा गुना दोनों तेरे ही पल्ले में पड़े तो तू जहन्नमी हो जाए। वजालिक जजाउ जालिमीन, और यही जालिमों की सजा है। मेरा गुना यानी मुझको कत्ल करने का गुना, और तेरा गुना यानी जो तूने वालिद की नाफरमानी की, हसद किया और अल्लाह के फैसले को ना माना, ये दोनों तेरे ही नामे आमाल में लिखे जाएं, ये तेरे ही जिम्मे हो। मैं तुझे कत्ल करके अपने नामे आमाल को सिया नहीं करना चाहता। अब चूंकि हजरत हाबील बहुत ही ताकतवर थे और बहुत लंबे चौड़े थे, काबील की ये मजाल न थी कि सामने सामने आप पर हमला कर सके, तो फिर ये सोचता रहा कि मैं आपको कैसे कत्ल करूं। शैतान इसके ख्वाब में आया, एक रिवायत ये है, और शैतान ने इसको तरीका सिखाया कि जब ये सो रहा हो तो बड़े पत्थर से इसके सर को कुचल दो। क्योंकि पहला कत्ल था तो कत्ल करने का तरीका भी काबिल को नहीं आता था, ऐसा ही इसने किया कि जब हजरत आदम अलैहि सलाम हज पे तशरीफ ले गए थे और हजरत हाबील किसी जगह पर आराम कर रहे थे, सो रहे थे, तो ये आया और इसने बहुत बड़ा पत्थर आपके सर पर रखकर आपका सर मुबारक कुचल दिया, इस तरह आप शहीद हो गए। अब उसे ये फिक्र हुई

कि मैंने कत्ल तो कर दिया लेकिन अब मैं इनकी लाश का क्या करूं। कुरान मजीद फुकान हमीद ने इरशाद फरमाया, फतवअत लहू नफ्सुहु कत्ल अखीही, तो उसके नफ्स ने उसे भाई के कत्ल पर उभारा। तो नफ्स की बातों में आकर उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। फकतलहु, तो उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। फअसबह मिनल खासिरीन, तो नुकसान उठाने वालों में से हो गया। अब वो ये लाश लेकर घूमता रहा मुद्दतों, अपनी पुश्त पर ये लाश लादे लादे घूमता रहा, क्योंकि उस वक्त तक किसी इंसान का इंतकाल नहीं हुआ था, तो उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसकी लाश को कहां छुपाऊं। फबअअल्लाहु गुराबन, तो अल्लाह ने एक कौवा भेजा। यबहसु फिल अर्दी लियुरियहु कैफ युवारी सौअत अखी, वो कौवा जमीन कुरेदने लगा ताकि ये कौवा उसे दिखाए किस तरह अपने भाई की लाश को वो छुपाए। दो कौवे आपस में लड़े, उनमें से एक ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कौवे ने अपनी चोंच और अपने पंजों से जमीन कुरेद कर गड़ा किया और उस गड़े में मरे हुए कौवे को डालकर मट्टी से दबा दिया। ये देखकर काबिल को मालूम हुआ कि मुर्दे की लाश को दफन करना चाहिए, चुनाचे इसने जमीन खोद कर हजरत हाबील को दफन कर दिया। कौला, वो बोला, या वैलता, हाय मेरी खराबी, आजज़्तु अन अकून मिस्ल हादल गुराब, मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका। फ़ुवारी सौअत अखी, कि मैं अपने भाई की लाश छुपाता। उसे अफसोस हुआ, इतना आसान काम था, गड़ा खोद के जमीन में डालना था और मेरी अकल में बात ना आई और मैं काफी अरसे तक लाश को घुमाता रहा। बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि वो एक साल तक हजरत हाबील की लाश को घुमाता रहा, कभी किसी दरख्त के नीचे छुपाता, कभी कहाँ छुपाता, और ये सोचता कि किसी तरीके से हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस लाश को न देख लें। तो उसे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं एक साल तक ये घुमाता रहा, हालांकि काम तो बड़ा आसान था, तो मैं कवे जैसा भी ना हो सका कि गड़ा खोद कर इसमें डाल दूं। फअसबह मिन नादिमीन, तो पछताता रह गया, शर्मिंदा होने वालों में से हो गया। इसे ये शर्मिंदगी गुनाह पर न थी बल्कि अपनी नादानी और अपनी परेशानी पर शर्मिंदा हुआ। मिन अजलि ज़ालिक, इस सबब से, कतबना अला बनी इसराइल, हमने बनी इसराइल पर लिख दिया, अन्नहु मन कतल नफ्सम बगैर नफ्सिन, कि जिसने कोई जान कतल की बगैर जान के बदले, औ फसादिन फिल अर्द, या जमीन में फसाद किए बगैर, यानी मुराद ये है कि जिसने किसी का नाहक कत्ल कर दिया। अगर कोई कातिल है और उसने जानबूझ के कत्ल किया है तो कत्ल के बदले कत्ल है, या अगर शिर्क करने वाला, कुफर करने वाला मुर्तद है, या वो गुस्ताख रसूल है, या वो डाकू है जिसने लोगों को कत्ल किया है, माल लूटा है, यानी कोई भी एक ऐसा सबब हो जिसकी वजह से उसका कत्ल जायज हो, तो कत्ल में हर्ज नहीं। वरना अगर कोई शख्स किसी को नाहक कत्ल कर दे, फकअन्नमा क़तला नास जमीआ, तो गोया उसने सब लोगों का कत्ल किया, क्योंकि इसने अल्लाह के हक की रियायत नहीं की और शरीयत के हुदूद का पास न किया। एक नाजायज कत्ल तमाम इंसानों का कत्ल है, इतना बड़ा गुनाह है। वमन अहया फकअन्नमा अहया नास जमीआ, और जिसने एक जान को जिंदा किया, जिंदा किया से मुराद है कत्ल होने से बचाया, डूबने से बचाया, जलने से बचाया, या और जो हलाकत के असबाब हों उन

0: बचाया। फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, तो उसने गोया सब लोगों को जिंदा कर दिया। एक इंसान की जान बचाना सारे इंसानों की जान बचाने के बराबर है, इतनी फजीलत है। वलकद जाअतहुम रुसुलुना बिलबय्यिनात, बेशक उनके पास हमारे रसूल रोशन दलीलों के साथ आए, यानी बनी इसराइल के पास रसूल मौजजात लेकर आए। सुम्म इन्न कसीरम मिनहुम बाद ज़ालिक फिल अर्द लमुसरिफून, फिर बेशक इनमें बहुत से लोग इसके बाद जमीन में ज्यादती करने वाले हैं, कुफर करने वाले, कत्ल व गारतगरी करने वाले हैं। यानी बनी इसराइल के पास रसूल निशानियां लेकर आए, लेकिन इसके बावजूद बनी इसराइल ने कुफर व शिर्क किया और कत्ल व गारतगरी की।
1: सामीन, अभी आप हजरत अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर आसिफ कादरी दामद बरकतुल्लाह की ज़बानी सूरह अल मैदा के पांचवें रुकू की तफसीर आप समाप्त कर रहे थे। इंशाल्लाह छठा रुकू अगले हफ्ते हम आपको पेश करेंगे। इस वक्त हम रेडियो मॉरिशस से आपसे मुखातिब हैं, पेश खिदमत है ये हमदे बारी ताला।

सामीन, कसीदा बुर्दा शरीफ ये वो मारूफ कसीदा है जिसे पढ़ने के बाद ईमान को ताजगी मिलती है, बीमारों को शिफा, कमजोरों को ताकत और भटके हुओं को राख मिलती है। कसीदा बुर्दा शरीफ तवील कसीदा है, इसका एक हिस्सा हम आपको पेश कर रहे हैं उर्दू तर्जुमे के साथ, समाप्त कीजिए।

आपने दस्ते मुबारक लगाकर कितने बीमारों को अच्छा कर दिया और कितने दीवानों को दीवानगी की कैद से आजाद कर दिया।

आपकी दुआ ने खुश्क साली को नई जिंदगी बख्शी, यहाँ तक कि वो साल सब्ज शादाब जमानों की पेशानी में नुमाया हो गया।

वो बादल इस तरह झूम कर बरसा कि मालूम होता था कि संगलाग वादियों पर समंदर का कोई रेला चला आया या अरिम का सैलाब आ गया है।

मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के मौजज़ात बयान करने दे और ऐसे रोशन हैं जैसा कि रात में पहाड़ पर मेहमानी की आग रोशन होती है।

लड़ी में पिरोए हुए मोती का हुस्न खूब होता है, हालांकि मोती की कद्र कीमत बिना पिरोए भी कम नहीं होती।

ये रहमान की सच्ची आयात नुज़ूल और तलफ़्फ़ुज़ के लिहाज से हादिथ हैं। वाजिब तआला कदीम की सिफत होने के लिहाज से कदीम हैं।

ये आयात हमेशा के लिए हमारे पास मौजूद हैं। वो दीगर अंबिया के मौजजात पर फाइक हैं, क्योंकि वो मौजजात जाहिर तो हुए मगर बाकी न रहे।

ये आयात ठोस और मुहकम है, किसी मुखालिफ के लिए शक के गुंजाइश नहीं, और ना बजाते खुद किसी दूसरे हकम यानी जज की मोहताज है।

जब भी किसी दुश्मन ने इन आयात से मुकाबला करना चाहा, नाकाम होकर हथियार डाल दिए और सरे तस्लीम खम कर लिया यानी सुलह कर ली।

इन आयतों के माने कसरत में समंदर की मौज की तरह हैं और हुस्न जमाल व कद्र कीमत में समंदर के मोतियों से भी बढ़कर हैं।

0: इनके अजायबात लातादाद व बेशुमार हैं। इनकी कसरत से तिलावत करने के बावजूद उकताहट नहीं होती।
1: قرت

पढ़ने वाले की आंखें उससे ठंडी होती हैं, तो मैं उसको कहता हूं कि तू अल्लाह की रस्सी पकड़ने में कामयाब हो गया, अब मजबूती से थामे रहे।

अगर तू इन आयात को आतिशे दोजख के खौफ से तिलावत करे तो उसके ठंडे चश्मे आतिशे दोजख को खुद ही बुझा देंगे।

पुरानी आयात अदल करने में पुल सिरात और मीज़ान की तरह हैं, उनके बगैर लोगों में अदल कायम नहीं हो सकता।

0: रहीमी।
1: इस हासिद पर ताज्जुब न कर जो समझदार और तजर्बेकार होते हुए अनजान बनकर आयतों का इनकार करता है।

0: अक़वामी।
1: बसा औक़ात आँख बीमारी की वजह से सूरज की रोशनी को नापसंद करती है, और कभी बीमारी की वजह से मुंह को पानी अच्छा नहीं लगता।

ऐ सबसे बेहतर सखी दाता, जिसकी बारगाह में मंगते पैदल चलकर और ऊंटनियों पर सवार होकर हाजिर होते हैं।

ऐ वो जाते पाक जो इबरत हासिल करने वालों के लिए अजीम निशानी है, और ऐ वो जाते पाक जो गनीमत जानने वालों के लिए अजीम नियामत है।

आपने रात के कुछ हिस्से में एक हरम से दूसरे हरम तक सफर किया, जैसा कि 14वीं रात का चांद अंधेरी रात में चलता है।

आप रात ही में ऊपर की तरफ परवाज करते गए, यहां तक कि काब कौसैन का बुलंद मकाम पा लिया, जहां आज तक न कोई पहुंचा है और न पहुंचेगा।

और उस रात तमाम नबियों और रसूलों ने आपको अपना इमाम बनाया, जिस तरह गुलाम अपने आका को पेशवा बनाते हैं।

आपने सातों आसमानों का सफर पैगंबरों के दरमियान से गुजरते हुए किया, फरिश्तों के जुलूस के सरदार और अलमबरदार भी आप ही थे।

यहां तक कि आपने कुर्ब की खातिर आगे बढ़ने वाले के लिए कोई हद न छोड़ी और न ही ऊपर चढ़ने वाले के लिए कोई बुलंदी छोड़ी।

आपने अपने मकाम की निस्बत से हर मकाम को पस्त कर दिया, जबकि आपको इम्तियाजी शान के साथ तन्हा ऊपर बुलाया गया।

ताकि आप इस नियामते वसल से बहरावर हो जो लोगों की निगाह से पोशीदा है और उस राज से आगाह हो जिसे कोई नहीं जानता।

आपने हर फजल व कमाल को बिना किसी गैर की शिरकत के हासिल कर लिया और किसी मुजाहमत के बगैर हर बुलंद मकाम से आगे गुजर गए।

जो बुलंद रुतबे आपको दिए गए वो बड़े जलीलुल कद्र हैं, और जिन नियामतों से आप नवाजे गए उनका हुसूल बहुत मुश्किल है।

हम मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अल्लाह की खास इनायत से हमको शरीयत का ऐसा सुतून मिल गया जो कभी गिरने वाला नहीं है।

जब अल्लाह ताला ने अपनी ताअत की तरफ बुलाने वाले रसूल को अशरफुल रसूल कहकर पुकारा तो हम अशरफुल उमम यानी अफजल उम्मत हुए।

आप हर मैदान जंग में दुश्मनों से लड़ते रहे, यहां तक कि दुश्मन नेजे लगने से उस गोश्त की तरह हो गए जो कसाब के तख्त पर पड़ा होता है।

दुश्मन मैदाने जंग से भागना पसंद करते हैं और उन टुकड़ों पर रश्क करते हैं जिनकी बोटियां अकाब और गिद्ध ले उड़े।

रातें गुजरती रहती मगर दुश्मनों को उनकी गिनती का भी पता न चलता, जब तक कि हुर्मत वाले महीनों की रातें न आ जातीं।

दीन इस्लाम गोया एक मेहमान है जो दुश्मनों के घर में ऐसे सरदारों के साथ उतरा जिनमें से हर एक सरदार दुश्मनों के गोश्त का ख्वाहिशमंद था।

दीन इस्लाम ऐसा लश्कर लाया जिसके सिपाही तेज रफ्तार घोड़ों पर मैदान जंग में आए। वो दुश्मनों से इस तरह टकराए जैसे दरिया के मौजें आपस में टकराती हैं।

इस लश्कर का हर एक हुक्म इलाही का ताबे और उसी से सवाब का उम्मीदवार है। वह ऐसी तलवार से हमला करता है जो कुफ्र को जड़ से काट देने वाली है।

यहां तक कि मिल्लत इस्लामिया उन बहादुरों की वजह से बेगाना और अजनबी होने के बाद रिश्ता और करबत वाली हो गई।

सामीन, अभी आप कसीदा बुर्दा शरीफ मुफ्ती आसिफ रज़ा बरकाती दामद बरकातुम आलिया की आवाज़ में अभी आप समात कर रहे थे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसका चौथा और आखिरी हिस्सा हम आपको गोश गुजार कराएंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सिर्फ ज़बान से इजहार का नाम नहीं, यह आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी ज़िंदगी का रास्ता बनाने का नाम है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अखलाक, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रहमत, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफकत और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का किरदार हमारे लिए कामिल नमूना है। आइए इस जिक्र खैर को नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खुशबू से मुअत्तर करते हैं। कबूल फरमाइए मोहब्बत व अकीदत से पेश किया जाने वाला ये नातिया नजराना।

ఇదో నా బంగారు పాప.

0: आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से नुवेल फ्रांस पोंकलविल के निवासियों को सूचित किया जाता है, खासतौर इन गलियों के रूट रॉयल सुया कॉम्फो NHDC नुवेल फ्रांस मोंसलमान अबा सिंह शुमे कोपरेटिव अलेजा के किस्से शुमे कमलन शुमे लाफोज शुमे डेबिडोयल पोंकलविल के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 6 सितंबर 2026 को सुबह के 8:30 से लेकर शाम के 5 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो इन सुविधाओं के लिए CB अपने ग्राहकों से क्षमा प्रार्थी हैं, बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर शुरू हो जाएगी। तो अभी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति। ये रेडियो मॉरिशस है।
1: स्वर तरंग
2: स्वर तरंग

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: हेलो,
3: ए हेलो, मौज करवा गुजराती गीतों ना प्रोग्राम गीत बहार नी साथे। गीतों नी बहार, गीत बहार, गीत बहार।

0: 800 and 19 kilowatts. This is Radio Marches.
1: नमस्कार, हमारा आपका साथ है रेडियो मॉरिशस पर। जहाँ भी होंगे आप साथ साथ रहिएगा। यह है रेडियो मॉरिशस, आप लोगों की सेवा करता है ये रेडियो और आप लोगों को एंटरटेन करता रहता है ये रेडियो। हम साथ हैं आपके और आपको एंटरटेन करेंगे हम आपकी पसंद कार्यक्रम के साथ। और इतना तो बता दें आपको कि हमारे मन में जो दुआएं हैं वो आपकी तरफ ज़रूर जाते हैं। आपके लिए हम दुआएं ही करते हैं कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजर रहा होगा, आपकी सेहत अच्छी होगी और मन आपका खुश खुश होगा। तो चलिए, आपकी पसंद कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। आपकी पसंद कार्यक्रम में जो भाग लेना चाहते हैं आप तो ज़रूर लीजिएगा। कॉल करना चाहते हैं तो 402-808-085 पर कॉल कीजिएगा। और जो आप मैसेज भेजना चाहते हैं तो 525-17005 पर मैसेज भेजिएगा। तो आपके लिए हम आपकी पसंद के गाने ज़रूर पेश करेंगे। आप हमें फ़ोन करके हमें बता दीजिएगा, कॉन्टैक्ट करके बता दीजिएगा कौन सा वाला गाना आप सुनना चाह रहे हैं। चलिए, पहला वाला गाना हम आपको सुनवाते हैं, ये होगा जुवारी मूवी से लिया गया, बहुत ही मशहूर सा गाना है। हमको पता है, हमारा ये दावा है कि आपके होंठों पे इसके बोल ज़रूर आ जाएंगे।

तो बस हमारी आपकी पसंद, हमारा आपकी पसंद शो आप लोगों के नाम करते हुए हम पेश करते हैं पहली पसंद का गाना। चलिए ज़रा हम भैया सुरेश जी को हैप्पी बर्थडे कहते हैं। 3 सितंबर को भैया सुरेश जी ने अपना जन्मदिन मनाया और बहनें हैं सुनीता और विमला। बहनें सुनीता और विमला ने उन्हें बहुत सारी मंगल कामनाएँ दी हैं, बहुत सारी दुआएँ दी हैं। उनकी सेहत अच्छी रहे, उनके जीवन में हर पल हर घड़ी खुशियाँ आती रहे, ऐसी दुआएँ की हैं गाँव गुप की सुनीता जी ने और कुंगुमा की विमला जी ने आपके लिए। सुरेश जी, हैप्पी बर्थडे टू यू।

अनुराधा पोडवाल और हरिहरन की आवाज़ों का ये गाना है, और ये वो गाना है जिसे हमने लिया है पगला कहीं का मूवी से, और इस गाने की फरमाइश करने वाली है राधिका जी। राधिका जी ने वाकवा से ये गाना मांगा है अपने पति सुरेश के लिए और अपने बेटे अनुभव के लिए।

लम्हे मूवी का ये गाना आपकी पसंद कार्यक्रम में आपके लिए पेश कर रहे हैं हम हरिहरन की आवाज़ में। और ये गाना हम पेश कर रहे हैं आशा जी के लिए। आशा जी जो नोएडा कुवैत रहती हैं, उन्होंने ये गाना अपने पति राजीव जी के लिए मांगा है।

तो चलिए पेश करते हैं हम गायत्री जी की पसंद का गाना। गायत्री जी ने नोवेल फ्रांस से मांगा है, गाना फिल्म अनपढ़ से लिया गया। उन्होंने ये गाना नोवेल फ्रांस के अपने बेटे अजय के लिए मांगा है, मेबक की मामी कल्याणी मोहन जी के लिए, मोताएं लोम की भाभी शकुंतला के लिए और नोवेल फ्रांस की सखी गीता बाई जी के लिए।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: हमारे साथ अनमोल लम्हे बिताइएगा। इन लम्हों में आपके लिए हम आपकी फरमाइश के गाने पेश करेंगे आपकी पसंद प्रोग्राम में, और साथ ही साथ इस प्रोग्राम में, वैसे ये प्रोग्राम तो 4 बजे तक चल रहा है, इसी प्रोग्राम में लगभग 3 बजे के बाद, हाँ जी, संक्षिप्त समाचारों के बाद, 3 बजे के संक्षिप्त समाचारों के बाद आपके लिए हम एक रकों को पेश करेंगे, एक खेल प्रतियोगिता पेश करेंगे, एक क्वीज़ होगा। उस क्वीज़ में अगर आप जीतते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपको एक गिफ्ट मिलने वाला है, एक पुरस्कार मिलने वाला है। सो साथ देते रहिएगा 3 बजे के बाद, हमारे इस गेम में शामिल रहिएगा, आपके साथ खेलने में बड़ा मजा आएगा। फिलहाल तो हम वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे कहेंगे प्यारी सी गुड़िया सी अलीजा को। अलीजा अपना सेकंड बर्थडे मना रही है। नोवेल फ्रांस में रहने वाली अलीजा को बहुत सारा प्यार मामा शाहिना की तरफ से, पापा हर्षाद की तरफ से, नानी सलमा की तरफ से, नाना राउफ की तरफ से, दादा दादी फूफू सब की तरफ से, हंसाए परिवार की तरफ से, बागेलू परिवार की तरफ से, और नानी गायत्री और मामू अजय की तरफ से। तो प्यारी सी गुड़िया सी अलीजा को हम आसरा मूवी का ये गाना सुनवाते हैं, जिसमें बहुत सारा लाड भरा हुआ है, बहुत सारा प्यार दुलार भरा हुआ है।

हर किसी को मिले प्यार, हर किसी को मिले इस तरह से दुलार और हर किसी को मिले परिवार का सुख। ये हमारी दुआ हर किसी के लिए है, हमारे सभी श्रोताओं के लिए है। फिलहाल तो हम आपको याद दिला दें कि 3 बजे के बाद हम एक गेम रखेंगे, एक क्वीज रखेंगे आपके लिए। इस क्वीज में अगर आप भाग लेंगे तो इंटरेस्टिंग सा आपको एक इनाम मिलेगा अगर आप जीत पाएँ तो। और फिलहाल तो हम पेश करेंगे आप लोगों के लिए रात और दिन मूवी का गाना। ये गाना लता मंगेशकर और मन्ना

तो अब चलिए जरा हम बढ़ जाते हैं अगले गाने की ओर, जो है परवाना मूवी से लिया गया। परवाना मूवी का ये गीत हम पेश कर रहे हैं आप लोगों के लिए विश्वानी जी की पसंद पर। वाकवा की विश्वानी दुमन जी ने ये गाना अपनी बहन इंदिरा शारदा के लिए और सहेली नीला और प्रतिभा के लिए, शोभा जी के लिए और गीता गजाधर जी के लिए मांगा है।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। तैयार किया जा रहा यूथ पेपर यानी आगामी COP31 के मद्देनजर युवाओं की स्थिति और उनके विचारों को सामने रखने वाला दस्तावेज है। COP31 का आयोजन 9 से 20 नवंबर के बीच तुर्की में किया जा रहा है। इन विषयों पर राजीव गांधी साइंस सेंटर में दो दिनों तक चर्चा की जा रही है। ये पहल पर्यावरण मंत्रालय और यूथ लीडरशिप काउंसिल की है, जिसमें राष्ट्रसंघ और ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त का समर्थन प्राप्त है। तैयार किए जा रहे इस दस्तावेज में बायोमिमिक्री यानी प्रकृति से प्रेरणा लेकर इंजीनियरिंग और तकनीकी समाधान विकसित करना, किसानों के लिए कृषि कैलेंडर तैयार करना, साथ ही कम उम्र से ही प्रकृति संरक्षण से जुड़े कानूनों की शिक्षा देना जैसे मुद्दे आदि को शामिल किया गया है। ग्रेड 8 के करीब 200 छात्र इस नवंबर नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन नाइस के नए संस्करण में भाग लेंगे। दो हफ्तों तक वे ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे जिसमें नागरिक कर्तव्य, चरित्र निर्माण, सामाजिक जिम्मेदारी के पालन और आपात स्थितियों की तैयारी पर भी सीख पाएंगे। नए साल के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान किया था। एक ऐसी पहल जो 14 साल बाद फिर से शुरू हो रही है। पिछली बार 2012 में इसका आयोजन किया गया था। विदेश समाचारों में बोलीविया के एक सैन्य अड्डे में हुए धमाके में कम से कम 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। कई लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। करीब 81 लोग घायल हुए हैं और वहां रखे पायरोटेक्निक सामानों के कारण अन्य धमाकों का भी खतरा बना हुआ है। लोगों से वहां से दूरी बनाए रखने की मांग की गई है। और भारत के महाराष्ट्र राज्य में टैक्सी और टुकटुक के चालकों को अब बस से अनिवार्य रूप से वहां की स्थानीय बोली मराठी बोलनी होगी। मराठी सीखने के लिए उनके पास 1 साल की मोहलत है। इसके लिए एक नया नियम लागू किया गया है जिसे लेकर काफी विवाद भी उत्पन्न हो रहे हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। यह आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: NBC Radio, 24 hours a day.
4: इस समय दिन के 3:03 हुए हैं। अभी आप याचना से सुन रहे थे आज के संक्षिप्त समाचार और हम पढ़ते हैं आपके लिए कुछ विज्ञप्तियाँ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पोर्टविस के निवासियों को सूचित करता है कि सचिव सागर राम गुलाम गली के एक भाग में और आसपास के इलाकों में कल रविवार 6 सितंबर को सुबह 8:30 से दिन के 3 तक मरम्मत कार्य होंगे और इस वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। घावे के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि कोस्टल रोड, होटल ल्यूक्स कैजिनो ए होटल वेरांदा घावे और आसपास के इलाकों में कल रविवार 6 सितंबर को सुबह 9 से दिन के 3 तक मरम्मत कार्यों की वजह से ही बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना पहले से सूचना दिए ही ये काटी हुई बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे मांग करती है कि वे अपना इंतजाम अवश्य कर लें। ये थी विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। तो रेडियो मॉरिशस पर हम पेश कर रहे थे आपके लिए आपकी पसंद कार्यक्रम और आपकी पसंद कार्यक्रम में आपका हम फिर से स्वागत करते हैं। अगर ऐसा हुआ हो कि अभी आपने रेडियो ऑन किया हो तो हम आपको याद दिला दें कि हमारा प्रोग्राम आपकी पसंद 2:15 से शुरू होता है सैटरडे को और शाम के 4 तक चलता है। और आज इस बीच हम एक क्वीज रखेंगे, गेम रखेंगे आपके लिए और इसमें एक इंटरेस्टिंग सा आपके लिए इनाम होगा अगर आप जीतते हैं तो

फिर साथ देते रहिएगा। अभी थोड़ी देर में गाने के बाद हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, हम आपसे सवाल करेंगे। फिलहाल तो हीरो मूवी का ये गाना हम आपके नाम करते हैं और हीरो मूवी का ये गीत हम दिलीप जी की पसंद पर पेश कर रहे हैं। कुंगुमा के दिलीप जी ने इस गाने की फरमाइश की है संगीता योगेश, कविता के लिए किसनवी मनीषा, निशान, लक्ष्य, आरव, कविता, इंदिरा, दानन और हमारे सभी सुनने वालों के लिए।

तो वादे के मुताबिक हम लेकर आए हैं आपके लिए एक क्वीज़, और क्वीज़ के लिए आप कैसे हम जो प्रश्न करेंगे उसके लिए आप हमारी बातों पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, शायद इसी में आपका जवाब मिल जाए। इनफैक्ट हम ये क्वीज़ रख रहे हैं इसलिए ताकि हम जीतने वाले को दे सके। बागातेल में हो रहे औशी जवाता सर्कस के 2 एंट्री टिकट्स, तो हो जाइए तैयार अपनी पूरी फैमिली के साथ यादगार एक्सपीरियंसेस के लिए, जो मैजिक थ्रिल ठहाकों से भरे शानदार सर्कस परफॉर्मेंसेस में मिलेंगे आपको। सियक जवाता जो बागातेल में लग रहा है हर थर्सडे एंड फ्राइडे को शाम 6 बजे से, हर संडे को दिन के 2:30 से यानी 2:30 से शाम के 5:30 PM तक की यानी कि शाम के 5:30 बजे तक। जानकारियों और बुकिंग्स के लिए कॉल कीजिएगा 5250-9413 पर, और याद रखिएगा सियक जवाता, डोंट मिस द मैजिकल बिग शो। तो चलिए इस इनाम के लिए यानी कि ये 2 एंट्री टिकट्स के लिए आप हमें ये बताइएगा कि अभी सियक जवाता जिसके लिए जिसका हमने जिक्र किया, इसका पहला वीकेंड परफॉर्मेंस किस वक्त शुरू होगा, 1:30 PM, 2:30 PM या 3:30 PM? हाँ जी बताइएगा हमको कि सियक जवाता का पहला वीकेंड परफॉर्मेंस किस वक्त शुरू होने वाला है, 2:30 PM, 1:30 PM या 3:30 PM? तो आप हमें फ़ोन करके बताइएगा 4028085 पर, आपसे हम जवाब लेंगे और अगर आप सही जवाब दे पाते हैं तो आपको ये इनाम मिलने वाला है। फिलहाल तो चलिए ज़रा हम मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का ये गाना बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत सुनते हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म मूवी का ये गाना मेबा के विद्यानंद जी ने मांगा है सोहंती जी के लिए, अमित शीतल आशु कृषिका हरवेश विशाल स्वीटी राजीव और शिवाला लेन के उनके दोस्त विष्णु गजाधर जी के लिए और बहन बिंदु कालीचरण जी के लिए। गाना सुनिएगा पर जवाब देना न भूलिएगा 4028085।

ये गाना आप सुन रहे हैं जय श्री गुलाम जी की पसंद पर, कृष्ण जी का नाम लिया जन्माष्टमी के अवसर पर और बहुत बहुत सारी शांति प्राप्त हुई हमारे हृदय को। तो जय श्री गुलाम जी ने ये गाना सभी कृष्ण भक्तों के लिए मांगा है।

तो चलिए, आपकी पसंद कार्यक्रम है ये और रेडियो मर्शल पर हमारा आपका साथ चल रहा है। आपके साथ हैं हम आपकी पसंद कार्यक्रम में, और आज एक क्वेश्चन भी रखा है हमने, क्विज भी रखा हमने, और आज हमने प्रश्न ये किया कि सियक जवाता का पहला वीकेंड परफॉर्मेंस किस वक्त पर शुरू होगा, 1h30 PM, 2h30 PM या 3h30 PM। तो झटपट हमें विजय बंधन जी ने फ़ोन किया और हमें सही जवाब दे दिया। सही जवाब है 2h30 PM, और सेबास्टोपोल क्लावेट के विजय बंधन जी ने सही जवाब दिया है। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो आपको विजय बंधन जी। आपको बगातिल में हो रहे और शीजावाता सर्कस के दो एंट्री टिकट्स मिलने वाले हैं, और आप और विजय बंधन जी बता रहे हैं कि अपनी बेटी के साथ मिल कर जाएंगे वो सर्कस देखने। सो बहुत इंजॉय कीजिएगा, जाइए तैयार होकर अपनी पूरी फैमिली के साथ, बल्कि यादगार एक्सपीरियंसेस के लिए जो मैजिक थ्रिल ठहाकों से भरे शानदार सर्कस परफॉर्मेंस में मिलेंगे आपको। सर्कस जवाता जो बगातेल में लग रहा है, हर थर्सडे और फ्राइडे को शाम 6 बजे से होगा, और हर संडे को दिन के 2:30 बजे से यानी कि 2h30 PM से शाम 5:30 बजे तक चलेगा। जानकारियों और बुकिंग्स के लिए कॉल कीजिएगा 5250-9413 पर। सियक जवाता, डोंट मिस द मैजिकल बिग शो। सो हमारे साथ हमारे विनर विजय बंधन जी क्लावेट से वास्तेपुर से सीधे जाएंगे जवाता सियक।

बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो विजय बंधन जी। सो ये था हमारा क्वीज, ऐसे क्वीजेस और भी आते रहेंगे हमारे रेडियो मॉरिशस के शोज में। फिलहाल तो चलिए हम आपकी पसंद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नमकीन मूवी का ये गाना पेश करते हैं और ये गाना सीधा जा रहा है फ्रांस की ओर। फ्रांस से हमें मैसेज भेजा है मानती जी ने। मानती जी ने हमसे मांगा है नमकीन मूवी का ये गाना। उन्होंने ये गाना अपनी मामा सुमंती के लिए, बहन आरती सचिता और बबीता रेखा के लिए तथा भैया सत्यम के लिए, भाभी उषा, दीक्षा, शिक्षा, श्लेष, अनिकेत, अक्षय, ऋषभ, ऋतिक, अनिकेत और पूरे परिवार के लिए सेंट जूलियन विलाज के। तो ये गाना चलिए हम मानती जी के पूरे परिवार के लिए पेश करते हैं और उन तक पहुंचाते हैं। सीधा फ्रांस जा रहा ये गाना, ये गाना है किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: राहों पे रहने वाला ये मुसाफिर गेरूलाल सफर करते करते एक बार दूर दराज के पहाड़ों में जाकर रुक गया। एक छोटा सा गांव था और उस गांव में टूटा फूटा सा एक घर, जहां चार औरतों का एक अधूरा सा परिवार रहता था। अम्मा थी 60 से ऊपर की, कुछ सठियाई हुई सी, कुछ बहकी हुई, अपने आप ही से बातें करती रहती थी। और उसकी 3 बेटियां, निमकी, मिट्ठू और चिंकी। शादी किसी की नहीं हो पाई। लोग कहते हैं मां बाप के छींटे ना पड़े होते तो तीनों ब्याही जाती। देखने में भी तो आखिर अच्छी खासी हैं। बड़ी शादी की उम्र से गुजर चुकी है और छोटी लड़कों की तरह रास्तों में ठुड्डे मारती चलती है। शादी की उम्र को बस पहुंची कि अब पहुंची, और मंझली बेचारी गूंगी है। गेरूलाल ने अक्सर उसे गुनगुनाते सुना है। बहनें कहती हैं कि वो गीत लिखा करती है।
1: तो चलिए अब जरा हम लगान मूवी का गाना सुनते हैं। इस समय 3:32 हुए हैं और हम मोदार्बे की अनीता जी की पसंद का गाना ये पेश करते हैं।

0: 819 kilowatts. This is Radio Mauritius.
1: La MBC se réinvente et vous accompagne désormais partout. Retrouvez toute la richesse des contenus de la MBC sur nos nouvelles plateformes digitales. Avec MBC Now, notre nouvelle page Facebook, restez connectés à l'actualité, découvrez les temps forts de nos émissions et ne manquez aucune nouveauté. Avec l'application mobile MBC Play ainsi que notre nouveau site web mbc.mu, regardez vos chaînes TV en direct, écoutez vos radios préférées en live, suivez le JT, les courses hippiques, consultez la programmation et profitez du replay où que vous soyez, à la maison, au bureau ou en déplacement, la MBC est désormais accessible sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre Smart TV. MBC Now, MBC Play, mbc.mu. Toute la MBC partout avec vous. Plus d'infos sur le 402 8000.
2: तो चलिए ज़रा हम बढ़ते हैं आगे और पेश करते हैं सपनों का सौदागर मूवी का ये गाना, जिसकी फरमाइश की है सुदेवी जी ने वाकवा से. उन्होंने ये गाना मांगा है प्रियोले की दीदी ललिता के लिए, कुशल परिवार के लिए, दीदी सुनीता, शोभा, देविना, बिंदु, माला, संगीता के लिए, मालाइका के कृषय, कृषिका, केशनी और रामरतन परिवार, हृदय कुआहू और रघुबर परिवार के लिए.

और चलिए इस बार हम तकदीर मूवी का ये गाना पेश करते हैं। ये गाना हम थ्योरी के बंधु फैमिली के लिए बजवा रहे हैं और साथ में ज्योति जी के लिए, जो शातो बेनागस की रहने वाली हैं। उन्होंने ये गाना अपने परिवार के लिए मांगा है, आशनी, रेखा, सुरेखा के लिए और मंथम फैमिली के लिए।

इस बार चलिए मशाल मूवी का एक गाना हम लता मंगेशकर की आवाज़ में पेश करेंगे और ये गाना आप किशोर कुमार की आवाज़ में भी सुन लीजिएगा। ये गाना है शांति जी के लिए, कॉटेज की शांति जी की तरफ से उनकी तीन बेटियों के लिए, तीन दामाद के लिए, दो नाती एक नातिन के लिए, और उन्होंने ये गाना अपने पति के नाम भी किया है।

और चलिए ज़रा हम पेश करते हैं आप लोगों के लिए फ़िल्म आदमी का ये गाना, आदमी मूवी का ये गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है और इसकी फरमाइश महेंद्र जी ने पालमा से की है।

0: BBC Radio 24 hours a day.
1: 200 आदमी मूवी के इस गाने के साथ समाप्त हो जाएगा हमारा आपकी पसंद कार्यक्रम, और आपकी पसंद कार्यक्रम ने आप में आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं आपको। ये गाना हम आपको आगे अभी सुनवाएंगे, बस आपके लिए एक विज्ञप्ति हम सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से पढ़ते हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हमारे नुवेल फ्रांस और पोकोलविल के सुनने वालों को सूचित करता है कि सुयाक की ओर जाने वाले रॉयल रोड और कॉम्फो NHDC नुवेल फ्रांस मुसलमान अबाब सिंह श्रमिक ओपेराचीव के एक भाग में, आले जाक के एक भाग में, श्रमिक कुमलुन, श्रमिक लाफोज, श्रमिक देबिदोयाल, पोकोलविल, इन इलाकों में और आसपास के इलाकों में कल रविवार 6 सितंबर को सुबह 8:30 बजे से शाम के 5 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना पहले से सूचना दिए ही ये काटी हुई बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे मांग करती है कि वे अपना इंतज़ाम अवश्य कर लें। तो ये थी एक विज्ञप्ति इस सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से।

बस आपकी पसंद कार्यक्रम जो समाप्त हो जाएगा यहाँ पर, आप सुन पाएंगे आज का साहित्य दर्पण कार्यक्रम, जिसे लेकर आएंगी डॉक्टर अलका धनपत। हमारी आपकी अगली मुलाकात कल सुबह 6 बजे होगी। तब तक के लिए शुभ शाम, नमस्कार।

0: लेखनी से जो अपनी हमें मिलवाए, मूक रहकर अपना परिचय स्वयं दे जाए। साहित्य दर्पण, प्रस्तुति डॉक्टर अलका धनपत की।
1: नमस्कार श्रोताओं, साहित्य दर्पण कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरे साथ तकनीकी सहायक के रूप में यज जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूं। और आप लोग तो मेरे मित्र हैं ही, हमारी चौपाल के सदस्य, और आपके साथ मिलकर मानो हमारा दिन बन जाता है और साहित्य में कुछ और नया जुड़ जाता है। यद्यपि हम छप नहीं पाते, किताब नहीं निकालते, पत्रिका नहीं निकालते, पर साहित्य दर्पण में आप भी कुछ जोड़कर इस दर्पण को और ज़्यादा सुंदर बनाते हैं। श्रोताओं, आप तो जुड़ते ही हैं मेरे साथ, इसीलिए जुड़ते हैं 4028085 पर, मैं जानती हूँ, लेकिन पहले आप थोड़ा सा कुछ सुनना पसंद करते हैं। तो आज हम बात करेंगे, अरे भाई, कहानी की चर्चा करेंगे, लेकिन ऐसी कहानियाँ जो हाजिर जवाब की कहानियाँ हैं। तो आपको याद आ गया अकबर और बीरबल? अरे बीरबल ने तो अकबर के दरबार का मानो चांद था, वह हर बात का जवाब उसके पास था। एक और उधर तेनाली रामा थे, तो यहाँ पर बीरबल थे। तो श्रोताओं, हमारा देश जिसे कहते हैं ना बुद्धि का गढ़ है, गढ़, आर्यों ने इतने अच्छे वैदिक ग्रंथ दिए और हमारे देश में इतने लायक लोग, आज आईटी में तो भारत का परचम फहरा रहा है। और उस समय भी जो लोग बहुत बुद्धिमान हुआ करते थे उनको राजा लोग अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया करते थे, नवरत्नों में उनको रखा करते थे। तो बीरबल भी कुछ ऐसा ही था। तो आज हम कुछ ऐसी ही बातें करेंगे अकबर की और बीरबल की, कि बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति उसके राज्य में था, कैसे हर समस्या का चुटकियों में हल निकाल देता था। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को करोड़ों सलाम, जिसने देश को इतनी सुंदर कहानियाँ दी कि उनको आज जब हमारे बच्चे सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि प्रत्युत्पन्नमति किसे कहते हैं। मतलब प्रत्युत्पन्नमति का मतलब कि उसी समय जिसकी मति जवाब दे सकती है, ऐसा व्यक्ति कहलाता है प्रत्युत्पन्नमति वाला, जिसे हम जीनियस कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड उसका कभी हिलता नहीं है। चाहे कैसा संकट हो, राजा कैसे भी बात पूछ दे, कैसे भी, यहाँ तक कि दरबार के कितने लोग दुश्मन हो जाते थे, लेकिन फिर भी प्रेजेंस ऑफ माइंड बीरबल की कमाल की थी। तो श्रोताओं, आज हम उसी की कुछ कहानियों की चर्चा करेंगे। एक श्रोता तो अभी से ही जुड़ गए, चलो उनको सुन ही लेते हैं। हेलो।
2: हाँ बा।
1: ओहो, नानी जी जुड़ गई हैं।
2: हाँ बेटी।
1: नानी जी को नई कहानी नहीं चाहिए, नानी के पास अपनी कहानियां हैं। बिल्कुल,
2: बड़ी खुशी की बात बा, हमारी नातिन बच गई है।
1: क्या बात है नानी जी, बहुत धन्यवाद, क्या सुनाएंगी आज?
2: हाँ बेटी, सुनावा बेगो भादो रहनी के कहानी, कृष्णा के ललना।
1: अच्छा, तो अभी हाँ, तक आप कृष्ण जन्माष्टमी मना अच्छा। रही हैं, चलिए सुनाइए।
2: सावन भादो के
1: सुनाइए।
2: बरसेला सावन बदरिया, देखा भुला गई नहीं है।
1: कोई बात नहीं नानी, कुछ और सुना दीजिए, कुछ और सुना दीजिए।
2: भुला गई नहीं अभी ये। बरसेला सावन बदरिया, तब बरसेला बादल हो। बरसेला सावन बदरिया, बरसेला सा बादल हो ललना, गरजेला बराही बादल, रिम झिम बाजेला हो ललना, गरजेला बड़ा बड़ा बादल, बरसेला झिमि झिमि हो। एक घड़ी गयले दूसरा घड़ी, और पहरा घड़ी हो। एक घड़ी गयले दूसरा घड़ी, और पहरा घड़ी हो। आहो ललना खुल गयले बांधल जंजीर बात, खुल गयले बजर के वरिया हो। आहो ललना खुल गयले बांधल जंजीर बात, खुली गईले बजर के वरिया हो। एक घड़ी गईले आहो ललना वसुदेव हरी के लिए गोद पहरवा।

0: सबसोवे पहरवा सबसोवे लद हो आओ ललना वसुदेव हरि के लिए गोद पहरवा सबसोवे पहरवा सबसोवे लद हो।
1: बहुत धन्यवाद
0: नागमुनि एक आज लाइन बोला
1: अच्छा एक लाइन
0: नागमुनि फनी पसरावे ला बुंद नेवारे ला हो आओ ललना चल चल जमुना माँ के पार कंधैया नहीं भींजे कंधैया नहीं भींजे ला ओ ललना नंद भवन मा उछार नौबत बाजेला नौबत बाजेला हो मथुरा में जन्मेलन कृष्ण त गोकुल में खेलेला गोकुल में खेलेला हो आओ ललना जसोदा मैया गोद खेलावेला खीर पियावेला खीर खियावेला।
1: वाह नानी जी आपने तो नंद के लाल को खीर भी खिला दी और उसकी जंजीरें भी सब कट गईं। क्या बात है इस लोकगीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हमारे साथ एक और श्रोता जुड़ गए, तब हम कहानी जो एक बच्चे की है वो सुनाएंगे। हेलो
2: जय श्री कृष्णा, मैं
1: जय श्री कृष्णा, कहिए क्या सुनाएंगे?
2: ठीक है, आप कैसे हैं?
1: बढ़िया।
2: एक छोटी सी भजन गाऊंगी।
1: जरूर, स्वागत है आपका।
2: कृष्ण गोविंद गोपाल गाना है, हिंदू जाति को घर घर जगा

0: हिंदु एकता को जयकार जा सदा, भेदभावों को दूर भगाना है।
1: बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद इस प्यारे से गीत के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ लाइन में और लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा आपके साथ कहीं कहीं समझौता करना पड़ेगा। हेलो, शायद लाइन कटी है। 4028085 पर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और यह जो आपके फ़ोन ले रहे हैं, तो चलिए श्रोताओं एक प्यारी सी कहानी यही हम सुनाएं कि छोटे बच्चे का प्यार कैसा होता है। चलिए बढ़ते हैं। एक दिन बादशाह अकबर बहुत ही विचारशील मुद्रा में दरबार में आए, बहुत गंभीर मुँह। उन्होंने दरबार में उपस्थित अपने सब मंत्रियों को कहा, माननीय मंत्रीगण, मुझे बताएं जिसने मेरी दाढ़ी खींची है उसे मैं कौन सी सजा दूं? सब लोग हैरान हो गए, कैसा अजीब सा सवाल है कि दाढ़ी आपकी खींची है, अब आप उसे क्या सजा दें? सभी को लगा कि ऐसा क्या, किसने ये अपराध किया, बादशाह की दाढ़ी खींचने का अपराध? मंत्रियों में से एक ने कहा, महाराज जिसने भी ये हरकत की है उसके हाथ काट देने चाहिए। दूसरे ने कहा, महाराज हाथ नहीं मृत्युदंड देना चाहिए। तीसरे ने कहा, महाराज उसको तो उम्र कैद की सजा देनी चाहिए। चौथे ने कहा, उसे चूहों वाले तहखाने में फेंक देना चाहिए। बहुत से विचार आने लगे, सभी मंत्री बहुत रचनात्मक होने लगे। अकबर भी बड़े मज़े से उनकी बातों को सुन रहे थे और बीरबल मंद मंद मुस्करा रहे थे। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और कहा, क्यों बीरबल तुम क्यों इतने चुप बैठे हो? तुम्हारे मुताबिक मेरी दाढ़ी खींचने की हिम्मत करने वाले को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? बीरबल उठे और बादशाह की ओर सम्मान से सिर झुकाकर बोले, महाराज आपको तो उसे चूम लेना चाहिए, उसे गले लगाना चाहिए, उसे खाने के लिए खूब मिठाइयाँ देनी चाहिए। यह सुनकर दरबार में सभी लोग हैरान हो गए। एक मंत्री ने कहा, महाराज बादशाह की दाढ़ी को खींचना एक जुर्म से कम नहीं है, बीरबल चाहते हैं कि उसको मिठाइयाँ दी जाएं। अकबर मुस्कुरा रहे थे, उन्होंने बीरबल से पूछा, आपको क्यों लगता है कि यह एक उपयुक्त सज़ा है? बीरबल ने कहा, महाराज आपके पोतों के अलावा आपकी दाढ़ी और कौन खींच सकता है, किसमें हिम्मत है? बीरबल बिल्कुल सही थे। उस दिन सुबह बादशाह अपने पोते के साथ खेल रहे थे और शरारत में दादा की दाढ़ी को पोते ने खींचा था, तो अकबर ने सोचा कि चलो मंत्रियों की परीक्षा लेते हैं, और उन्होंने ये अजीब सवाल पूछ लिया था। केवल बीरबल का जवाब सही था। अकबर एक बार फिर उनकी बुद्धि के कायल हुए और सभी मंत्रियों का

मुंह लटक गया। तो श्रोताओं, सचमुच हमें सजा या दाढ़ी खींचना या कान खींचना केवल हमारे बच्चे बचपन में कर सकते हैं। तो चलिए गीत सुनते हैं।

0: तिहारी जुलम।
1: चलिए हमारे साथ एक श्रोता भी जुड़ गए हैं, हम जरा उनको भी सुनते हैं कि वे क्या कहना चाहते हैं। हेलो हेलो
2: हेलो अलका दीदी
1: जी, नमस्ते, कैसी हैं आप?
2: नमस्कार दीदी, मैं अच्छी हूँ, आप अच्छी हैं ना?
1: हाँ बिल्कुल, बोलिए।
2: आज का विषय आपने क्या रखा है? कहानी।
1: लेकिन ऐसी कहानियाँ जो बुद्धि को बताती हूँ।
2: हाँ तो मैं एक छोटी सी कहानी बोलती हूँ। जब हम बचपन में थे तो हम पढ़ते थे छठी कक्षा
1: अच्छा,
2: की
1: सुनाइए।
2: समय में कुछ प्रकाशन नाम था उस पुस्तक का। एक अच्छा। यात्री एक पथिक कहीं रास्ते में जा रहा था, चारों तरफ देखता हुआ खेत बारी एक जगह से गुजरा तो उसे इस खेत में बड़ा बड़ा कुम्हरा दिखाई दिया। थोड़ी दूर पर गया तो उसे एक पीपल का वृक्ष नजर आया। वो थक गया था, सोचा थोड़ा आराम कर लूं इसके नीचे, और आराम करके ऊपर देखा तो छोटे छोटे फल हैं उसमें। तो उसने सोचा भगवान भी क्या विचित्र बनाते हैं, इतने बड़े पेड़ पर
1: छोटा छोटा फल
2: हाँ। और वहाँ इतना बड़ा कुम्हरा पड़ा है
1: हाँ।
2: और
1: वो बेल पर है।
2: हाँ वो बेल पर है। थोड़ी सी सुस्ती आ गई और वो सो गया। अचानक से एक छोटा सा फल टूटकर उसके मुंह पर गिर गया, उसके नाक पर।
1: जी
2: वो उठ गया, उठकर उसने बोला ये फल मेरे नाक पर गिरा तो ईश्वर तो अच्छा ही करता है, यदि वो कुम्हरा इस पेड़ पर होता और मुझ पर गिरता तो मेरा क्या हाल होता।
1: बिल्कुल सही।
2: तो बोलने का तात्पर्य ये है कि ईश्वर जो करते हैं हम मनुष्य उसमें दखल अंदाजी करते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि ईश्वर जो भी करते हैं वो सही करते हैं।
1: बिल्कुल सही कह रही, बहुत धन्यवाद। बहुत
2: हाँ
1: प्यारी कहानी श्यामा जी ने हमको सुनाई, राधा जी ने, राधा बाल गोविंद जी ने। सचमुच ईश्वर के न्याय और उनकी व्यवस्था में कोई कमी नहीं होती है, और ये कहानी बहुत प्यारी सीख देती है कि हर समय शिकायत मत करो, बात को गहराई से समझो। तो चलिए एक और श्रोता को लेते हैं, देखते हैं वे हमें क्या कहना चाहते हैं। हेलो
3: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, कैसी हैं आप?
3: मैं ठीक हूँ।
1: क्या सुनाएंगी बसंती जी?
3: कहानी।
1: अच्छा सुनाइए
3: जी, अकबर बीरबल की कहानी।
1: सुनाइए जरूर।
3: ईश्वर न्याय प्रिय है।
1: अच्छा।
3: एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल हम तो कहते हैं कि ईश्वर न्याय प्रिय एवं दयालु है, लेकिन मैं इसे सच नहीं मानता।
1: अच्छा।
3: संसार में हम अनेक प्रकार के लोगों को देखते हैं, कुछ धनी है तो कुछ निर्धन है, उसको तो हम सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, लेकिन वह यह पश्चात क्यों करता है? तो बीरबल अपने इस उत्तर के साथ तैयार था।
1: अच्छा।
3: महाराज यदि ऐसा नहीं करे तो कोई भी कभी भी उसकी प्रार्थना नहीं करेगा। आप हमारे राजा हैं और राज्य के सभी लोगों के लिए पिता तुल्य हैं। आप समय समय पर अनेक लोगों को नियुक्ति कर देते हैं तथा उन्हें पुरस्कृत करते हैं। आप किसी को तो 5 सोने के सिक्के देते हैं जबकि कुछ अन्य को 10 सिक्के देते हैं
1: जी।
3: तो किसी को 100 या 1000 भी देते हैं
1: जी।
3: आप यह भेदभाव क्यों करते हैं? तो बीरबल का प्रश्न सुनकर बादशाह अकबर परेशान हो गए। उन्होंने बहुत देर तक सोचा लेकिन उन्हें कोई उपयुक्त जवाब नहीं मिला। तो बीरबल ने फिर आगे कहा, महाराज आप लोगों को उनके काम के अनुसार पुरस्कृत करते हैं। जो कठिन परिश्रम करता है उसे अधिक मिलता है, अपेक्षाकृत उसके जो कम परिश्रम करता है, क्या यह भी अन्याय है? तो मैं समाप्त करती हूँ।
1: बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत सुंदर कहानी आपने सुनाई, और सचमुच इस कहानी में बहुत प्यारी चीज है कि ईश्वर न्याय करता है, आप जैसा कर्म करते हैं उसके मुताबिक, और बल्कि उसका न्याय तो जबरदस्त है। चलिए हमारे साथ एक और श्रोता जुड़ गए हैं, हम उनको जरा सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं। हेलो
4: हेलो,
1: नमस्कार जी। आपका रेडियो सेट ऑन है शायद? हाँ
4: ठीक है,
1: अब बात करिए, अब मजा आएगा जी, कहिए।
4: मैं एक कहानी

0: सुनाती हूँ।
1: स्वागत है आपका, जरूर सुनाइए जी।
0: अब ये
1: सुनाइए
0: शुरू करके।
1: हाँ, छोटा कर दीजिए थोड़ा सा।
0: अरे
1: सुनाइए।
0: एक कहानी में दुगो भाई रहल।
1: अच्छा।
0: दुनो शादी कर लन सर।
1: हम्म।
0: अब दुनो भाई जाए काम करे।
1: अच्छा।
0: काम करे गलन सर। अब दुगो गोतनी घरे में बा।
1: हाँ।
0: अब दुगो भाई सब आशो सब किन के रख दिल बा।
1: अच्छा।
0: बड़का गोतनी नहीं पकावेला, छोटका गोतनी
1: सब काम
0: पका के रखेला। और ओकर सास नहीं रहल, मर गल।
1: अच्छा।
0: अब बोले जाट होवी कोई नहीं बा, एगो लकड़ी के सास बना के रख दिए।
1: अच्छा।
0: पति सगे छोटका गोतनी। अब चल गल सच्चे के
1: जी
0: बना के रख दिलक ओकर लकड़ी के सास।
1: जी जी
0: अब पका के उ बोले खा, ओकर सास के बोले खाए के।
1: अच्छा।
0: बड़का गोतनी का कर ले बा।
1: हाँ।
0: आके खा ले वेला।
1: अच्छा।
0: अब खा ले वेला तब दोनों भाई चला घरे। घर के आई ना बेटा सब राशों फिनी हो गल। बड़का के बा को राशियों नहीं पकड़ी बा सब रमा। अब बाल बा कुर पति बोले था आई नहीं खैली, कुछ नहीं खैली, सब रमास के रख दीली। अब छोटका भाई बोले था तू कौन सी कर ली, हमारे सास के खेली सब। इसे कहा तुर सास खाल बा। गुनी न तनी एती बोला था कि आई सब को राशन फिन युगल कैसी ओको लकड़ी के सास खाए, सास खाला लकड़ी के। अब चुका भाई बोले चल चल जो हमर घर में काजनी के देले है सब खाए के जो जो हमर घर से तब निकाल दिलक।
1: अच्छा।
0: अब चलते चलते एगो गांची टरी बस गल, रात हो गल। वहां से चोर आवा था।
1: अच्छा।
0: अब सुना था घर चोर आवा था तो एटी पर चहर गल गांची टरी
1: जी,
0: गांची पर चहर गल
1: जी।
0: अब कैसे अब दिखता चोर भा उतर डर लगा था। अब कैसे करे वो लोग गंती करता लोग कोई पैसा की
1: जी
0: चोर लोग गंती करता
1: जी जी
0: अब लकड़ी के सास गिर गल। अब बोला था आय रे मो लकड़ी के सास गिर गल। अब चोर लोग बोला था लकड़ी के सास लोग बोले था भागा सा भागा सा कहाँ बा लकड़ी के सास भूत है। अब चोर भाग गल। अब सब
1: पैसा और धन उसको मिल गया है ना,
0: सब जे पैसा धन सब मिल गया,
1: मतलब सास की कृपा से सब धन मिल गया।
0: हाँ। अब जाता घरे कोई कवारी था बोला था ए खोल देख कैसे पैसा अन ली, देख कितना पैसा अन ली, खोल कवारी। भाई दोनों भाई खोला था इसे कहाँ मिलल, इसे गई रही हुआ दे भैसल टली गल सी तेरे तो पैसा चोरों का पैसा मिल गल। अब बड़का गोतनी का कर ली बा, ओहू बोला था को पति संगे एको लकड़ी के साथ बना दिए हम जा तनी आने पैसा।
1: तो अगली बार चोरों ने उसकी पिटाई कर दी उसी। खैर बहुत धन्यवाद, एक बड़ी प्यारी सी लोक कथा आपने सुनाई। और वो लोक कथा जैसे वो कुल्हाड़ी उसकी सोने की और चांदी वाली कहानी है ना, तो बहुत सुंदर। देखिए लोक कथाएं इसी तरह की होती हैं। बहुत सुंदर बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद
0: धन्यवाद
1: जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। चलिए हमारे साथ एक श्रोता और जुड़ गए हैं, उनको भी सुनते हैं। हेलो।
2: हेलो बहन जी, नमस्ते।
1: नमस्ते कमला जी, कैसी हैं?
2: ठीक हूँ, आप कैसी हैं हमारे गुरु?
1: अरे स्वस्थ हूँ, आप लोग खुश रहे तो हम भी खुश रहते
2: बहुत,
1: हैं।
2: बहुत, बहुत, बहुत।
1: बस
2: आप तो हमारे रेडियो के गुरु माता हैं।
1: चलिए आप भी एक कहानी मुझ पर बना दीजिए और क्या।
2: अच्छा अच्छा, बढ़िया सा कहानी, गोपाल भैया की कहानी।
1: क्या सुनाएंगी कमला जी?
2: गोपाल भैया की कहानी।
1: अच्छा सुनाइए।
2: हाँ, एक गांव में एक बूढ़ी माँ और उसके बेटे रहते थे, वो तो बहुत गरीब थे।
1: अच्छा।
2: बच्चा तो स्कूल जाता था, फिर भी गुरुजी ने कहा कि तुम लोग कल कल एक कटोरा दूध लाना अपने अपने घर से।
1: बढ़िया।
2: हाँ, तब माँ बेटा जाके माँ के कहा कि माँ गुरुजी ने एक कटोरा दूध मांगा है। माँ ने कहा बेटा हम कहाँ से दूध लाएंगे, हम तो बहुत गरीब है।

0: हमारे पास तो खाए की भी नहीं है, कोई नहीं है।
1: जी
0: अब बेटा तो रोने लगा, जिद पकड़ के बैठ गया, जी दूध चाहिए हमें, दूध
1: ठीक
0: चाहिए।
1: ठीक
0: तो माँ ने कह दिया कि जाओ वहाँ पर जंगल है, वहाँ पर एक तो तुम्हारा भाई रहता है,
1: अच्छा
0: भाई का नाम है गोपाल,
1: अच्छा
0: जाकर जोर जोर से चिल्लाना, गोपाल भैया गोपाल भैया तुम्हारा भाई। तो बच्चा ने कहा कि कैसा है वह, तो कहा कि उसके हाथ में बांसुरी है और ये
1: सिर पर
0: गैया,
1: मोर पंख है, गैया है
0: हाँ
1: जी।
0: गैया चलाते हैं। बच्चा ने वैसे ही कहा गोपाल भैया गोपाल
1: तो
0: भैया, जरूर जोर जोर से चिकरने लगा।
1: बस तो गोपाल भैया सच्ची भावना के आगे
0: सचमुच
1: चले आए, सचमुच।
0: सचमुच चले आए, देखो
1: बहुत
0: भगवान
1: सुंदर,
0: की कृपा,
1: यही है
0: देखो कलका जी
1: बोलते हैं ना,
0: पुकारते हैं तो
1: सबसे ऊंची प्रेम सगाई,
0: सगाई,
1: सबसे ऊंचा प्रेम है,
0: सबसे
1: सबसे
0: ऊंचा
1: वो
0: बोली
1: भाव,
0: मीठा
1: वो बोली, वो प्रेम
0: भाव, मीठा
1: जी।
0: बोली सबसे मीठा बोल रे,
1: बहुत
0: मन की
1: धन्यवाद,
0: आंखें हाँ
1: बहुत
0: बहुत अच्छा।
1: धन्यवाद, बहुत
0: लेकिन वो
1: सुंदर।
0: दूध ले गया जब वहाँ पर ही, तो
1: हाँ
0: दूध दूध तो इतना ले, बहुत बढ़िया दूध
1: जी
0: था
1: जी
0: कि उस सभी पात्र सभी बर्तन भर गया
1: बहुत
0: इसकी।
1: धन्यवाद कमला जी, बहुत प्यारी एक भावपूर्ण आपने कहानी सुनाई, और इस कहानी के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ एक और श्रोता जुड़ गए हैं, उनको लेते हैं। हेलो,
0: तो हाँ जेवर कैसी जो कहा कि मेरी दुपिया का जी की प्रणाम
1: नमस्ते चित्रा जी,
0: करती
1: नमस्ते, कैसी हैं?
0: हाँ खुशहाल मंगल हूँ,
1: क्या
0: आपकी
1: गाड़ी वाड़ी
0: कृपा
1: चलानी
0: बताऊँ।
1: सीख ली?
0: हाँ सीख रही थी आपकी
1: क्या
0: कृपा
1: बात है,
0: हमेशा
1: क्या
0: से
1: बात है, अब तो मोटर
0: अब
1: वाली हो गई हैं।
0: तो आऊंगी आपके पास इन बीच
1: अरे जरूर
0: में
1: आइए, आपका
0: जब
1: स्वागत
0: कार्यक्रम
1: है जी,
0: करेंगे
1: स्वागत है,
0: तो।
1: स्वागत है।
0: हाँ
1: चलिए
0: हाँ
1: आज क्या क्या
0: धन्यवाद,
1: सुनाएंगी?
0: क्योंकि कल जन्माष्टमी, कृष्णा
1: तो
0: जन्माष्टमी
1: आप
0: है ना,
1: सत्संग में गई
0: खूब
1: होंगी जरूर।
0: हाँ खूब धूमधाम से
1: क्या
0: मनाया,
1: बात है, सुनाइए,
0: रन्ना
1: दो पर
0: पहना
1: दो
0: झूला।
1: लाइन
0: तो
1: केवल, ठीक है?
0: हाँ धन्यवाद। तो सबसे पहले जो विषय रखा है आपने,
1: हाँ
0: बहुत अच्छा विषय। तो ये जो कहानी, तो कहानी पर एक दूसरा तैयार नहीं हुआ
1: नो नो,
0: आज
1: आप गीत की
0: तो।
1: दो लाइन सुनाइए,
0: हाँ धन्यवाद
1: सुनाइए,
0: धन्यवाद
1: सुनाइए।
0: जी। तो कन्हारी कन्हारी दूर मत जाना, गोकुल की गलियां छोर की, हो गोकुल की गलियां छोर की, मत की गिराना तेरा अच्छा नहीं,

0: बहुत धन्यवाद चित्रा जी,
1: ये आपके
0: बड़ी प्यारी आवाज है
1: लिए।
0: आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ एक और श्रोता भी जुड़ गए हैं, उनको भी जरा हम पकड़ ही लेते हैं। हेलो,
1: हेलो
0: हाँ नमस्ते जी,
1: रेखा जी, आप कैसे हैं?
0: मैं सोचूं आपका रेडियो सेट ऑन है।
1: आज मेरे भाग खुल गया,
0: भाग तो खुल
1: मुझे
0: गए।
1: मुझे लाभ मिला है रेखा
0: नो संगीता जी,
1: जी।
0: हाँ संगीता जी, अपना रेडियो सेट बंद कर दीजिए एक बार,
1: वेट
0: तब आपकी आवाज बहुत क्लियर सुनाई देती है जी, आप मजा
1: रेखा
0: आएगा जी। बोलिए संगीता जी।
1: जी, ना दूर है रेखा जी, कल
0: बोलिए।
1: जन्माष्टमी है,
0: हाँ
1: तो शुभकामनाएं।
0: बहुत धन्यवाद,
1: मैं आपको एक शब्द बोलना चाहूंगी।
0: बोलिए।
1: नहीं, आपके प्रोग्राम बहुत अच्छा है अरकान जी।
0: बहुत
1: कबो
0: धन्यवाद,
1: आपको 1 घंटा मिलता है
0: ये आप
1: प्रोग्राम
0: ही का
1: करने के लिए
0: प्रोग्राम है बहन जी, मेरा क्या,
1: ना,
0: आप ही का
1: ये
0: है।
1: प्रोग्राम हम लोग के बहुत सीखने को मिलता है,
0: बहुत
1: बोला
0: धन्यवाद, बहुत
1: सीखने को
0: धन्यवाद
1: मिलता हो
0: जी
1: आपसे और श्रोता से। लेकिन
0: जी जी बिल्कुल एक दूसरे से हम,
1: कबो
0: हाँ
1: कबो अरकान जी
0: हाँ
1: ढेर श्रोता काली वजह गीत गावेलन सर, ये
0: हाँ
1: पूछना है। नहीं, मैं सच्चाई बोल रही हूँ।
0: हाँ
1: पिछले सप्ताह मैंने सुना, एक श्रोता ने कहा है कि
0: हाँ
1: ये प्रोग्राम गीत का नहीं है। तो
0: हाँ
1: वो
0: हाँ
1: ऐसे करते हैं, जब जब आप प्रोग्राम करते हैं कुछ
0: हाँ
1: मजा
0: हाँ
1: हमने के सिखाए
0: हाँ
1: के बे, तब जब श्रोता लोग गाना गावेला, गा सब
0: हाँ
1: मुझे
0: हाँ
1: गाना है, मुझे गाना है,
0: हाँ
1: बे
0: हाँ
1: प्रोग्राम मजा अच्छा नहीं लगता है।
0: हाँ सही कह रही हैं आप, लेकिन क्या है?

0: ना बनर्जी,
1: मैं बोल रही हूँ, मैं
0: संगीता
1: कोई एक
0: जी,
1: दिन नहीं झुकाएगा।
0: नहीं, दिक्कत क्या है, मान लीजिए कोई कहानी नहीं कह सकता, किसी के पास कला है गाने की, वो जुड़ना चाहता है प्रोग्राम से, वो कमेंट नहीं करना चाहता, हाँ, तो अगर दो पंक्ति कोई सुनाता, हाँ, दो पंक्ति कोई बात नहीं,
1: देख ऐसे श्यामा करते हैं,
0: हाँ, वो
1: बीना
0: तैयारी
1: जी
0: से
1: करते हैं, बेटा
0: बिल्कुल
1: बढ़िया,
0: बढ़िया
1: मतलब
0: बोलते हैं,
1: अकुस्टिक मिलता है,
0: हाँ
1: अकुस्टिक मिलता है, एक
0: हाँ
1: घंटा के प्रोग्राम है, जब ये गाना
0: हाँ
1: गाएंगे वो गाना गाए, आज जन्माष्टमी है,
0: हाँ
1: आज ओके, सब
0: हाँ आज
1: अपन
0: ओके।
1: पहले अपन भक्ति
0: नो संगीता जी, मैं एक बात बोलूं, देखो
1: हाँ
0: कुछ कुछ लोग तैयारी से बोलते हैं कर, लेकिन कुछ लोग वह तैयारी नहीं
1: हाँ
0: कर पाते, तो वह दो, मैं कहती हूँ दो पंक्तियां गाओ, ज्यादा नहीं, लंबा गाओगे तो दूसरों को
1: एग्जैक्टली
0: मौका नहीं मिलता है,
1: एग्जैक्ट,
0: दो
1: कब नहीं
0: पंक्ति में
1: जाने
0: कोई बात नहीं,
1: लगता
0: बिल्कुल,
1: कबो उलो के शब्द नहीं, अच्छा बात
0: और एक
1: बोल रही
0: चीज
1: हूँ सर।
0: संगीता जी, एक चीज और बोलूं, मुझे बहुत खुशी हुई कि श्रोता श्रोता को एडमायर कर रहा है, आपने बीना जी
1: ना
0: और श्यामा जी को इतने
1: है
0: सम्मान दिया, मुझे बहुत
1: ना
0: अच्छा लगा, इसके लिए मैं आपकी धन्यवादी
1: ऐसे
0: हूँ जी।
1: ढेर श्रोता बा,
0: हाँ
1: निमन
0: बिल्कुल
1: निमन बोली ला, तक
0: बिल्कुल
1: मजा
0: बिल्कुल
1: अच्छा लगेला सुने के,
0: जी
1: हमने
0: जी
1: काम
0: जी
1: करे ला सर,
0: जी
1: खाली
0: जी
1: मजा सैटरडे को मिलता
0: हाँ
1: है मजा ये
0: जी
1: प्रोग्राम सुनने के लिए, जब लोग
0: हाँ
1: गाता है
0: हाँ
1: बिना भेज के गाता है,
0: बिल्कुल,
1: सॉरी
0: बहुत धन्यवाद संगीता
1: सॉरी
0: जी,
1: सॉरी
0: बहुत
1: यस,
0: बहुत
1: बिना
0: धन्यवाद,
1: भेज के कब वो गाता है,
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: प्रोग्राम तक छोटा है,
0: हाँ
1: एक तो वो लोग गा गा
0: चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको हम अलविदा कहते
1: गा
0: हैं,
1: के
0: ओके जी
1: मुझे
0: ओके। तो संगीता जी को हम अलविदा कह रहे हैं, क्योंकि संगीता जी कह रही हैं कि टाइम कम है, वैचारिक प्रोग्राम है, और सचमुच हम विचारों की बात तो होती है, एक विषय आपके सामने रखते हैं, पर जिनको मन भी करता है यदि गाना है तो दो पंक्तियाँ गाइए, ताकि औरों को मौका मिले और हम वैचारिक बातें कर सकें, इसीलिए आप देखिए कभी कभी मेरे प्रोग्राम में एक या दो गीत ही चल पाते हैं और प्रोग्राम ख़त्म होने तक आ जाता है। तो एक और श्रोता भी हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए उनको भी ज़रा हम ले ही लेते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: नमस्ते जी,
1: एम्बेसी है ना,
0: बिल्कुल एम्बेसी है,
1: वो केशवा पोजे का अभी
0: अरे पूछिए क्या पूछना चाहते हैं भाई साहब,
1: ओ पपुल एक सुला एम्बेसी, संजय भाई संजय,
0: ओके,
1: और उसका आंसर है वेनिस।
0: नहीं ऐसे है, वो दूसरे स्टेशन पर है, आप अपना स्टेशन बदलिए, आप इस समय रेडियो मॉरिशस पर आ गए हैं, आपको
1: हाँ तो
0: जाना
1: कौन,
0: चाहिए रेडियो मनोरंजन पर,
1: हाँ
0: ठीक
1: तो
0: है,
1: नंबर कहाँ है, नंबर नंबर
0: नहीं
1: क्या है
0: मैं
1: भाई
0: वो नहीं
1: जी,
0: दे पाऊंगी, मैं केवल यहाँ का नंबर आपको दे पाऊंगी, कृपया आप हमें क्षमा करें, ठीक है, आप
1: आले आले आले आले
0: सिर्फ अपनी
1: बहनी
0: सुई
1: आले,
0: बदलिए प्रोग्राम की, आपको मिलेगा
1: हाँ
0: प्रोग्राम। तो हमारे साथ ये श्रोता तो चले गए, एक और आ गए हैं, हेलो
1: शुभ नमस्कार अलका बहन।
0: नमस्कार भाई साहब, मैं सोच ही रही थी वक्त तो बीत चला, भाई साहब आज
1: नहीं
0: कहाँ रह गए
1: जी, मैं सोच रहा हूँ क्या बोलूँ ऐसी तो
0: जिंदगी
1: बात
0: एक
1: नहीं जी,
0: कहानी है, क्या बोलें।
1: और कोई अगर आपके सहयोगी है तो उनको भी सादर से प्रेम नमस्ते,
0: जी अभी थोड़ी देर के लिए वो निकले हैं, जब आएंगे तो मैं बोल दूंगी
1: बहुत धन्यवाद
0: जी।
1: बहन जी।
0: हाँ
1: मैं कहूँगा आपसे सबसे
0: जी
1: पहले कहानी सुनाने से पहले कि ये महामंत्री,
0: जी
1: ये लोग बहुत विशेष आदमी होते हैं,
0: बहुत बुद्धिमान,
1: बहुत बुद्धिमान, सूझबूझ,
0: सभी
1: और जैसे आपने
0: डायरेक्टर
1: कहा
0: राजा उनका
1: छुट्टी में,
0: मंत्रिमंडल ही निर्णय लेता है।
1: तो ऐसे थे मुगल साम्राज्य के अकबर बीरबल,
0: जी बिल्कुल,
1: और एक है नाम तेनालीराम,
0: हाँ सही कह रहे हैं, बहुत बुद्धिमान, दोनों के दोनों बहुत बुद्धिमान,
1: वो कृष्ण और राजा कृष्ण
0: कृष्ण
1: देवराय
0: राय
1: के,
0: के दरबार में
1: हाँ,
0: थे जी,
1: और तीसरा एक नाम बोलूं आपको, सभी
0: बोलो
1: लोग जानते हैं लेकिन शायद याद नहीं हो रहा है उन लोगों को,
0: बोलो,
1: ये महात्मा विदुर,
0: हाँ सही कह रहे हैं,
1: महाभारत के महामंत्री के
0: महाभारत के
1: समय
0: महा,
1: में
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद विदुर जी को याद करने के लिए, बहुत सुंदर, बहुत
1: और ये
0: सुंदर तीर
1: अकबर
0: मारा
1: जो है
0: आपने,
1: बहन जी, ये अकबर जो है
0: हाँ हाँ
1: जो हमेशा ये उनकी परीक्षा लेते थे बीरबल का, कठिन कठिन प्रश्नों से,
0: परीक्षा क्या, उनके दुश्मन भी बहुत थे दरबार में, वे
1: हाँ
0: चाहते थे कि राजा के सामने नीचा
1: सच
0: दिखे।
1: बात, आपने सच बात कही, बहुत बहुत बहन जी। और तो मैं आज बीरबल की नहीं बोलूंगा,

0: बल्कि मैं कहूंगा आपको ये तेनीराम,
1: तेनालीरामा
0: हाँ तेनालीरामा
1: जी,
0: के
1: कोई एक घटना
0: हाँ
1: सुनाएंगे आप।
0: एक घटना,
1: चलिए सुनाइए सुनाइए,
0: ये मातृभाषा की पहचान उसका शीर्षक है।
1: बहुत सुंदर, बताइए।
0: तो एक बार विजयनगर दरबार में एक बहुत विद्वान व्यक्ति आया।
1: अच्छा।
0: वो कई भाषाएं इतनी शुद्धता से बोलता था कि कोई यह नहीं पहचान पा रहा था कि उसकी असली मातृभाषा कौन सी है।
1: अच्छा
0: उसने राजा को चुनौती दी कि
1: अच्छा
0: कोई उसकी मातृभाषा बताए। सभी विद्वान हार गए। तब तेनालीरामा ने जिम्मेदारी ली।
1: अच्छा
0: उस रात जब वह विद्वान सो रहा था,
1: हाँ
0: तेनालीराम चुपके से उसके कमरे में गए और उसके कान में एक तिनके से गुदगुदी की। आप
1: तो बस पहला बोल तो मातृभाषा में बिल्कुल।
0: जानते ना, आप तो निष्कर्ष करते विद्वान अच्छा उसके अचानक नींद से चौंक कर उठा और अपनी भाषा तेलुगु या तुलु तुलु तेलुगु में चिल्लाने लगा।
1: जी
0: अब
1: बहुत
0: अगले दिन क्या
1: सुंदर।
0: हुआ?
1: हाँ
0: दरबार में तेनालीरामा ने घोषणा की कि यह विद्वान की मातृभाषा तेलुगु है। पूछने पर तेनालीराम ने समझाया, जब इंसान बहुत डर में रहते या क्रोध में जवाब देता है या नींद में अचानक जागता है, तो वह हमेशा अपनी मातृभाषा में बोलता है।
1: बहुत सुंदर
0: विद्वान
1: नवीन
0: ने
1: भाई।
0: अपनी हार स्वीकार कर ली।
1: बहुत
0: और ये
1: सुंदर
0: सच है बहन
1: कहानी।
0: जी, मैंने
1: हाँ
0: अनुभव किया है। हाँ दुख में,
1: हाँ दुख में अपनी भाषा में, इवन सपनों में भी हम अपनी भाषा में ही बात करते हैं।
0: हाँ एक बात बोलता हूँ आपको
1: जी
0: बहन जी
1: जी
0: रखने

0: सबके, कई तरह के मित्र है ना
1: जी जी.
0: तो लेकिन इसी भाषा, लेकिन दुख में वो कितनी हिंदी के विद्वान होते हुए भी
1: वो भोजपुरी निकलती
0: में
1: है.
0: वो त्रिवेणी में बोलते था. धन्यवाद इंग्लिश.
1: बहुत धन्यवाद नवीन भाई जुड़ने के लिए. बहुत सुंदर, बहुत प्यारी कहानी सुनाई मातृभाषा को लेकर, और बहुत ही प्यारी बात की. तो एक और श्रोता भी हमारे साथ हाथ मिलाना चाहते हैं. हेलो.
2: हेलो, नमस्कार डॉक्टर जी.
1: नमस्ते, कैसी हैं आप?
2: बार प्रणाम आपको.
1: आपको भी प्रणाम. कहिए.
2: प्रणाम. मैं संगीता हूँ.
1: हाँ संगीता जी सुनाइए.
2: हाँ, आपने तो कहा कि बीरबल जी की कथा, तो वो तो सब कोई को मालूम नहीं.
1: हाँ,
2: लेकिन कोई बात नहीं, कोई कहानी
1: पंक्तियाँ सुनाएंगी आप. हैं?
2: हाँ, एक छोटा सा कहानी
1: सुनाइए.
2: हाँ, एक बार एक गुरु जी था.
1: अच्छा.
2: उसके यहाँ उसके पिताजी का, उसका पिता उस घर पर देहांत हो गया. उसने एक बच्चा था, स्कूल आते थे, उसका नाम था जटिल.
1: अच्छा.
2: उसने कहा कि सब बच्चे लोग कुछ न कुछ लाइए, यहाँ काम करिया है पिताजी को.
1: हाँ.
2: तो सब बच्चे वो दही लाएंगे, दूध लाएंगे, वो लाएंगे वो. तो वो बच्चे तो आए थे, वो तो इतना बड़ा है, भगवान के पास गए तो कहा ऐसा मुझे ले जाना चाहिए कुछ. तो छोटा सा लोटा में ले गया दही. तो गुरुजी देखकर उसे बहुत खिसा गया.
1: अच्छा.
2: उसको नहीं अच्छा लगा, इतनी छोटा, इतना लोग आएंगे तो कैसे इसमें पूजा क्या करेंगे. तो वो बच्चे को जाकर ये डाल दो वो मटका में. डलते डलते वो मटका भरते भरते भरते भरते. अब गुरुजी तो अचरज हो गया. दिखा ऐसे कैसे ऐसे, वो तो भगवान का दिया हुआ. देखिए ना कितना बढ़ गए. भगवान
1: भाव,
2: तो दिया
1: भाव,
2: था. गुरुजी उसे एक थप्पड़ मार दिया, बच्चे गिर गए. तो उसने जल्दी से बच्चे को उठा लिया.
1: अच्छा.
2: देखिए ऐसे ही एक छोटी सी कहानी आपको सुना.
1: बहुत धन्यवाद. इस तरह की चमत्कारिक कहानियाँ हमारे लोक जीवन में बहुत मिलती हैं. और प्रजाजन, मतलब कभी आप दुख है तो भगवान के आगे जाते हैं और वो मदद करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं. इसी को सब चमत्कार कहते हैं. बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी प्यारी कहानी हमको सुनाई. तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं.
3: जो शब्दों से अपना परिचय कराए, लेखनी से जो अपनी हमें मिलवाए, मूक रहकर अपना परिचय स्वयं दे जाए, साहित्य दर्पण. प्रस्तुति डॉक्टर अलका धनपत की.
1: एक प्यारी सी कहानी और है, बीरबल की खिचड़ी. कईयों ने सुनी भी होगी. चलिए, अकबर के शहर फतेहपुर सीकरी में सर्दियों में बहुत ठंड पड़ती थी. एक बार उन्होंने कहा कि वह सोने के 1000 सिक्के उसको देंगे जो शाही महल के बाहर, जो एक ठंडी झील है, उसमें पूरी रात खड़ा रहेगा. देखिए राजाओं की कैसी मजाक और कैसे घोषणा हुआ करते थे. बहुत दिन बीत गए, कोई नहीं आया. 1000 सिक्के लेके मरने के लिए कौन आता. लेकिन एक दिन एक गरीब ब्राह्मण वहाँ पर आ गया दरबार में. जब अकबर ने उसको देखा तो बेचारा बहुत कमज़ोर, बीमार. तो अकबर ने कहा, तुम तो इतने कमज़ोर हो, बीमार हो, ऐसी चुनौती को कैसे स्वीकार कर रहे हो. ब्राह्मण बोला, महाराज मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं, भूखे हैं, परिवार चलाने के लिए धन चाहिए, तो मैं पैसों के लिए ये काम करने को तैयार हूँ. अकबर राजी हो गए, क्योंकि चुनौती थी और अकबर ने तो इस बात की घोषणा की थी. ब्राह्मण को 2 पहरेदार झील में ले गए. ब्राह्मण ने अपने कपड़े ऊपर के उतारे और जल में प्रवेश किया. पानी तो बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन ब्राह्मण पानी में खड़ा रहा. अगली सुबह पहरेदार ब्राह्मण को दरबार में लेकर आ गए. अकबर बड़ा हैरान था कि ये बीमार पतला सा ब्राह्मण जिंदा कैसे है. उसने पूछा, तुमने सारी रात ठंडे पानी में खड़े रहने के लिए प्रबंध कैसे किया, तुम्हें ठंड नहीं लगी. ब्राह्मण ने कहा, जी महाराज मुझे बहुत ठंड लग रही थी, पर मैंने आपके महल में जो इतने सारे दीपक जल रहे थे ना, मैं उनको देख रहा था, बस उनको देखता रहा तो मुझे एक गर्माइश की अनुभूति होती रही। तो अकबर ने सुना तो पलट

उसने ब्राह्मण से कहा, ओहो, तो हमारे महल के दीपक की गर्मी ने तुमको गर्माइश दी। यह तो बड़ी धोखेबाजी है। तुमने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। तुम्हें सोने के कोई 1000 सिक्के नहीं मिलेंगे। और ब्राह्मण को बाहर निकाल दिया गया। गरीब ब्राह्मण बहुत परेशान था। वह जानता था कि बादशाह ने उसके साथ अन्याय किया है, लेकिन बताइए, बादशाह से कौन तर्क करता, कौन आर्ग्यू करता। वह दुखी होकर घर चला गया। यह जब जब ड्रामा हुआ, जो महाराज ने गुस्से में उसे निकाला, बीरबल भी वहाँ पर थे। जब बीरबल ने ये सब देखा, उसे लगा कितनी गलत बात है। बादशाह, उसने मन में सोचा, तुम बहुत मनमानी कर रहे हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, ताकि ब्राह्मण को उसका हक मिल सके, जो वह पूरी रात ठंड में खड़ा रहा। बीरबल अकबर के पास गए और बड़े सम्मान के साथ कहा, जहाँ पना, मैंने अपने मित्रों के लिए एक दावत का आयोजन किया है। मैं आपको और सभी मंत्रियों को इस पार्टी में, इस दावत में आमंत्रित करता हूँ। कृपया आज शाम को सब मेरे घर पधारे। अकबर ने सुना तो खुश हो गए। शाम को अकबर के यहाँ खबर भिजवाई, हम आ रहे हैं। परंतु बीरबल ने संदेशा भेजा कि अभी खाना ही तैयार नहीं हुआ है। जब तैयार हो जाएगा तो बादशाह, मैं आपको खबर भेजूंगा, तब आप चले आइएगा। बहुत देर तक खबर नहीं आई। अकबर ने सोचा, चक्कर क्या है, इसने दावत रखी, मुझे कहा खाना बन रहा है। तो अकबर ने मंत्रियों से कहा, चलो हम चल के देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। जब उन्होंने बीरबल को घर के आंगन में देखा तो हैरान हो गए। बीरबल थोड़ी सी आग जलाकर उसके पास बैठा हुआ था, और जो बर्तन आग के ऊपर होना चाहिए था, वो एक पेड़ की डाली पर ऊपर लटक रहा था। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि हम बेवकूफ़ हैं? क्या कर रहे हो तुम? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं आप सबके लिए बड़ी स्वादिष्ट खिचड़ी बना रहा हूँ। इस बात पर बादशाह जोर से हंसे। उन्होंने कहा, मूर्ख, तुम्हें क्या लगता है इस थोड़ी सी आग जो नीचे जल रही है, वो तुम्हारी खिचड़ी तक पहुँचेगी और खिचड़ी बन जाएगी जो तुमने ऊपर पेड़ पर टांग रखी है? बीरबल ने कहा, महाराज, आग की गर्मी बर्तन तक उसी प्रकार पहुंच जाएगी जिस प्रकार महल के दीपक की गर्मी उस गरीब ब्राह्मण तक पहुंची थी। ये तो पेड़ पर लटका है, गरीब ब्राह्मण तो दूर नदी में खड़ा था। अकबर ने हंसना बंद कर दिया। उन्हें एहसास हो गया कि बीरबल क्या कहना चाहता है। अगले दिन उन्होंने सम्मान से ब्राह्मण को बुलाया, उसे 1000 सिक्के दिए। ब्राह्मण ने राजा का धन्यवाद दिया, आशीर्वाद दिया। अकबर ने बीरबल को देखा तो बीरबल मुस्कुरा रहे थे। तो श्रोताओं, बीरबल जहाँ एक और बुद्धिमान थे, वहीं दूसरी ओर गरीब की तरफदारी करते थे और बादशाह की गलतियों को बताने में चूकते नहीं थे। ये उनके चरित्र की बहुत बड़ी विशेषता थी। तो हम गीत को सुनते हैं, फिर एक और कहानी की ओर बढ़ेंगे।

0: साथ हमारे श्रोता जुड़ गए हैं तो हम पहले उनको सुनते हैं, गीत तो हम बाद में भी सुन सकते हैं। हेलो
1: हेलो अलका बहन,
0: नमस्ते जी। नमस्ते, कैसी हैं बहन जी?
1: मैं बहुत ठीक हूँ
0: जी।
1: बस मैं बाहर गई हुई थी, आई तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन आपको सुनने के बाद
0: रेडियो ऑन कर दिया आपने।
1: कहानी बात कर रही है तो जल्दी जल्दी मैं 2-3 मिनट में कहानी सुनाना चाहूंगी।
0: जरूर जरूर, स्वागत
1: जो
0: है आपका।
1: कि मैं शुरू करूंगी, उसका अर्थ, उसका शीर्षक है अहंकार।
0: अच्छा,
1: और वो भगवद गीता के एक सूक्त से शुरू करूंगी।
0: जरूर सुनाइए।
1: क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, व्यग्रता से तर्क नष्ट होता है, और तर्क के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है।
0: बिल्कुल सही जी।
1: हाँ, तो अहंकार मनुष्य को परेशान परेशान भी कर देता है और उसका पतन भी करा देता है। कभी कभी तो बचपन में पड़े अहंकार के बीज बुढ़ापे तक अपने परिणाम देते रहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: पुराणों में कथा है, भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। एक बार सनकादि ऋषि विष्णु जी से मिलने बैकुंठ पहुँचे। विष्णु जी स्वयं उनसे मिलने को तत्पर रहते थे, परंतु द्वारपालों को यह घमंड था कि हम तो विष्णु जी के रक्षक हैं। बस यही से उनका अहंकार शुरू हो गया। उन्होंने सनकादि ऋषियों को प्रवेश करने से मना कर दिया। नाराज ऋषियों ने उन्हें राक्षस होने का श्राप दे दिया।
0: जी,
1: महत्व की बात यह है कि परमात्मा की इतनी निकटता होने के बाद भी आदमी का अहंकार नहीं जाता।
0: बड़ा कठिन है अहंकार को छोड़ना।
1: जी, राक्षस हो जाने का अर्थ है कुमार्ग पर जाना। अहंकार सही रास्ते से भटकाता है। इन्हीं दोनों में से जब एक अगले जन्म में दैत्यराज हिरण्यकश्यप बना, वो घोर विष्णु विरोधी था।
0: जी,
1: विष्णु विरोधी होने का अर्थ है सही व्यवस्था को अस्वीकार कर गलत नीतियों का पालन करना। इसी के घर प्रहलाद जैसा बुद्धिमान ज्ञानी और ईश्वर भक्त पुत्र हुआ, परंतु हिरण्यकश्यप के अहंकार ने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया था कि वो अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को भी मारने के लिए आतुर हो गया। प्रहलाद विष्णु भक्त थे। कथा है कि नृसिंह रूप में फिर से श्री हरि विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध किया था, क्योंकि इसे मनुष्य से न मारे जाने का वरदान था। दरअसल अहंकार का दुष्परिणाम यही होता है कि मनुष्य अपने ही सगे संबंधियों व संतान तक का विरोधी हो जाता
0: जी,
1: है।
0: बिल्कुल।
1: तो यही एक छोटा सा प्रसंग
0: है, लेकिन बहुत सुंदर प्रसंग है ये। जीवन की इतनी बड़ी शिक्षा, देखो अपने ही पुत्र का, कहां व्यक्ति बच्चों के लिए जान तक न्योछावर करता है, लेकिन जब अपने वैचारिक मतभेद हो जाते हैं तो वही पुत्र दुश्मन दिखने लग जाता है। तो ये अहंकार ही है कि दूसरे के विचार को सुनना नहीं, दूसरे के विचार को तर्क नहीं समझना, तो उससे फिर झगड़े बढ़ते हैं।
1: है ना, और भगवान ने तो भगवद गीता में बार बार इसके बारे में बहुत सारा उन्होंने उदाहरण दिया है।
0: लेकिन
1: और
0: बहुत प्यारी कहानी आपने सुनाई। बहुत धन्यवाद आपको।
1: धन्यवाद अलका बहन। बहुत
0: शुभ दिन। शुभ दिन
1: आपको और नमस्कार।
0: नमस्कार जी। तो श्रोताओं, बड़ी प्यारी कहानी बीना जी ने हमको सुनाई, और ये कहानी सबको पता है, लेकिन जितनी बार सुनते हैं ये कहानी मानो हमको शिक्षा देती है, जीवन के बारे में बताती है, और बार बार चेताती है कि देखो यदि अहंकार आ गया तो फिर बस कोई आपको नहीं, ईश्वर ही आपका कल्याण करेगा। एक बड़ी प्यारी कहानी है। आप सभी को पता है कि हम कोई खाना खा रहा हो तो हम ये पूछते हैं, आप खाना खा रहे हैं। कभी हमने सोचा नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं। बादशाह अकबर को बहुत सारे शौक थे। उन्हें शतरंज खेलना और पतंग उड़ाना बहुत पसंद था, और दूसरे देशों की कहानियाँ भी बड़ा सुना करते थे। लेकिन एक उनका और शौक था कि घोड़ों को इकट्ठा करते थे।

आप सभी को पता है मॉरिशस में तो घुड़दौड़ भी होती है, अरबी घोड़े हैं, हर देश के अलग अलग हैं और अरबी घोड़े सबसे फाइन होते हैं। तो उस ज़माने में तो लड़ाई में घोड़े बहुत चाहिए होते थे, घोड़े, हाथी, पैदल, रथ। तो बादशाह अकबर क्या सभी बादशाह तरह तरह के घोड़ों को खरीदते थे और उन्हें अपने अस्तबल में रखना पसंद करते थे। एक दिन घोड़ों का एक व्यापारी महल में आया, उसके पास बेचने के लिए बहुत सारे घोड़े थे। बादशाह अकबर ने घोड़ों को देखा और अकबर ने कहा, ये तो बड़े सुंदर घोड़े हैं, मैं सारे खरीद लूँगा, क्या तुम्हारे पास और भी हैं? व्यापारी ने कहा, नहीं महाराज, पर यदि आप मुझे कुछ धन दे दें तो मैं अफगानिस्तान जाकर कुछ और घोड़े खरीद कर ला सकता हूँ। अकबर ने घोड़ों के समूह के साथ घोड़े ले लिए और अफगानिस्तान से और घोड़े लाने के लिए 200 सोने के सिक्के उस व्यापारी को दिए। उन्होंने उसे पैसे दिए लेकिन उससे कोई प्रश्न ही नहीं पूछा, ये भी नहीं पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, ये नहीं पूछा कि अफगानिस्तान में कहाँ से आए हो, वहाँ कौन राजा है। घोड़ों के व्यापारी ने पैसे लिए और चला गया। कई दिन बीत गए पर घोड़ों का व्यापारी वापस नहीं आया। कुछ दिनों के बाद अकबर ने बीरबल से भारत में 10 सबसे बड़े मूर्खों की सूची बनाने के लिए कहा। अकबर ने सोचा, देखते हैं कौन से 10 मूर्खों का ये नाम लिख के लाता है। बीरबल ने यह सूची तुरंत बनाकर बादशाह को दे दी। जैसे ही अकबर ने सूची को पढ़ना शुरू किया, वह हैरान रह गए। क्यों? बड़े क्रोधित भी हुए। सबसे ऊपर बादशाह का नाम लिखा था, बीरबल। ये क्या है, मेरा नाम मूर्खों की सूची में सबसे ऊपर? बीरबल ने कहा, महाराज आप सबसे बड़े मूर्ख हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे सबसे बड़ा मूर्ख कह रहे हो? बीरबल ने कहा, महाराज आपने एक अजनबी को इतना ज़्यादा पैसा दे दिया, यह भी नहीं पूछा कि वह कौन है, कहाँ से आया, कब तक लौटेगा, अगर उसे पूछना हो तो कहाँ ढूंढेंगे, क्या ये मूर्खता नहीं है? अकबर ने कहा, यदि वह आदमी घोड़ों के साथ वापस आ जाएगा तो क्या होगा? महाराज यदि वह आदमी घोड़ों के साथ वापस आया तो मैं सूची में सबसे ऊपर आपका नाम हटा के उसका लिख दूंगा। अकबर को एहसास हो गया कि उन्होंने वास्तव में मूर्खता की थी। तो श्रोताओं, इस तरह की मूर्खताएं हम जीवन में करते ही हैं। बहुत बार भाव में आके, भावना में बह के हम ऐसे उल्टे सीधे निर्णय ले लेते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं।

तो श्रोताओं, इस गीत के साथ कार्यक्रम समाप्त तो हो चला, बस मेरा निवेदन ये है कि ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ अगर आपके पास आपके पोता पोती छोटे बच्चे हों तो ज़रूर उनको सुनाइए, क्योंकि ऐसी कहानियों को सुनकर पढ़कर आदमी का दिमाग तेज़ होता है। ऐसी हाजिर जवाबी, ऐसे उत्तरों को खोज लेना ये आसान काम नहीं होता है। बीरबल ने एक दिन कहा कि महाराज, ये हमारे राज्य में अंधे बहुत ज़्यादा हैं। तो महाराज ने कहा, कैसे सिद्ध करोगे? बीरबल एक पेड़ के नीचे बैठ गए और रस्सी को बटने लगे। अब जब बट जो वहाँ से गुजर रहा है, हाँ बीरबल जी क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, लिखो इसका नाम अंधे में। पांचवा व्यक्ति फिर, बीरबल जी यहाँ क्या कर रहे हो? लिखो अंधों में नाम इसका। करते करते शाम तक एक लंबी सूची बन गई श्रोताओं। तो सचमुच ऐसी कहानियाँ हमें बहुत शिक्षा देती हैं। तो श्रोताओं, बस इसी के साथ अलका धनपत को अनुमति दीजिए, नमस्कार, फिर अगली बार मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को शुभ संध्या।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: ये था सत्य दर्पण प्रोग्राम अभि रोशन का सप्रेम नमस्कार और सलाम 5:02।
2: खेल खिलाड़ी इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।
3: खेल खिलाड़ी। खेल खिलाड़ी।

प्यारे प्यारे श्रोताओं, मेरे प्यारे मित्रों, देवी और सज्जनों, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रोताओं, आपके मनपसंद चैनल AM2 रेडियो मॉरिशस और आपका पसंदीदा कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में। खेल खिलाड़ी प्रोग्राम जहां पर हम निर्धारित करते हैं एक बहुत ही हसीन सा खेल आप लोगों के लिए, प्रश्नों और जवाबों का खेल, और आप लोग जवाब देकर बनते हैं खिलाड़ी। जवाब चाहे सही हो या गलत, लेकिन आप उत्तर देने की करते हैं जुर्रत, इसीलिए आप तो बन गए हैं पक्का खिलाड़ी। खेल खिलाड़ी का जो पहला भाग है सिनेमा दिल से, जो चलेगा 5:30 बजे तक, और उसके उपरांत 6 बजे तक हम आपके लिए लाएंगे दूसरा भाग मेरा सवाल तेरा कमाल, जहां पर फुटबॉल और सामान्य ज्ञान पर प्रश्न पूछे जाएंगे। नंबर वही है 4028085। और आज का जो पहला सेगमेंट जो है सिनेमा दिल से का विषय है गीतों में बातों में कभी कभी फिल्मी शीर्षक में भी, यानी शब्द एक फिल्म अनेक, ऐसे गाने उन फिल्मों से जिन फिल्मों के नाम में एक शब्द बार बार आता है कभी। जी हाँ, कभी वो शब्द है जैसे कभी खुशी कभी गम, कभी कभी, कभी अलविदा ना कहना। तो ऐसे गाने चलाएंगे जिन की फिल्मों के नाम में ये शब्द है कभी, और आपके लिए हम प्रश्न पूछेंगे और आप जवाब दीजिएगा 4028085 पर। सभी लोगों को हम सुनेंगे, परंतु एक श्रोता को हम ऑन एयर जवाब देने का मौका भी देंगे और उनको हम उनसे हम और एक प्रश्न पूछेंगे। तो चलिए, जो पहला गाना हम आपके लिए लाए हैं आज, बड़ा ही रोमांटिक सा गाना है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज शान साहब का मेगा कॉन्सर्ट है, बहुत ही मजेदार शो होने वाला है वहां पर। तो चलिए उन्हीं की आवाज में पहला गाना हम आपके लिए बजाते हैं। वैसे तो शान का जो पहला बॉलीवुड सॉन्ग था वो परिंदा फिल्म से था, बहुत जवान थे तब वो, और उन्होंने गाया था अपनी बहन के साथ, सागरिका मुखर्जी के साथ। शान का फुल नेम तो आपको पता है शांतनु मुखर्जी, और साथ ही साथ सुरेश वाडकर और शैलेंद्र सिंह ने भी इस गाने को गाया था, बिल्कुल परिंदा फिल्म का गाना। लेकिन जिस गाने से उन्हें बहुत ही पॉपुलरिटी प्राप्त हुई, वो पहला गाना बॉलीवुड का, वो फिल्म, उस फिल्म का नाम था प्यार में कभी कभी, और इस फिल्म के शीर्षक में कभी शब्द आता है। तो प्यार में कभी कभी आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा, ये गाना तो चलेगा।

अभी शान की आवाज में, केवल आप लोग हमें बताइए कि प्यार में कभी कभी जो 1999 में रिलीज हुई थी, इसमें तीन कलाकार पहली बार के लिए नजर आए थे। जी हाँ, तीन कलाकार, एक अभिनेत्री और दो अभिनेता नजर आए थे पहली बार के लिए इस फिल्म में, और शान ने पहली बार के लिए गाया था, जिसके लिए उन्हें बहुत ही प्रसिद्धता प्राप्त हुई थी, प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। तो आप हमें बताइए उस अभिनेत्री और दो अभिनेताओं का नाम 402-808-5 पर प्लीज जवाब दें।

0: हर चीज की होती है पहली बार, ठीक वैसे ही होता है पहला पहला प्यार। हमने आपसे सवाल किया था कि इस फिल्म में प्यार में कभी कभी जिसमें शब्द कभी आता है, तो इस फिल्म में पहली बार के लिए तीन कलाकार नजर आए थे और वे कौन थे। और सही जवाब तीन लोगों ने दिया है, चार लोगों ने, श्यामा जी विल्मे से, इंद्रानी जी लिस्कालिए से, अनीता जी मोदालबिया से और इंदिरा जी मेबर्ग से। और इंदिरा जी अभी लाइन पर उपस्थित हैं, हम उनको सुनना चाहेंगे। हेलो जी।
1: हेलो, नमस्ते रोशन जी।
0: नमस्ते, कैसी हैं आप इंदिरा जी? ठीक
1: ठीक हूँ। हाँ, आप कैसे हो?
0: हम भी ठीक हैं इंदिरा जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो हमें बताइए कि प्यार में कभी कभी इसमें तीन जो नए कलाकार थे वे कौन थे, बताइए हमें।
1: वो है डीनो मोरिया, संजय सूरी, संजय सूरी और रिंकल खन्ना, रिंकी खन्ना।
0: बिल्कुल, रिंकी खन्ना, डीनो मोरिया और संजय सूरी, उनकी फिल्मी शुरुआत हुई थी इसी फिल्म के साथ। और आपका जो जवाब है एकदम एकदम सही है इंदिरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहा आपका पहला प्रश्न जिससे आपको मिलते हैं 50 अंक। तो इसके बाद एक अन्य प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, अभी पूछा जाएगा। तो आप हमें बताइए, आपने कहा रिंकी खन्ना, ओके, जो रिंकी खन्ना है वो किस हीरो या किस हीरोइन की सुपुत्री है, बताइए हमें। रिंकी खन्ना जो है वो किस अभिनेता या किस अभिनेत्री की पुत्री है, आपको पता है?
1: राजेश खन्ना।
0: राजेश खन्ना और डिंपल कपाडिया, क्या बात है। बिल्कुल, और उसकी बड़ी बहन का नाम ट्विंकल खन्ना है।
1: दो बहनें हैं
0: और आप बनती हैं फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ द वीक।
1: थैंक यू,
0: धन्यवाद। ओके, बाय बाय।
1: ओके, बाय बाय। शुभ संध्या।
0: शुभ संध्या आपको।

0: जलियन दीरा जी ने दो सही जवाब दिए हैं और उनको बधाई हो बधाई। दूसरा गाना हम चलाएंगे उस फिल्म से जिस फिल्म में ये शब्द फिर से आता है कभी। ये गाना सुनिए और हमें बताइए कि ये गाना किस फिल्म से लिया गया है। 4028085 4028085 पर प्लीज आप लोग बड़े प्यार से जवाब दें।
1: On the hour, every hour, Radio Marches.

0: होठों पे बसा है गीत, मन में बसा है मीत, क्या कहूँ मेरे यार, ऐसी होती है सच्ची प्रीत। हमने सवाल किया था कि लता जी की मधुर आवाज में अभी आपने एक बहुत ही सुंदर सा गाना सुना, और हमने जानना चाहा आपसे कि ये किस फिल्म से लिया गया है, और बहुत से लोगों ने सही जवाब दिया। मसलन आशा जी कोटेज से, अनीता जी मौदालबिया से, देवी जी हाईलैंड से, शोभा जी बाकवा से, और जीवंती जी विदेया से, और श्यामा जी विलमे से, और अभी श्यामा जी ऑन एयर हैं आप लोगों को सुनाने के लिए कि कौन सा सही जवाब है। हेलो
1: हेलो, नमस्ते रोशन जी।
0: नमस्ते श्यामा जी, एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं रेडियो मॉरिशस की लहरों पर।
1: हाँ, तो मेरा जवाब है कभी अजनबी थे।
0: लेकिन आप तो अजनबी नहीं है।
1: नहीं।
0: लेकिन आपका जो जवाब है,
1: परिवार की तरह है।
0: बिल्कुल, परिवार की तरह है, हम रेडियो मॉरिशस परिवार है। और आपका जवाब एकदम ठीक निकला। हाँ जी, धन्यवाद।
1: उसमें है देवाश्री रॉय, और पूनम ढिल्लों, और संदीप पातेल।
0: बिल्कुल, क्या बात है, हमने तो ये नहीं पूछा था आपसे। लेकिन आपने फिल्म की पूरा इतिहास बता दिया। और कोई बात नहीं, ये तो रहा पहला प्रश्न आपकी ओर से, है ना। अब और एक प्रश्न होगा आपके लिए। ओके, आपने ये फिल्म देखी है श्यामा जी? कोई बात नहीं, अगर देखी होंगी तो इस फिल्म में और एक गाना है जो शीर्षक गाना है, टाइटल सॉन्ग।
1: कभी अजनबी थे जमीन आसमान
0: हुए।

0: मेहरबान हुए मेहरबान कभी अजनबी थे।
1: बिल्कुल जमीन आसमान ये, और आपने सही जवाब दिया। 100 अंक पाकर आप बन गए हैं सेकंड सुपरस्टार ऑफ द वीक, और लगे हाथ हम आपको विश कर देते हैं क्योंकि आज है आपका जन्मदिवस, है ना?
0: थैंक यू। हाँ
1: तो हैप्पी
0: धन्यवाद।
1: बर्थडे
0: थैंक
1: आपको, और रेडियो मॉरिशस की पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं, और ईश्वर आपकी सदैव रक्षा करें।
0: अभी हम रेस्तरां जा रहे
1: अरे वाह, क्या बात है, वहाँ
0: हैं।
1: पर जाइए और अपनों के साथ बहुत
0: हाँ
1: सुहाना सफ़र, और आप सुहाना पल काटिएगा।
0: हाँ
1: ओके,
0: हाँ ओके
1: धन्यवाद आपको,
0: बाय
1: बाय
0: बाय।
1: बाय। श्यामा जी ने दोनों जवाब सही सही दिए। अगर आप लोग भी इस मजेदार खेल में भाग लेना चाहते हैं तो नंबर वही है 4028085 402-80-85। चलिए, तीसरा गाना चलाने का समय आ गया है, और अगला फिल्म जो है, अगली फिल्म, उस फिल्म में ये शब्द फिर से आता है, कभी, और दो दो बार आता है, कभी हाँ कभी ना। जी, सुनील अन्ना और क्रिस की ट्रायंगुलर लव स्टोरी, और जतिन ललित के संगीत की जोड़ी। क्या फिल्म थी कभी हाँ कभी ना। शाहरुख खान, सुचित्र कृष्णमूर्ति और दीपक तिजोरी थे इस फिल्म में। और एक प्रश्न आपके लिए तैयार किया गया है, और वो है कि स्पेशल अपीयरेंस के रूप में अंत में कौन सी अभिनेत्री नजर आती है। हाँ जी, शाहरुख खान सुचित्र कृष्णमूर्ति को बेहद चाहते हैं बचपन से ही, लेकिन सुचित्र कृष्णमूर्ति जो है वो दीपक तिजोरी को अपना दिल दे देती है, और उसी से शादी हो जाती है, और शाहरुख खान उन दोनों को मिलाता है बाद में, और वो फुटपाथ में बैठ जाता है अंत के फिल्म के अंत में। और फिल्म के अंत में वो कौन आ जाती है, वो हीरोइन स्पेशल अपीयरेंस के रूप में, और वो रास्ता ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ जाती है और शाहरुख खान से पूछती है, तो वो हीरोइन कौन है हमें बताइए। 4028085 402-80-85 पर प्लीज आप जवाब दें, और अभी के लिए ये गाना फिल्म कभी हाँ कभी ना से।

0: अमित कुमार और उदित नारायण की आवाजों में दीवाना दिल तेरा दीवाना फिल्म कभी हाँ कभी ना। और हमने सवाल किया था कि अंत में कौन सी अभिनेत्री एंट्री मारती है, शाहरुख खान से पूछती है एक सवाल कि मुझे ये रास्ता बताओ, स्पेशल अपीयरेंस में कौन नजर आती है, और सही जवाब दिया एक बार फिर कौन, इंदिरा जी मौदालबिया से, आफेज जी लाविनिया से, फुलवंती जी वाकवा से, मीरा जी मोताय ब्लाउंश से और आशा जी कॉटेज से। और आशा जी अभी विराजमान हैं आप लोगों को बताने के लिए कि कौन सी अभिनेत्री नजर आई थी। हेलो आशा जी।
1: हेलो, नमस्ते रोशन जी।
0: नमस्ते आशा जी, एज यूजुअल यू आर हियर।
1: आपका शो हो और मैं ना आऊं तो थोड़ा खाली खाली लगता है।
0: खालीपन मुझे भी लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ पर क्वीज होता है प्रश्नोत्तर, वहाँ पर आशा जी आ ही जाती हैं आशा बढ़ाने के लिए। बताइए आशा जी, सभी लोगों को बताइए ऊंची आवाज में कि कौन सा जवाब होगा आपकी ओर से।
1: और वो एक्ट्रेस है जूही चावला।
0: जूही चावला, क्या बात है, और आपने सही सही जवाब दिया। लेकिन अभी मामला खत्म नहीं होता,
1: अब होगा गर्मा गर्म
0: मुकाबला। दूसरा प्रश्न आपके साथ, लेकिन इतना ज्यादा कठिन नहीं है। आशा जी, आप हमें बताइए कि शाहरुख खान और जूही चावला आपने कहा, तो उन दोनों पर एक और फिल्म आप बताएं तो आपकी जीत हो जाएगी।
1: राजू बन गया जेंटलमैन।
0: अरे वाह, क्या बात है, और जानती है?
1: राम जाने है, भूतनाथ है।
0: क्या बात है, राम जाने, भूतनाथ और डर है।
1: डर है,
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और आपको कहेंगे एक बार फिर बहुत ही बधाई, और आप भी बनती है सुपरस्टार ऑफ द वीक। धन्यवाद आपको, बाय। शुभ संध्या आपको भी। ये थी आशा जी फ्रॉम कॉटेज, और वो भी बन गई सुपरस्टार ऑफ द वीक। 5:30 हो गए हैं, इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और एक फिल्म का गाना हम चलाएंगे, और उस फिल्म का नाम है कभी ना कभी। इसमें भी ये शब्द आता है कभी ना कभी, और इसमें नजर आए थे अनिल कपूर साहब, साथ ही साथ पूजा भट्ट, जैकी श्रॉफ और परेश रावल। प्लीज आप लोग 4020

आत्माश पर बड़े प्रेम से जवाब दें कि इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं कौन, कौन है संगीतकार इस फिल्म के 402-808-5-92-85 और इस फिल्म का ये गाना क्यों न चलाएं, बताएं हमें आप।

0: नई नई उम्मीदें, नए नए प्रश्न, नया नया जवाब। और हमने सवाल किया था कि कभी ना कभी फिल्म से ये गाना आपने सुन रहे थे आप कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। आपको बताना था कि इसके म्यूजिक डायरेक्टर कौन हैं। चलिए हम इस श्रोता से मिलते हैं। हेलो।
1: हेलो, नमस्ते रोशन जी।
0: शोभा जी, आपका हम पुनः स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। कैसी हैं आप?
1: धन्यवाद आपको। मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हो?
0: हम भी ठीक हैं शोभा जी। तो बताइए हमें कि जवाब क्या हो सकते हैं आपकी ओर से।
1: तो मेरा जवाब है ए और रहमान।
0: ए और रहमान, क्या जवाब दिया आपने, वाह एकदम सही जवाब शोभा जी ने दिया। और दूसरा प्रश्न आपके लिए, और इस फिल्म में नजर आए थे अनिल कपूर साहब और जैकी श्रॉफ, है ना?
1: जी हाँ।
0: तो चलिए हमें बताइए कि इस साल में दिसंबर महीने के जो 24 दिसंबर महीने का की जो तारीख है, इसमें एक और फिल्म रिलीज हो रही है जिसमें अनिल कपूर साहब और जैकी श्रॉफ नज़र आ रहे हैं, और उस फिल्म में शाहरुख खान भी हैं। शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन और उसकी सुपुत्री सुहाना खान भी हैं। सुहाना खान, शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, फिल्म का नाम क्या है बताइए हमें, याद आया आपको?
1: नहीं।
0: फिल्म का नाम के से शुरू होता है, और मैं आपको हिंदी शब्द बता देता हूँ, राजा।

इंग्लिश में क्या होता है? राजा का इंग्लिश शब्द क्या है? के से शुरू, किंग। बिल्कुल, किंग ही सही जवाब है। शोभा जी, आप भी बन

0: वन स्टारर किंग, जिसमें उसकी सुपुत्री पहली बार के लिए उनके साथ काम कर रही हैं, और सुहाना खान और विलेन के रूप में, और बहुत ही टफ रोल में नजर आने वाले हैं अभिषेक बच्चन, और साथ ही साथ अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ भी उस फिल्म में होंगे। बड़ा ही मज़ेदार परफॉर्मेंस होने वाला है, तो आप इस फिल्म का इंतज़ार कीजिए। और अभी 5:37 हो गए हैं।
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
2: खेल खिलाड़ी। खेल खिलाड़ी। खिलाड़ी
0: प्यारे प्यारे श्रोताओं, स्पोर्ट्स लवर्स और संगीत प्रेमियों, एक बार फिर आप लोगों का हम यहां पर शानदार स्वागत करते हैं AM2 रेडियो मॉरिशस की लहरों पर। खेल खिलाड़ी प्रोग्राम का दूसरा भाग, मेरा सवाल तेरा कमाल, जहां पर फुटबॉल, स्पोर्ट्स और जनरल नॉलेज पर आपसे हम करेंगे प्रश्न। चलिए हम शुरुआत करते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग के साथ, और इंग्लिश प्रीमियर लीग में कल मुकाबला हुआ इप्सविच टाउन, जो न्यूली प्रमोटेड टीम है, उसका मुकाबला हुआ लिवरपूल के साथ, और होम मैदान में होते हुए भी इप्सविच टाउन की हार हो गई लिवरपूल के खिलाफ। लिवरपूल ने अपनी पहली जीत दर्ज की इराउला के निगरानी में, और दोनों गोल आए अलेक्जेंडर इसक की ओर से 6th minute और 9th minute। और इसके साथ लिवरपूल 5th स्थान पर छलांग मारकर आ गई है, लेकिन एक मैच उन्होंने ज्यादा खेला है। इप्सविच टाउन का जो गत मैच था वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ था, 5-2 से हार गई, और कल वो फिर से हार गई लिवरपूल के खिलाफ, लेकिन पहली मैच में उसकी जीत हुई थी संडरलैंड के खिलाफ। और अभी जो अर्ली किक ऑफ हुआ न्यूकासल और बोर्नमुथ के बीच में, और स्कोर बराबर ड्रॉ का रहा, 2-2 न्यूकासल 2 और बोर्नमुथ 2। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे पहले प्रश्न की ओर, और इंग्लिश प्रीमियर लीग टेबल में हम देखना चाहेंगे कि कौन है पहले स्थान पर। तो आपको बता दें हम कि पहले स्थान पर है मैनचेस्टर सिटी विद 6 points, दूसरे स्थान पर आर्सेनल 6 points, लेकिन गोल एवरेज भी उन दोनों का बराबर है, लेकिन सिटी ने ज्यादा गोल स्कोर किया है, तो ऐसे में सिटी ऑन द फर्स्ट प्लेस, आर्सेनल सेकंड प्लेस। तीसरे स्थान पर हल सिटी, चौथे स्थान पर चेल्सी और 5th स्थान पर लिवरपूल, लेकिन लिवरपूल ने एक मैच ज्यादा खेला है। कल का जो धमाकेदार मुकाबला होने वाला है बिटवीन आर्सेनल एंड चेल्सी। टॉप स्कोरर के रूप में अलेक्जेंडर आइसक, जो लिवरपूल का खिलाड़ी है, एक्स न्यूकासल खिलाड़ी, 3 goals के साथ पहले स्थान पर। वहीं पर ब्रूनो फर्नांडेज, वो भी मैनचेस्टर यूनाइटेड का खिलाड़ी, वो भी 3 goals के साथ पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर एंटोनी एलांगा भी है, जो न्यूकासल का खिलाड़ी है, वो आज गोल डाल देता तो 3 goals के साथ वो भी पहले स्थान पर होता।

इस बार पहली बार के लिए एक जापानीज गोलकीपर प्रीमियर लीग में खेल रहा है और उसका नाम आपको पता है ज़ियोन सुजुकी। वो एक जापानीज खिलाड़ी है। वो पहली पहली बार ऐसा हुआ है कि एक जापानीज गोलकीपर प्रीमियर लीग में अपना प्रदर्शन कर रहा है। तो 4028085 पर हमें प्लीज आप लोग जवाब दें कि ज़ियोन सुजुकी जो गोलकीपर हैं, जापानीज गोलकीपर, वो प्रीमियर लीग के किस टीम में अभी खेल रहा है। अभी अभी उन्होंने आर्सेनल के खिलाफ खेला और हमने आपको एक बहुत अच्छा खासा हिंट तो दे दिया। 4028085 पर प्लीज हमें बताइए कि वो कौन सी टीम है।

जिसमें जियन सुजुकी खेल रहा है अभी प्रीमियर लीग में। और सभी गाने हम चलाएंगे अभी शान के गाने होंगे, क्योंकि वो आज उसका मेगा कॉन्सर्ट है।

जी हमने सवाल किया था कि जियन सुजुकी जो है जापानीज गोलकीपर, पहली बार के लिए गोलकीपर, जापानीज गोलकीपर प्रीमियर लीग में खेल रहा है, तो वो किस टीम का गोलकीपर है? और सही जवाब दिया दिला भाई फ्रॉम मौलाशो। सही जवाब है एस्टन विला, और उन्होंने अपनी पहली मैच में क्या प्रदर्शन किया आर्सेनल द करंट चैंपियंस के खिलाफ 1-0 से, लेकिन एस्टन विला की हार हो गई थी। चलिए दूसरा प्रश्न जल्दी जल्दी। हमने कहा जापानीज गोलकीपर, तो वो वर्ल्ड कप में जियोन सुजुकी ने खेला था, लेकिन राउंड ऑफ 32 में जापान हार गई थी किस टीम के खिलाफ और वो एलिमिनेट हो गई थी? यानी वर्ल्ड कप 2026 के दौरान किस टीम ने जापान को हरा दिया था और जापान वर्ल्ड कप से आउट हो गया था? 4028085 4025 4025 पर प्लीज आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दें।

दस बहाने करके ले गए दिल, लेकिन यहाँ पर बहाना नहीं चलेगा, यहाँ पर तो सफर सुहाना है, प्रश्नों जवाबों का सफर। और हमने सवाल किया था कि जापान जो वर्ल्ड कप में उन्होंने अपना बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था, बदकिस्मती से उनकी हार हो गई थी राउंड और 32 में, और नॉकआउट राउंड था तो वो बाहर हो गई वर्ल्ड कप से। लेकिन किस टीम ने उनको हरा दिया था 2-1 के स्कोर से, जिस टीम ने हराया था वो था ब्राज़ील। ब्राज़ील ने 2-1 के स्कोर से जापान को हरा दिया था। हालांकि जापान ने सबसे पहला गोल स्कोर किया था, लेकिन क्या करें, ब्राज़ील ने उन्हें हरा दिया। और सही जवाब दिया लिस्कैलिए से अली जनाब ने। चलिए, आज जो है अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। 5 सितंबर है आज, और ये जो 5 सितंबर है, यूनाइटेड नेशंस ने इस दिन को घोषित किया था अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस। क्यों? क्योंकि मदर टेरेसा जो है उनका निधन इसी दिन को हुआ था 1997 में, और मदर टेरेसा जो है उनका जन्म 1910 में हुआ था, और वो उनका असली नाम था अग्नेस गोंचा पोशाक्सू। और 1979 में उनको नोबेल पीस प्राइज से पुरस्कृत किया गया था। और हमारी संस्कृति में तो दान का बड़ा ही महत्व है, दान तो सबसे बड़ा धर्म है, और आप अगर किसी की सहायता करते हैं तो ये उनकी जिंदगी बदल सकती है। दान केवल पैसे रुपए नहीं, बल्कि अपना समय का दान कीजिए, और रक्त का दान भी कर सकते हैं, और ज्ञान का दान भी कर सकते हैं, किसी रूप में भी। तो आप हमें बताइए कि जो मदर टेरेसा है वो किस देश में उसका जन्म हुआ था, मदर टेरेसा जो है वो उसका जन्म किस देश में हुआ था। 4028085 4028085 पर प्लीज आप लोग जवाब दें।

जिस शहर में उसका जन्म हुआ था वो है स्कोपिये, यानी नॉर्थ मैसेडोनिया, वो देश का नाम है और उसका उसकी राजधानी का नाम स्कोपिये है। और नॉर्थ मैसेडोनिया पहले ये ऑटोमन एम्पायर यानी उस्मानी सल्तनत का एक भाग था। और सही जवाब है नॉर्थ मैसेडोनिया। और सही जवाब दिया नीला जी वाकवा से, हरीश भाई बुबासन से, सुरेखा जी मेनिल से, और दिला भाई मौलाशो से, और इंद्रानी जी लिस्कालिये से। चलिए, जब हम नॉर्थ मैसेडोनिया हमने कहा तो नॉर्थ मैसेडोनिया जो है वो ग्रीस के नॉर्थ में पाया जाता है, और ये जो मैसेडोनिया है ये ग्रीस के साथ एक अनबन हो गया था, और 2019 से मैसेडोनिया नॉर्थ मैसेडोनिया बन गया। पहले ये मैसेडोनिया के नाम से जाना जाता था ये देश, लेकिन ग्रीस के कारण, क्योंकि ग्रीस में एक स्टेट का नाम भी मैसेडोनिया है, तो उस देश का नाम नॉर्थ मैसेडोनिया रखना पड़ा। तो आप हमें जल्दी जल्दी बताइए कि ग्रीस जो है उसकी राजधानी का नाम क्या है। बड़ा ही आसान सा प्रश्न, ग्रीस की राजधानी का क्या नाम है? 4-0-2-8-0-8-5 पर प्लीज आप लोग सही सही जवाब दें।

जी हाँ, कभी कभी दिल निकम्मा कर देता है, कभी दिल बदमाश हो जाता है, कभी दिल पागल हो जाता है। क्या करें, ये फिल्मी नाम। हमने जानना चाहा आपसे कि ग्रीस की जो राजधानी का नाम क्या है, और सही जवाब है एथेंस। और फटाफट जवाब दिया दिला जी मौलाशो से, उमा जी रोजबेल से और नालिनी जी कटबोन से। और इसी के साथ समाप्त होता है आज का खेल खिलाड़ी प्रोग्राम। बहुत से लोगों ने भाग लिया, आपको कहेंगे दिल से बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात हम फिर से करेंगे इसके बाद। जिन लोगों की लाइन नहीं लगी, हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, अगली बार आप अवश्य कोशिश करें। और जाते जाते आपसे हम यही कहेंगे कि यू डोंट हैव टू बी द बेस्ट, आपको सबसे उत्तम होना आवश्यक नहीं, बस आप कल से ज्यादा आज अपने आप को बेहतर करें। इसीलिए कहते रहते हैं कि आप करते रहें मेहनत, बनाते रहें अच्छी आदत, खेल खिलाड़ी हुआ संपन्न। शुभ रात्रि कह रहा है आपको रोशन। चलिए, इसी के साथ हम आपसे अनुमति चाहेंगे, एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। आप वादा कीजिए कि हमेशा करेंगे आप व्यायाम, अपने आप को आप रखेंगे स्वस्थ और सुखी और सुरक्षित, और हमेशा आप खुश रहें और लोगों को भी खुश रखें। और जो गाना हम आपके

चलाएंगे हम आपके लिए, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, सचमुच आपका प्यार देखकर मैं तो नतमस्तक हूँ। नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि।

0: खेल खिलाड़ी वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेकोर द फ्लो एक्सपर्ट।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सदियों से अटलास में अफ्रीका का छोटा आकार दिखाया जाता रहा है, जिसे सुधारने के लिए संयुक्त राष्ट्र की महासभा में एक प्रस्ताव अपनाया गया है। नवंबर में ग्रेड 8 के 200 विद्यार्थी नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन यानी नीस के नए संस्करण में हिस्सा लेंगे। इस पहल की घोषणा प्रधानमंत्री ने नए साल के संबोधन में की थी। कप 31 के लिए राजीव गांधी साइंस सेंटर में यूथ लीडरशिप काउंसिल, यूनाइटेड नेशन और ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर के सहयोग से युवा पत्र पर चर्चा की जा रही है। विदेश में नेपाल में भयानक बाढ़ और भूस्खलन के बाद यूनिसेफ और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा मानवीय सहायता और राहत अभियान तेज कर दिए गए हैं। और अब समाचार विस्तार से। सदियों से स्कूलों और अटलस में हावी होने वाली दुनिया के नक्शे ने अफ्रीका की छवि उतनी बड़ी नहीं दिखाई है जितनी वो वास्तव में है। कल शुक्रवार 4 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र में देशों के एक भारी बहुमत ने इस विकृति को सुधारने के उद्देश्य से एक अफ्रीकी पहल का समर्थन किया। महासभा ने महाद्वीपों के वास्तविक आकार के प्रति अधिक सटीक वैश्विक मानचित्र प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए

0: एक प्रस्ताव अपनाया। ये पहल टोगो द्वारा लाई गई थी और इसे अफ्रीकन यूनियन का समर्थन प्राप्त है। ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में।
1: संयुक्त राष्ट्र ने एक रेजोल्यूशन के जरिए ऐसे नक्शों को बढ़ावा देने की हिमायत की है जो दुनिया के महाद्वीपों का असल क्षेत्रफल ज्यादा सही तरीके से दिखाते हैं। इस अभियान में अफ्रीका का अहम किरदार रहा है। पुराना मर्केटर मैप 16वीं सदी में बनाया गया था जो दिशा निर्धारित करने के लिए बहुत फायदेमंद था, लेकिन इसमें दुनिया के कुछ इलाके खासकर नॉर्थ और साउथ पोल के करीब के मुल्क अपने असल क्षेत्रफल से काफी बड़े नजर आते हैं। इसी वजह से अफ्रीका जैसे महाद्वीप का क्षेत्रफल अक्सर हकीकत से छोटा महसूस होता है। इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन इस मसले को दूर करने की कोशिश करता है। इस मैप में महाद्वीपों के क्षेत्रों को उनके असल क्षेत्रफल के ज्यादा करीब दिखाया जाता है। मिसाल के तौर पर अफ्रीका की बहुत बड़ी हकीकी साइज ज्यादा वाजे नजर आती है। संयुक्त राष्ट्र में 154 मुल्कों ने मसौदे के पक्ष में वोट डाला जबकि एक देश ने इस फैसले के खिलाफ मत दिया। 6 देशों ने एब्स्टेन किया है। टोगो ने इस चुनाव का संचालन किया। टोगो के विदेश मंत्री बताते हैं ये मसौदा अपनाना अफ्रीका और दुनिया के लिए ऐतिहासिक है। इससे इस बात की पुष्टि है कि स्पष्ट और बराबर प्रतिनिधित्व कितना जरूरी है। एक नक्शा एक तकनीकी औजार है लेकिन ये महाद्वीपों और जनताओं के स्थानों के लिए एक अहम बात है। ये रेजोल्यूशन सरकारों, स्कूलों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और टेक्नोलॉजी कंपनियों को हिम्मत देता है कि जब महाद्वीपों के क्षेत्रफल का मुकाबला करना हो तो इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन और दूसरे इक्वल एरिया नक्शे का इस्तेमाल करें।
0: नवंबर में ग्रेड 8 के 200 विद्यार्थी नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन यानी नीस के नए संस्करण में हिस्सा लेंगे। लगभग 2 हफ्ते तक वे एक ऐसे कार्यक्रम का पालन करेंगे जिसमें नागरिक शिक्षा, चरित्र निर्माण, आपात स्थिति के लिए तैयारी और सामुदायिक मित्रता शामिल है। इस परियोजना की घोषणा प्रधानमंत्री ने नए साल पर जनता को अपने संबोधन के दौरान की थी। ये पहल 2012 में आयोजित पहली एडिशन के 14 साल बाद वापस आ रही है।
2: ये तस्वीरें साल 2012 की हैं। उस समय कुछ स्कूली छात्र नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन में हिस्सा ले रहे थे। इस कार्यक्रम का मकसद युवाओं को नागरिक मूल्यों, एक दूसरे की मदद और मॉरिशनवाद के प्रति जागरूक करना था, साथ ही उनमें अनुशासन, जिम्मेदारी और समाज के प्रति भागीदारी की भावना विकसित करना भी इसका उद्देश्य था। लेकिन इस पहली पहल के बाद ये कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ सका। चौदह साल बाद सरकार ने अब इस कार्यक्रम को दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। इस बार देश भर से ग्रेड 8 के 200 छात्रों का चयन किया जाएगा। ये नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन का एक पायलट प्रोजेक्ट होगा। इन छात्रों का चयन सरकारी अनुदान प्राप्त और निजी कॉलेजों से किया जाएगा। इनमें रोड्रिक्स और अगालिगा के छात्र भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में 100 लड़कियां और 100 लड़के होंगे। पहले सप्ताह में छात्र अपने अपने एजुकेशन जोन में स्थित प्रशिक्षण केंद्र में गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। दूसरे सप्ताह में रेजिडेंशियल प्रोग्राम होगा। छात्रों को पेंचेहोम यूथ सेंटर और नेशनल कोस्ट गार्ड ट्रेनिंग सेंटर में रखा जाएगा। इस नए कार्यक्रम के कई प्रमुख हिस्से होंगे। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिसमें मॉरिशस का इतिहास, संविधान और देश की सांस्कृतिक विविधता तथा साझा विरासत के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके बाद चरित्र निर्माण पर ध्यान दिया जाएगा जिसमें अनुशासन, ईमानदारी और विवादों को संभालने जैसे विषय शामिल होंगे। कार्यक्रम में समुदाय के प्रति भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत नागरिक संवाद, सामाजिक समावेश और किसी सहयोगी संस्था के साथ मिलकर एक सामुदायिक परियोजना करने का मौका छात्रों को मिलेगा। इस कार्यक्रम के शैक्षणिक ढांचे को तैयार करने की जिम्मेदारी मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन को दी गई है।
0: युवा पत्र जो तैयार किया जा रहा है यानी कप

0: igatis ki li va un ka veçare gjo na usibis. November të kantalja Turki me ajë gjithë hogin, vishë e operdodin të Krajiv Gandhi Science Center mi për javërin mençalej, Youth Leadership Council or United Nations të ta Australian High Commissioner kise jogë si qërqa ki gjarëhi he, Biomimetics yani Prakriti Separate Engineering kisano ki li e krishi kalender or Prakriti Sanjakshan si gjure kanuno ki shiksha bachpan si hidena is tayar ki jarahi teks me pesh ki gai tarku ka hissa hai. रविवार को साबलनुआ के स्थानीय निवासियों और विदेशी श्रमिकों के बीच झड़पें हुई। इस घटना की विशेष परिस्थितियों से परे एक सवाल ये उठता है कि मॉरिशस के लोग बाहर से आए इन श्रमिकों को किस रूप में देखते हैं और सबसे बढ़कर ये श्रमिक खुद पर डाली जाने वाली इस नज़र को कैसे महसूस करते हैं, उनके रहने की स्थिति कैसी है। हमने इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है।
1: जुडिकायल मादागास्कर के रहने वाले हैं। उन्हें मॉरिशस में डिलीवरी का काम करते हुए 3 महीने हो चुके हैं। मादागास्कर आई एक कंपनी के जरिए यहां आया हूं। हम सैंपल में रहते हैं। कुल मिलाकर 15 लोग हैं। यहां सभी लोग अच्छे हैं। सुपरमार्केट में कुछ कैशियर भी मादागास्कर से हैं। वे कैमरे के सामने बात नहीं करना चाहती। कुछ जगहों पर ग्राहक उनके धीरे काम करने, कभी कभी मुस्कुराकर बात न करने या भाषा की समस्या को लेकर शिकायत करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये एक जरूरत है। यहाँ वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ रही है। कुछ लोग यहाँ रहने की आदत आसानी से डाल लेते हैं। सुपरमार्केट से बाहर निकलते समय हमारी मुलाकात नाइजीरिया के रहने वाले फोंकने से होती है। 28 साल की उम्र में वे पिछले 6 साल से वेटर का काम कर रहे हैं। कई मॉरिशियनों से मिलता हूं, ज्यादातर अच्छे हैं। मुझे मॉरिशस बहुत पसंद है। मेरे लिए ये स्वर्ग है। थोड़ा आगे हमारी मुलाकात वैभव से होती है। दुकान के मैनेजर, जो हमारी भाषा अच्छी तरह जानते हैं, बताते हैं कि कभी कभी उन्हें लोगों की कड़ी बातें भी सुननी पड़ती हैं। लेकिन नई दिल्ली के रहने वाले वैभव का कहना है कि वे मॉरिशस के समाज में अच्छी तरह से घुल मिल गए हैं। जिस तरह उंगलियां एक जैसी नहीं होती, कभी कभी कुछ परिस्थितियां परेशान कर देने वाली होती हैं, लेकिन ज्यादातर समय सब कुछ ठीक होता है। मॉरिशस में काम करना आसान है। कर्मचारियों में दीपाली भी हैं, जो मॉरिशस में पिछले 1.5 महीने से काम कर रही हैं।
2: कि मुझे यहाँ का कल्चर काफ़ी अच्छा लगता है, वेदर बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली यहाँ के लोग। तो मुझे यहाँ पे कभी ऐसा फील नहीं हुआ है कि मैं इंडिया छोड़ के आई हूँ।
1: वहीं अमृता भी विदेशी कामगारों की सेवाओं से संतुष्ट है। कुछ दुकानों में अच्छे से स्वागत नहीं होता, चेहरे में मुस्कुराहट नहीं होती, लेकिन यहाँ अच्छा स्वागत किया गया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मॉरिशस में 50,000 से ज्यादा विदेशी कामगार हैं। उनके पास काम करने का परमिट या सर्टिफिकेट ऑफ एग्जेम्पशन है। इनकी बढ़ती संख्या से कुछ मॉरिशनों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। उन लोगों की संस्कृति मॉरिशस की संस्कृति से अलग है। हम लोगों की मदद करते हैं, लेकिन उन लोगों की ऐसी मानसिकता नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे देशों से यहाँ आए लोगों को मूर्ख समझकर उनका फायदा उठाया जाए। ट्रेड यूनियन के नेताओं का ये कहना है। वे विदेशी कामगारों के आने के साथ उनसे जुड़ी समस्याओं को भी सामने आते देख रहे हैं। तो क्या समाज में विदेशी लोगों के प्रति भेदभाव की भावना की शुरुआत हो रही है, या ज़ेनोफोबिया यानी विदेशी लोगों के प्रति नफरत कहना कुछ ज्यादा होगा? हमें इन लोगों की बहुत जरूरत है, लेकिन उनको क्या सुरक्षा देते हैं, उनकी मदद कैसे करते हैं? यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने पर इंडक्शन होता है, लेकिन क्या नौकरी शुरू करने से पहले इन लोगों को 1 सप्ताह के लिए मॉरिशस की संस्कृतियों के बारे में समझाया जाता है? उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, कहां जा सकते हैं, कहां नहीं, इन सब के बारे में उन्हें नहीं बताते। हमारी और सरकार के बीच बैठक के जरिए समाधान ढूंढना चाहिए। पहले जहां विदेशी कामगार ज्यादातर निर्माण और कपड़ा उद्योग तक सीमित थे, वहीं अब वे कई अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, और अब हमें इसके साथ तालमेल बिठाना होगा, क्योंकि आने वाले वर्षों में उनकी संख्या और बढ़ने की उम्मीद है।
0: मॉरिशस में कुछ पुराने रेलवे स्टेशन हमारे इतिहास के एक हिस्से को जीवित रखे हुए है।

0: को पोस्ट ऑफिस में बदल दिया गया है और वे आज भी यादों के स्थान बने हुए हैं, लेकिन साथ ही ऐसे भवन भी है जिन्हें रखरखाव और संरक्षण की आवश्यकता है। मॉरिशस और फ्रांसीसी गणराज्य के बीच सहयोग, जिसकी घोषणा कैबिनेट ने अगस्त में की थी, का उद्देश्य विशेष रूप से मॉरिशस की वास्तुकला विरासत के संरक्षण और संवर्धन को मजबूत करना है, जिसमें इन स्थलों के पुनर्वास और प्रबंधन के लिए एक पब्लिक प्राइवेट संरचना स्थापित करने की संभावना भी शामिल है। कल रात हिंदू समुदाय ने भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया। पूरे टापू पर भक्त इस आध्यात्मिक आयोजन को प्रार्थनाओं, पारंपरिक नृत्य और भक्ति के साथ मनाने के लिए मंदिरों में इकट्ठे हुए। कृष्ण भगवान अभी भी बुजुर्गों और युवाओं दोनों के दिलों और दिमागों में एक विशेष स्थान बनाए हुए हैं। विदेश में नेपाल में भयानक बाढ़ और भूस्खलन के बाद मानवीय सहायता तेज की जा रही है, जिन्होंने देश के कई क्षेत्रों को प्रभावित किया है। हजारों लोग बेघर और प्रभावित हुए हैं। सबसे जरूरी जरूरतों को पूरा करने के लिए यूनिसेफ और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अपने अभियानों को मजबूत कर रहे हैं। देश की खबरों के बाद आइए अब मौसम का हाल सुनते हैं याशना मिश्रा के साथ।
1: हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात आसमान साफ रहेगा, कल सुबह पूर्वी इलाकों और ऊंचाइयों पर, जबकि दोपहर बाद पश्चिमी इलाकों पर बादल घिरा सकते हैं और हल्की बारिश भी हो सकती है। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 14 से 16, अधिकतम 22 से 24, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6:15 बजे और शाम को सूर्यास्त 6:02 पर होगा।

0: इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुई। इसे अब तक पहुंचाने में हमें फैजान का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: रॉय रोड ब्रह्मस्थान में 92 साल की 92 years old की श्रीमती सावित्री आपादू पैदाइशी नाम पापिया जो श्रीमती तताई मदाम तताई नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके घर रॉयल रोड ब्रह्मस्थान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ग्रीष्मा फ्लाक की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। रॉबिन्सन रिवर लेन क्यूपिप में 74 years old के श्री बालाल रामेसर जो अनिरुद्ध नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े बारह बजे उनके घर रॉबिन्सन रिवर लेन क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिकागा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 9:30 PM। रॉय रोड लेसियो सेबास्टोपोल में 51 साल के 51 years old के श्री दया रामराचा जो ऋषि प्रेसिडेंट नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह दस बजे उनके भाई श्री शैलेश रामराचा के घर रॉयल रोड लेसिया सेबास्टोपोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लेसिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM। कटकारो स्ट्रीट ओकुले में 37 साल के

0: 37 years old की श्री केसावन नारायणन, श्री केसावन नारायणन जो केसावन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह साढ़े नौ बजे उनके भाई श्री डॉमेन नारायणन के घर कथकाहो स्ट्रीट ओकुली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पिकाखा की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 9:30 AM। गोबिन लेन मेबर्ग में सतीश मैकेनिक के पास 98 years old की श्रीमती आपलामा जोगाना जो तौतिन आपलाम नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल सुबह दस बजे उनके बेटे श्री आत्मा जोगाना के घर गोबिन लेन मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए टोम्बो मेबर्ग की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 10 AM। धनुष लेन लुओशी टेरोज में 71 years old के श्री सुपाया उसहाल जो दासन जनता नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल सुबह दस बजे उनकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी उसहाल के घर धनुष लेन लुओशी टेरोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बॉमाशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 10 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: रेडियो मॉरिशस 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।

NBC Radio, 24 hours a day. शाम के 6:20 और 40 सेकंड लीजिए। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से चंद विज्ञप्तियां सुनिए। सीबी अपने सभी ग्राहकों को सूचित करता है, खासतौर पे पोर्टली और आसपास के इलाकों को, कि कल रविवार सुबह साढ़े आठ बजे से सपहर के 3 बजे के बीच इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सुबह 8:30 बजे से दिन के 3 बजे के बीच, ये हैं सेसिवसगा और रामगुलाम गली और आसपास के इलाकों के रहने वाले बाशिंदों को सूचित किया जाता है कि कल बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी सुबह 8:30 बजे से सपहर के 3 बजे के बीच। फिर वैदें के रहने वाले ग्राहकों को भी सूचित किया जाता है कि मोसेलमो एमदिया, मोसेलमो एमएसा, शुमे दागोचिया, सियाश आ वैदें, रॉयल रोड वैदें और आसपास के बाशिंदों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 6 सितंबर 2026 की सुबह 8:30 बजे से सपहर के 3 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली चालू कर दी जाएगी। रोजहिल के रहने वाले इन इलाकों

0: बाशिंदों को भी सूचित किया जाता है कि कल सुबह 8:30 बजे से सफर के 3 बजे के बीच एवेन्यू ब्लू लेन, अक्वागेल फैक्ट्री और एवेन्यू बेतो के एक भाग में रहने वाले बाशिंदों को सूचित किया जाता है कि कल सुबह 8:30 से सफर के 3 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। अब कल ही सुबह 9 बजे से सफर के 3 बजे के बीच ग्रांबे में कोस्टल रोड होटल लुक्स कैजिनो और होटल वेरोंडा ग्रांबे के और आसपास के इलाकों के रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि वहां पर चल रहे मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सुबह 9 से सफर के 3 बजे के बीच बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली चालू कर दी जाएगी और मोंश्वाजी तथा होटल ग्रांड ब्लू, रामजतन, मेडिटेरानी और मोसेलमा मोंश्वाजी के रहने वाले बाशिंदों को भी सूचित किया जाता है कि कल सुबह 8:30 बजे से दिन के 2 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से इन इलाकों में भी बिजली सप्लाई में कटौती लाई जाएगी, बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली चालू कर दी जाएगी। सेबी अपने सभी ग्राहकों के प्रति इन समस्त असुविधाओं के लिए क्षमा प्रार्थी है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

您所收听的是毛里求斯广播电台819频道，你收听的是毛里求斯广播电台819频道。

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: बजली प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर। सभी श्रोतागण को अनीता का प्रेम सहित अभिवादन स्वीकार कीजिए। इस क्षण आप रेडियो मॉरिशस पर भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम का रसास्वादन कर रहे हैं। श्रोताओं, कहा गया है कि आयु लहरों की तरह चंचल है, यौवन कुछ ही दिनों का है, धन संकल्प के समान अस्थिर है, बादलों में बिजली की तरह भोगों की लीला चमक कर लुप्त हो जाती है, प्रियजनों का आलिंगन भी क्षणिक है, इसलिए भवसागर से पार होने के लिए ब्रह्म में चित लगाना आवश्यक है। तो श्रोताओं, आइए इसी विचार के साथ हम कार्यक्रम का शुभ प्रारंभ करते हैं।

भक्तों, समर्थ का अर्थ है जिसमें किसी कार्य को करने की शक्ति, योग्यता और क्षमता हो। समर्थ व्यक्ति कठिन से कठिन कार्य को भी अपने सामर्थ्य, परिश्रम और दृढ़ संकल्प से पूरा कर सकता है। इसलिए मनुष्य को अपनी क्षमताओं का विकास करके कार्य साधक और आत्मनिर्भर बनना चाहिए।

प्रियजन, आशा अर्थात कामनाएं ही वह नदी है जिसका जल मनोरथ इच्छाएं हैं और जो तृष्णा अर्थात लालसा रूपी तरंगों से आकुल है। इसमें वितर्क कुतर्क रूपी घड़ियाल है, यह मोर रूपी भंवर से पार पाना अत्यंत कठिन है और बहुत गहरी है। चिंता रूपी इसके ऊंचे ऊंचे किनारे हैं, जो पुरुष अर्थात इस संसार रूपी नदी को पार कर वैराथ्य रूपी समुद्र में पहुंच गया है वही इसके उस पार अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकता है।

भक्तों, कहा गया है कि विपदः संतु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्कूडो भवतो दर्शनम यत् स्याद् अपुनः भवदर्शनम। अर्थात हे जगत के गुरु, हमारे जीवन में पग पग पर विपत्तियां आती रहे, संकट आते रहे, क्योंकि उन विपत्तियों में ही आपके दर्शन होते हैं, और आपके दर्शन हो जाने पर फिर इस संसार के जन्म मरण के चक्र का दर्शन नहीं करना पड़ता है।

श्रोताओं, क्रोध या संकट के समय भी विचलित ना होना ही महान लोगों के बड़प्पन की असली पहचान है। तो श्रोताओं, इसी विचार के साथ हम कार्यक्रम को विराम देते हैं। आपने साथ एवं ध्यान दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अनीता को दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ रात्रि।

जामع अत-तिर्मिज़ी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, लोग जब किसी ऐसी महफ़िल में बैठें जिसमें वो ना अल्लाह को याद करे और ना अपने नबी पर दरूद भेजे, तो वो महफ़िल उनके लिए बाइस नुकसान होगी। फिर अगर अल्लाह ताला चाहे तो उन्हें अज़ाब दे, और अगर चाहे तो उन्हें माफ़ कर दे।

सनन अबी दाऊद की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग किसी मजलिस से उठते हैं जिसमें वो अल्लाह का जिक्र नहीं करते, तो वो मुर्दा गधे की बदबूदार लाश जैसी चीज़ से उठते हैं और ये अमल उनके लिए हसरत का बाइस होगा। सामईन कराम, महफिल शब प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होने जा रहा है। टेक्निकी मदद के लिए शिव का शुक्रिया। अपनी मेज़बान अबिनाज जान अली को इजाज़त दे। अपना ख्याल रखें। शब बखैर। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैह।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: भोजपुरी तड़का।
2: भोजपुरी धमाल आज की रात रत्ना के संगे NBC रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का।

लाला जा रात के ठीक 9:12 अभी से लेके रात के 11 बजे ले भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुने होला हमर सब कोई श्रोता लोगन के दिल से स्वागत करत है। जहाँ कहूँ से भी साथ देवा था वह आशा करब जाके आज के है कार्यक्रम के संगे संगे तू हमनी के साथ जुड़ गल हवा और जरूर हमनी के संगे प्यार से साथ देबा और ये तोरा मन में बा कोनो ऐसन गीत जे बहुत देर से बजता जे तोरा मन बा कोनो गीत सुने के और जे बा कोनो ऐसन खास मौका कोई जन्मदिन के अवसर कोई शादी के सालगिरह तो जरूर हमने के टेलीफोन करे सकबा 402-808-5 पर। जी हाँ टेलीफोन करे खातिर 402-808-5 402-808-5 पर और ये जिम्मे साज विदा करे खोजत हव 5251-7005 रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर भोजपुरी तड़का कार्यक्रम रत्ना के संगे। तो चला आज के कार्यक्रम के लाजवाब गीत के संगे शुरुआत करब जा और हई जोन गीत है बंधु राजा के आवाज में रखल गीत थोड़ा जीला

0: भोजपुरी तड़का।
1: पूरी तड़का कार्यक्रम और ही चला हाई जा पर हमनी के संगे जुड़ गल हवन अनीता जी फ्लिक ऑफ फ्लाग बगल से साथ देवत हवन सब कोई भक्तन खातिन काहे के काल सब कोई कृष्णमय भजन कृष्णमय भक्ति में लीन रहल और कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व मनावल गल। तो चला आज के कार्यक्रम में कृष्ण ओकज की आवाज में रखल राधा के सोभेला हाई गीत के उमांग कर ले हवन जितना कोई सुना था वन सब कोई खातिन सब टीम खातिन रात के जे काम करा था उन सब कोई खातिन और चला है जा पर अमृता गणेश जी भी हमनी के संगे जुड़ गल हवन पीतों बगल से उनकर दुगो नातिन सोनिया और परी बेटा हवन विषम और पतो हवन मीनाक्षी खातिन है ये की चलाओ अब जा और सब गणेश परिवार जे पीतों से हमनी के साथ देवत हवन। तो चला बढ़िया गीत संगे बढ़िया बढ़िया चुटकुला भी तोरा सुनाओ अब जा चाची।

0: के कोन दिन भेटा गल बोले जाने लो बेटी चाची बोले हमनी के जहाइजन महिला है जो नारी के जीवन है वो बहुत बहुत कारा है बहुत तकलीफ में रहेला बहुत फासिल नहीं है बहुत मुश्किले से आगे बढ़ेला। हम बोली हाँ चाची है तो तू हमनी के बहुत अच्छा बड़ा बात बोल देलक। बोले जाने ल फासिल काहे नहीं है। हम बोले नहीं चाची है तो नहीं बतैलक तू हमनी के। बोले हाँ देख जब का जब देखा तब पोसवा में पैसवा भी नहीं रही तब वो शॉपिंग करे के बहुत मन करेला बाजार जाए के हर समय कुछ ना कुछ खाते रहे के और खाते के बाद खाई के बाद मन करेला पतरा रहे के। और सब नारी लोग के सब महिला लोग के है ये प्रॉब्लम है कि बरसों पुराना बात ओकरा हमेशा याद रहेला। और जब तू फ्रिजिडेयर खोलबा तो फ्रिजिडेयर के सामने तू 2 मिनट ठड़ा रहबा और देखते रहबा नहीं जनबा कौन ची करे आल हवा फ्रिजिडेयर हिया ऐसा याद नहीं आवेला। आइए तो बोला था मैडम लोग के जीवन फासिल नहीं है।
1: राधा के शोभेला फरमान सिंदूर कृष्णा।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी
0: तड़का
1: तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जे पसंदीदा गीत के कार्यक्रम है और ही मजेदार चुटकुला के संगे संगे तड़का मारत है बढ़िया बढ़िया गीत के। तो चला 9:17 हो गल बा और हाई जा पर सुनीता जी बिल्कुल तैनात हो गल हवन हमनी के संगे कार्यक्रम में गीत सुने खातिन गाँव गोब से उसाद देवत हवन और कंगोमा बगल से विमला जी उनकर प्यारी बहिन और साथ हवन वीना जी गुडलैंड बगल से और गाँव गोब से ही साथ देवत हवन अमृता जी। और आज हमनी के बोले टेलीविजन में हाउ गीतवा देखले रहल नीरज गुप्त मधु के आवाज में रखल हेले साबुन हेले लुंडा। तो चला हाई ये गीत चलाओ अब जा तोहर खातिन तोहर पूरा परिवार खातिन। और हमर चाचा के किस्सा तक सुनते चला। चाचा हमर जोन हा वो अपन भैया दमोदर के भेंट कर लग और दमोदर भैया के लगल अपन दुखड़ा सुनावे बोले जाने ल भैया दमोदर कुछ बरिस पहला थोड़ा दिन पहला हमनी के एगो बाबा भेटाल रहल तो वो हमनी के बोलत रहलन दू थोड़ा थोड़ा बरिस गाड़ी भेंट कर ले रहलन तो वो हमनी के बोले जाने ल गजोधर ऊपर वाला जब तोरा दे तो तू संभारे नहीं सकबा उतना तोरा दे दे। हम का जनत रहली कि भगवान हमनी के इतना त्राका इतना तौस्यों इतना टेंशन इतना बीमारी दे सच्चे के हम तो नहीं जानत रहली कि वो हमर बीमारी हमर त्राका के बात बोलत रहलन। इतना त्राका कि अब संभारे नहीं सकत हैं हो

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का
1: ऐसन ठंडा में कहाँ लूंडा लेके धोब हो, कहाँ लेके नहीं ऐसन ठंडा जितना करता का बोलब। तो चला ऐसन ठंडा ठंडा मौसम में सब कोई हमनी के बहुत प्यार से साथ देवत हवन, तो आशा करब जा कि ऐसने गर्माहट बना के रखिए गर्मा गर्म गीत के संगे और चला मजेदार गीत के साथ देवत हवन, सब कोई हमनी के साथ देवत हवन हैजा पर। और अनीता लाल जी हमनी के साथ है, जुड़ गल हवन मोडाल ब्या बगल से ईतू परिवार, गोगा परिवार, लाल जी परिवार और नागेश्वर परिवार खातिर सुनीता ननकू के आवाज में रखल है अगला गीत के ऊ मांग करत हवन। तो चला मजेदार कार्यक्रम संगे साथ देते रहिए जा। औरी चचा हमनी के बोले जाने ल बेटा, अपन खुद का गलती जब कबो एगया हो जाला, खुद के गलती पे जो तू हसब त तोहार जीवन तोहार उम्र जोन है वो बढ़ते चले जाला। हम बोले सच्चे बोला था वो चचा, बोले हाँ हमन हमर जोन दादा पर दादा रहल वो हमनी के है बतवा बोले रहल कि अपन खुद के गलती पे जे तू हसब त तोहार उम्र बढ़ते चले जाए, औरी जे पंगार पंगार तू कबो अपन पत्नी के गलती पे हंस देलक त जाने ल कौन ची होला न, तोहार उम्र जोन है घटते चला जाए, जोन करिया करले हवा ना बरवा उज्जर होते चले जाए।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और चला है जहाँ पर हमने के साथ देवत हवन भाई आबू संगे जुड़ गल हवन आफेज आयाज असलम जायान जहीरा खाला छोटी और रईस और उनकर संगतिया हवन आपी और उनकर पत्नी और छोड़ के मोरिस्वा आतिश बागी के आवाज में रखल हई गीतवा चलाओ अब डाउन कर खातिन और ही हमनी के साथ देवत हवन वाकवा देने से दीदी सुनीता दीदी सुदेवी दीदी सुनीता शोभा देवीना और मलेंगा से हवन राम रतन परिवार और चाची ललिता कुशल खातिन अगला गीत के मांग करत हवन सुदेवी जी हमनी के बोले कोनो भी गीत में हमर नाम जरी तनी जरी जोड़ द बहुत प्यार से साथ देवत हवन था चला हमनी के साथ ऐसे देते रहिए जा बहुत मजेदार कार्यक्रम चला था और ही हमर पप्पू भैया कौन दिन चल गल पंडित जी हिया पंडित जी जाने ला पप्पू भैया के कुंडली देख के बोले बेटा तोहर कुंडली में तो बहुत धन बा तो पप्पू भैया हाथ जोड़ के बाबा जी के करलन एगो दंडवत प्रणाम और दंडवत प्रणाम करके बोले महाराज है तो तू हमनी के बोल देला कि हमर कुंडली में बहुत धन बा तो तनी हमनी के हाई भी जना द कि कुंडली के जो धन है वो हमर अकाउंट में हम कैसे ट्रांसफर करे सकब

0: भोजपुरी
1: तड़का
0: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम लाजवाब मस्ती में कार्यक्रम चला था और ही चला हैजा पर हमनी के ढेर कोई श्रोता लोगन बढ़िया बढ़िया गीत के मांग करत हवन और हैजा पर सजादा परिवार हमनी के साथ जुड़ गल हवन त्रियोले बगल से और अगला गीत के ऊ मांग करत हवन और जो हई जो अगला गीत हई है दीपशिका बुलगाम के आवाज में रखल नवा गीत और हई गीत खास उनकर बेटा निशाल खातिन और सब सजादा परिवार खातिन जे त्रियोले से हमनी के अभी साथ देवत हवन और जितना एमबीसी के टीम देने से जितना कोई काम करत हवन रात के उन सब कोई खातिन है अगला गीत के तू मांग कर ले हव तो चला मजेदार गीत संगे साथ देते रहिए जा और मजेदार गीत संगे हमर जो चचा है ना जाने ल बैठल बैठल का जानी कैसे कैसे कौन कौन कमवा करे के ओकरा कपार में चलावेला कौन दिन हमनी के बोले हम एगो शायरी लिखले हई हम बोली चाचा हई तोहर उमीर ह शायरी करे के बोले हाँ बैठे बैठे कुछ याद नहीं आवत रहल तो हम सोचली तनी बैठ के हमर दिल के बात हम कागज पे लिख के उतार दईला हम बोले अच्छा तो सुनावा बोले हाँ देखा अर्ज कर ले।

बा कि दोनों ही चलावता हमर संगे प्यार के चक्कर। हम बोली का का बोलत हव? बोला अरे शायरी तो सुना, बीच में नहीं डब डब कर। अरज कर ले बा कि दोनों ही चलावता हमर संगे प्यार के चक्कर।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
1: भोजपुरी
0: भोजपुरी तड़का
1: तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जारी बा। मजेदार कार्यक्रम संगे जितना कोई हंसते मुस्कुराते साथ देवत हवन है जब चाची बसंती हमनी के संगे जुड़ गल हवन वो बासें बगल से और युधिश भी हमनी के बहुत प्यार से साथ है देवत हवन उनकर ममा संगे चला इसने साथ देते रहिए जा और मजेदार कार्यक्रम संगे चला है जब पंडित राज वर्मा जी हमनी के साथ देवत हवन पेची गाफे से और महेन हरिपाल के आवाज में रखल है अगला गीत चलाओ अब जाओ उनकर खातिर उनकर सब बड़ुआ परिवार खातिन और जितना जितना कोई हमनी के साथ है देवत हवन बगुआ परिवार इलोद बगल से हंसते मुस्कुराते बस ऐसने साथ देते रहिए जा और हमनी के चाची बसंती बोले हाँ चाचा के तो किस्सा सुना दे लग अब चाची के किस्सा कब सुनेबा हाँ तो सुना चाची के किस्सा जाने ल चाची और चाचा कौन दिन लोतो में संगे संगे कहूँ जात रह तो चाची चाचा के बोले अहो कहाँ जात है तब

बतावा तो चाचा बोले लॉन्ग ड्राइव पर जात हैं, लॉन्ग ड्राइव पर। तो बोले तो काहे पहला नहीं बतैलक हमनी के, पहला बता देते तो हम भी तनी स्टेटस डाल देते फेसबुक पे कि हमर बूढ़ा संगे खुशी खुशी हैशटैग जात हैं लॉन्ग ड्राइव पर। तो चाचा बोले हाँ जाने ला, हम भी नहीं जानत रही कि हम लॉन्ग ड्राइव पर जात हैं, अभी अभी देसी देख करले हैं। बोले चाची बोले वो कैसे? तो बोले अरे गाड़ी के है जोन ब्रेक है वही नहीं लगता। तो चाची तो लगल कस कस के हल्ला करे, अरे बचाओ गाड़ी के तो ब्रेक फेल हो गल बा।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम लागी नाही छूटे राम है गीत के मांग करत हवन हमनी के प्यारी गायत्री जी नोवेल फोन से साथ देवत हवन बेटा अजय मामी कल्याणी मोहन मेबक से उनकर भौजी हवन शकुंतला मोतायलोंग से और उनकर खास दोस्त गीता बाई जी तो हमनी के कार्यक्रम के सुनत हवा तो बस चला जल्दी से अच्छा हो जाइए और तोहर सब परिवार खातिन चलाओ अब जा है अगला गीत और है ये गीत चाची ललिता खातिन भी चलाओ अब जा जे अभी तो शादी में बा पर जाने ल शादी में भी बोले हमर गीत चलावे के नहीं भूलैया तो चल लागिना ही छूटे राम तोहर सब परिवार खातिन हरिकुशल परिवार खातिन चलावब जा है ये गीत और ये हमर जोन चाची के किस्सा चाचा के किस्सा और हमर पप्पू भैया के किस्सा था दुनिया से पार काहे के कबो कबो तो ऐसन बात बोलेला बेसिर पैर के हये से हमनी के लगेला अच्छा नाम ओकर माँ बाप खोज के दल्ले हवन पप्पू कौन दिन हिया डॉक्टर हिया चल गल डॉक्टर के बोले जाने ला डॉक्टर जी हम सुनले रहली एगो प्रोग्राम में बोले रहलन कि पनिया जोन है फजीर के उठ के ठड़ा ठड़ा रह के पिए के चाहिला और जे दूध पीबा तो दूध तनी बैठ के पिए के तो हमर मन में एगो बहुत दुविधाजनक प्रश्न उठाता तो डॉक्टर बोले हाँ बोला बोला पप्पू भैया बोले देखा पानी तो ठड़ा रह के पिए के और दूध जोन है वो बैठ के पिए के तो चाय कैसे पिए के हो लेट के पीवे के काहे के उम्मीद पनिया भी बा और दूध भी बा तो कैसे पिए के चाय सुते सुते पिए के कैसे पिए के

0: बच्चे भोजपुरी गीत रत्ना के संगे MBC रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जारी रखा है और मजेदार कार्यक्रम संगे हईजा पर आकाश हमनी के साथ देवत हवन और अगला गीत के मांग कर ले हवन और हई जोन गीत है एगो बहुत अनसुना गीत है सजनवा बैरी भैले हमार एगो भोजपुरी फिल्म के गीत उ मांग कर ले हवन तो चला हई गीत चलाव अब जा उनकर खातिर एगो बहुत बढ़िया ललना।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: भोजपुरी तड़का।
2: भोजपुरी गीत रत्ना के संगे MBC रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का।
3: भोजपुरी धड़का कार्यक्रम संगे संगे जितना कोई साथ देवा थवान बस ऐसने जुड़ल रही है। और ये अगला गीत जोन है चलाओ अब जा चाची शांता सुखा की खातिन जी हमने के संगे जुड़ गल हवन से जमिल फोरसाइट से उनका चार गो बेटा खातिन सुदेश गावीन संगे हवन अशोक और सुजीत पतो हवन किरण नाती हवन भावेश और नातीन संजना खातिन सोना नोयन के आवाज में रखा है अगला गीत कर अब जाओ उनकर खाती इन चला हंसते मुस्कुराते ऐसे साथ देते रहिए जा बहुत मजेदार कार्यक्रम संगे जितना कोई जुड़गल हवन बस ऐसे हंसते मुस्कुराते जीवन में आगे बढ़ते रहे के चाहिला। और बढ़िया गीत जो अभी अभी चलैनी बढ़िया सन गीत रहल और हई जोन गीत अभी अभी चलैनी हम हई रहल सजना बैरी भैले हमार अलका याग्निक और उदित नारायण के आवाज़ में रहल बहुत मज़ेदार गीत और हई गीत के साथ साथ चल अब सुनब जा सुना नो इनके आवाज़ में रखल अगला गीत

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी
0: तड़का
1: तड़का
2: गीत जन हा बिजमावती संपत के आवाज में रखा लगला गीत गीत गवाई में है गीत के मांग कर ले हवन मीरा बाई दमिया जे हमनी के साथ है देवत हवन मोडालबिया बगल से और सब पादिया परिवार और दमिया परिवार खातिन खास कर उनकर बेटी और दामाद खातिन तो चला हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जा 10:10 और गते गते करते समय कितना हाल ही से बीता था।

चलो हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जाओ। और हमर चाची और चाचा जाने ल चाची आज सांझ के एगो व्यंजन पकैलक, भोजन पकैलक। और जैसे चाचा खाए के शुरू करलन तो चाची बोले अहो कैसन बनल बा खाए के बोला था तनी। तो चाचा बोले अरे पगली काहे लड़े खातिर हमर खाते हमनी के हमेशा तू उकसावेला, लड़े खातिर हमनी के हमेशा तू कोनो ना कोनो बात बोलेला। बोले कहाँ लड़े के बोलत हई, हम तो बोलत हई खाए के कैसन बनल बा। तो बोले हाइये तब बोलत हई, जब देखा तब हमनी के संगे बहाना खोजते रहेला झगड़ा करे के।

0: भोजपुरी तड़का तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के जारी रखा था। और है जहाँ पर हमने के साथ देवत हवन विजय बेनी प्रसाद जे साथ देवत हवन शामुनी देने से और उनका खास संगतिया हवन शास्त्री बुनवाली मोहताबा से और दूली परिवार के संगे संगे उनका एगो खास संगतिया हवन गणेश जगनारायण शामुनी बगल से किशोर की मिया के आवाज में रखल है अगला गीत के ओ मांग करत हवन तो चलो साथ देते रहिए जा। और चचा जब जब बात बोले लन सा कबो कबो बे सिर पैर के बात बोले लन सा पर कबो कबो ऐसा मस्त मजेदार बात बोल देवेला हमनी के बोले जाने जाने ल समय बहुत है जस्ती हाली से परिवर्तित होता हम बोले हाँ चचा समय तो बदले गल बाबी का बोला बोले हाँ पहला के जमाना में हमार बड़ा आदमी लोग ऐसा बोलत रहलन कि नेकी कर दरिया में डाल नेकी कर दरिया में डाल और आज के समय जाने ल कुछ भी कर स्टेटस पर डाले ल कुछ भी कर स्टेटस में डाल ऐसा समय हो गल बा।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम चला एक बार फिर से जुड़ जाप स और 10:22 हो गल बा। और अगला गीत जो है एक बार फिर से बिजमावती संपत की आवाज में रखल मांग के सिंदूरवा हाई गीत के मांग करत हवन छोटी पुलौजे से। और हाई गीत चलाओ अब जा दीदी ललिता खातिन, दादी प्रभावती खातिन, भैया हरीश खातिन, भैया आत्माराम खातिन जो हमनी के हमेशा प्यार से साथ देते रहे लन। और जाने ल पप्पू भैया के खुशी हो गल हवन एगो छोकरी से। छोकरी के जो लोंगे हा बहुत नाटी हा तो चचा से गल तनी वार्तालाप करे। चचा के बोले चचा है छोकरिया कैसन हा बोला ता बोले नहीं नाटी छोकरी के संगे कबो शादी नहीं करे के। बोले काहे चचा हम तो खुशी हो गल हई ओकर से शादी करे के। बोले जाने ला नाटी छोकरी हाली से पत्थर उठा देवे ला और इतर कपार जे दिन फोड़ दे तो हमनी के नहीं आके बोलिया कि हम तोरा नहीं बोले रही।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम आउरी 10:26 हो गल बा भाई माहिन हैजा पर हमनी के साथ देवत हवन और अगला गीत जन है जय हरलाल के आवाज में रखल संगे हवन उनकर दीदी मान और सब कोई परिवार संगे जुड़ गल हवन तो चला हंसते मुस्कुराते ऐसे साथ देते रहिए मजेदार गीत के संगे संगे चला भी गौर छोटा सा चुटकुला सुनाब जा है गीत के बाद।

0: भोजपुरी धमाल आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम 10:32 और जितना कोई रात के काम करत हवन बस सब कोई के बोलब जाबो कुकाश और चला हैजा पर नीरज गुप्त मधु के आवाज में रखल अगला गीत है आत्माराम भैया खातिन जे भी बेलियागी वैश्य से हमनी के संगे जुड़ गल हवन और उनकर सब परिवार संगतिया लोग खातिन और खास कर छोटी ललिता और दादी प्रभावती खातिन है ये गीत के मांग करत हवन और मार के फोड़ेला तो छोड़ है दोन हमर चचार है चचा है जितना कपार फोड़ेलन सका जनी हमनी के बोले का जनी भगवान जब पत्नी बना देले रलन तो है मच्छर काहे बनैलक तो हम बोली काहे चचा काहे ऐसन बोलत हवा बोले हाँ है जन पत्नी हा खून पिए के यही तो बस है काहे भगवान मच्छर बनैलक हम नहीं जानत हई।

कहूँ मार के कपार फोड़ता तो कहूँ सिनेमा दिखावता तो चला अगला गीत जोन है रोशन जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन पूर्व दामलाज से और अगला गीत के मांग करत हवन संजय हरिचंद के आवाज में जितना कोई रात के काम करत हवन उन सब कोई खातिन चल लाली सिनेमा देखे।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का।
1: तो चलो मीठा मीठा बोल है गीत नाजीरा खातिन चलाओ अब ज्यादा गोचे से साथ देवत हवन और बहुते खुशी हवन है गीत स्वीटी के आवाज में रखल स्वीटी रामबरन के आवाज में रखल मीठा मीठा बोल। तो चलो मीठा बोलते रहिए और प्यार से है गीत चलाओ अब जा उनकर खातिन।

और संगे संगे 10:50 हो गल बा और हमनी के संगे साथ है देवत हवन अमृता गणेश और उनकर एगो गीत के मांग है सुनीता ननकू के आवाज में रखल और है गीत है चमेली चमेली कर संगे श्यामा रघुनंदन जी भी हमनी के साथ है देवत हवन खोंगो बगल से भाई जय प्रकाश भौजी हवन नम्रता केशव और युधिश खास संगतिया वीना जी और विश्वानी विश्वानी जी भी साथ है देवत हवन बस हंसते मुस्कुराते साथ यूं ही देते

0: भोजपुरी धमाल आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का
2: चला एकर संगे नेमन परिवार हमनी के साथ दिवत हवन होश नुआ देने से और हई जो अंतिम लाख खोश रही सुनानवियन और बसंत सुपोल के आवाज में रखल और हई गीत के मांग करत हवन जय नेमन उनकर पत्नी हवन नीला बेटा हवन नवीन पतो हवन पूनम बेटी सुनीता और नाती पुता खातिन त चला सब नव नेमन परिवार खातिन है ये गीत और एकर संगे आज के है कार्यक्रम है जहाँ पर समाप्त हो जाए। आशा करत है कि आज के कार्यक्रम तोरा बहुत अच्छा लगल और बिल्कुल आवत सामदी के फेरों से भेट आप सब ऐसने 9 बजे से लेके 11 बजे ले भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में। तबले रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार शुभरात्रि सबको के।
3: अरे मूर्ख चिरंजीव ना रहे

सुनवा हमार लगे तेगो नदियों बा तोर लगे कौन सी बा मॉरिशस में पानी के अभाव बा चल रही है तू नदिया में

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। समस्त श्रोताओं को नीतूषा का करजोर प्रणाम। इस समय आप रेडियो मॉरिशस के साथ जुड़े हुए हैं। जी हाँ श्रोताओं, ये है सुनहरी पल कार्यक्रम। आइए, नीतू आपके साथ हैं रात्रि के 12 बजे तक। आज शंकर जयकिशन, जो बॉलीवुड के सुरों में शास्त्रीय संगीत की खूबसूरत महफिल सजाते थे, इनके बारे में जानते हैं। हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम युग की बात हो और शंकर जयकिशन का नाम न आए, ऐसा हो नहीं सकता। शंकर सिंह रघुवंशी और जयकिशन दयाभाई पंचाल की इस संगीतकार जोड़ी ने हिंदी फिल्म म्यूजिक को एक ऐसी पहचान दी जहां मेलोडी, ऑर्केस्ट्रेशन, रोमांस, रिदम और भारतीय शास्त्रीय संगीत एक साथ मिलकर एक नई दुनिया रच देते थे। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने क्लासिकल और

क्लासिकल म्यूजिक को सिर्फ कठिन संगीत के रूप में पेश नहीं किया, बल्कि उसे आम श्रोता के दिल तक बहुत ही आसान और मधुर अंदाज में पहुंचाया।

शंकर जयकिशन के संगीत में हमें हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की गहरी परंपरा का एहसास मिलता है। कभी किसी गीत में राग का सुंदर आधार मिलता है, कभी थुमड़ी और दादरा का रंग, कभी क्लासिकल गायकी की खूबसूरत मूर्खियाँ और तान, तो वो कभी तबला, सितार, सारंगी, बांसुरी और वायलिन जैसे वाद्य यंत्रों का इतना सुंदर

फिल्म बसंत बहार का जिक्र किए बिना शंकर जयकिशन के क्लासिकल संगीत की बात अधूरी रहेगी। इस फिल्म में क्लासिकल म्यूजिक को कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया। केतकी, गुलाब, जूही, चंपक, बन फूले जैसे गीत में क्लासिकल गायकी का प्रभाव बहुत स्पष्ट नजर आता है। मन्ना दे और भीमसेन जोशी जैसे महान कलाकारों की आवाजों ने इस कंपोजिशन को एक अलग ही ऊंचाई दी।

ये सिर्फ एक फिल्म सॉन्ग नहीं था, बल्कि सिनेमा के माध्यम से क्लासिकल म्यूजिक को जन जन तक पहुंचाने वाली एक यादगार संगीत रचना थी। इस तरह सुर ना सजे जैसे गीत में एक कलाकार के मन की व्यथा और संगीत के प्रति उसकी तपस्या को महसूस किया जा सकता है। इस तरह की कंपोजिशंस बताते हैं कि शंकर जयकिशन के लिए म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, संगीत कैरेक्टर के इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक पावरफुल मीडियम भी था।

फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें का पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई भी एक ऐसा गीत है जिसे सुनते ही क्लासिकल गायकी की गहराई का एहसास होता है। मन्ना दी की आवाज, कंपोजिशन की सिंप्लिसिटी और राग प्रेरित मेलोडी मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फियर बनाती है जहां श्रोता कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है।

शंकर जयकिशन की सेमी क्लासिकल कंपोजिशंस की सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने क्लासिकल एलिमेंट्स को मेलोडी के साथ इतनी खूबसूरती से मिलाया कि आम लिसनर भी बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के उसका आनंद ले सकता था। आजा सनम मधुर चांदनी में हम जैसे रोमांटिक सॉन्ग्स में क्लासिकल इन्फ्लुएंस का हल्का सा रंग मिलता है, लेकिन प्रेजेंटेशन इतनी नेचुरल है कि गीत सीधा दिल तक पहुंचता है।

रसिक बलमा को याद कीजिए, लता मंगेशकर की आवाज, वायलिन का खूबसूरत ऑर्केस्ट्रेशन और कंपोजिशन की क्लासिकल रिचनेस मिलकर एक ऐसा रोमांटिक एटमॉस्फेयर बनाते हैं जो आज भी टाइमलेस महसूस होता है। ये शंकर जयकिशन की कला थी क्लासिकल सोफिस्टिकेशन को पॉपुलर मेलोडी में बदल देना। श्रोताओ, इतने सारे गाने हैं शंकर जयकिशन साहब के, तो अगले सुनहरे पल कार्यक्रम में इसी पर हम वापस बात करेंगे। तब तक इन गानों का मजा लीजिए और नीतू को आज्ञा दीजिए। शुभरात्रि, प्रणाम।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस
2: रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस।